0: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग, चार लोगों के पास है
2: कुछ इससे भी अनोखा।
1: कमला पसंद, सिर्फ एक अनोखा स्वाद, कमला पसंद पान मसाला।
3: India's most powerful defense voices come together.
4: Warfare के तौर तरीके भी बदल रहे हैं, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी का भी जितनी तेजी के साथ इजाद हो रहा है। ऐसे में इस तरह के आयोजन की जरूरत मैं समझता हूँ कि और अधिक बढ़ जाती है।
3: One stage, one defining conversation. NDTV Defense Summit 2026.
5: 5 hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddaramaiah.
6: NDTV stands completely engaged with Karnataka.
7: High rate, check the audio.
5: Let's do it. Let's start.
8: Breaking stories, we're jumping straight into it.
5: We've got a picture of the letter. What is in your letter? You

0: कल दिनांक 30 सितंबर को रामकृष्णा नगर पुलिस की पुलिस दीदी टीम अपने नियमित गश्त पर थी। इसी क्रम में शाम करीब 6:30 बजे तभी एक लड़का उसमें से अभद्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए पुलिस दीदी के साथ हाथापाई करने लगा और भीड़ का लाभ उठाकर भाग गया। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए उस पर सरकारी कार्य में बाधा डालने और एक लोक सेवक पर हमला के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल उस लड़के की पहचान नहीं हो पाई है। उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज और मानवीय आसूचना के आधार पर उसकी पहचान स्थापित कर जल्द ही तीन लड़कों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
1: Order with that, we're slipping into very short breaks here on the other side with more news and updates.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: वेल डन किड्स, आज दिन की शुरुआत हुई है बच्चों की आवाज से, इससे खूबसूरत दिन कैसे हो सकता है?
1: एब्सोल्युटली आयुष्मान, और ना सिर्फ आज का दिन, ऑफ कोर्स इज गांधी जयंती, लेकिन इनका जुनून देख के, यू नो, सीइंग द एक्साइटमेंट इन देयर वॉइसेस, हमें ये पता है कि वी आर इन सेफ हैंड्स, आवर फ्यूचर जनरेशंस आर गोइंग टू कीप अस सेफ एंड हेल्दी. थैंक यू ऑल सो मच बच्चों.
0: थैंक यू किड्स,
1: बिग राउंड ऑफ अप्लॉज.
0: मुझे लगता है बनेगा स्वस्थ इंडिया से बनेगा मस्त इंडिया हो रहा है, क्योंकि हमारा भविष्य गागर गया अभी सामने हमारे.
1: बिल्कुल सही कहा आपने.
0: नमस्कार, स्वागत है आप सबका. आज 2 अक्टूबर है, बापू का जन्मदिन है. वो इंसान जिन्होंने कहा था कि स्वच्छता आज़ादी से भी ज़्यादा ज़रूरी है. और आज इसी दिन हम एक ऐसी कहानी का नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो है पिछले 12 साल से लिखी जा रही है.
1: बिल्कुल सही आयुष्मान. वेलकम टू सीजन 13 ऑफ द NDTV डिटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया कैंपेन. नाउ मोस्ट कैंपेन्स कम एंड गो. आयुष्मान एक स्लोगन होता है, एक सीजन होता है, और फिर सब भूल जाते हैं. बट दिस वन हैज स्टेड, क्योंकि बदलाव एक दिन का इवेंट नहीं होता, बदलाव एक आदत है. एंड हैबिट्स ऑब्वियसली टेक टाइम. 13 years आयुष्मान इज व्हाट इट हैज टेकन टू टर्न एन आइडिया इनटू अ वे ऑफ लाइफ. और आयुष्मान ये सफ़र जब शुरू हुआ था, एक सिंपल से सवाल से शुरू हुआ था कि क्या हमारा देश भारत साफ हो सकता है.
0: और फिर इसका जवाब दिया आप लोगों ने, गांव की उन माओं ने जिन्होंने घर में टॉयलेट की मांग की, उन टीचर्स ने जिन्होंने क्लासरूम को बदलाव की पहली प्रयोगशाला बना दिया, उन बच्चों ने जो घर जाकर अपने पेरेंट्स को समझाने लगे, उन आशा वर्कर्स, सरपंचों और सैनिटेशन वर्कर्स ने जिनके बिना ये कहानी अधूरी है. मैं हमेशा उन कहानियों की तरफ खींचा गया हूँ जिन पर लोग बात करने से कतराते हैं, चाहे टॉयलेट्स की बात हो, पीरियड्स, हाइजीन. ये कैंपेन भी वही करता है. इट स्टार्ट्स द कॉन्वर्सेशन India needs to have. We have a long way to go and we need to keep at it.
1: We do have a long way to go and we are keeping at it. Aishman, jaise COVID pandemic se puri duniya ne seekha ki swachh aur swasth dono saath hain. Humne dekha ki hygiene akela sirf kafi nahi hai. Health obviously is the bigger picture. Aur isliye banega swachh India banega swasth India. Swachhta pehla kadam tha, swasthya manzil hai. Giving better health in more hands every day.
0: Yes, better health, क्योंकि अच्छी सेहत किसी का प्रिविलेज नहीं है, हर हिंदुस्तानी का हक है. In more hands, क्योंकि ये जिम्मेदारी सिर्फ डॉक्टर्स या सरकार की नहीं, ये एक टीचर के हाथों में है, एक माँ के हाथों में है, एक बच्चे के हाथों में है, और हाँ, आपके हाथों में है. क्योंकि एवरी डे, क्योंकि सेहत एक दिन का जश्न नहीं है, रोज की आदत है. क्योंकि अब वक्त है कहने का, आई एम द चेंज.
1: Absolutely, I am the change. और आपने बिल्कुल सही कहा, it begins with I am the change, जो आपने बिल्कुल कहा. But over the last 12 years, that belief has turned into a movement. So let's take a quick look at the journey that has brought us all here together.
2: पूज्य बापू ने हमें संदेश दिया था, क्विट इंडिया, क्लीन इंडिया.

0: What we just saw was only a glimpse of an incredible 12-year journey. And as we begin a new chapter, the launch of season 13, I would like to welcome three leaders who've played an important role in taking this vision forward. Joining us virtually is Chris Litt, Chief Executive Officer, Reckitt. Joining us here, we have Gaurav Jain, Executive Vice President, Regional Director, Reckitt South Asia. We also have with us Rahul Kaval, CEO and Editor-in-Chief, NDTV. And we have with us Sonu Sood, actor, producer, and philanthropist, someone who's been on the campaign early and an integral part of it. Thank you all so much for joining us today. But before we go any further, we have a special message from the health minister of our country.
1: Mahatma Gandhi ji ki jayanti ke pavan avsar par banega swasth India ke 13th season ke shubharam par आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले 12 सीजन से बनेगा स्वस्थ इंडिया देश में स्वच्छता, स्वास्थ्य, पोषण, जन जागरूकता का संदेश जन जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इस अभियान ने स्वच्छता कर्मियों के प्रशिक्षण से लेकर बच्चों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने तक अनेक सार्थक प्रयास किए हैं। मुझे गर्व है कि आज़ादी के दशकों बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लाल किले के प्राचीर से स्वच्छ भारत का आह्वान दिया और स्वच्छता के महत्व को समझाया। उनके नेतृत्व में शुरू हुआ स्वच्छ भारत अभियान आज एक सशक्त

0: जन आंदोलन का रूप ले चुका है। इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष का थीम बेहतर स्वास्थ्य ज्यादा हाथों में मुझे अत्यंत प्रासंगिक और महत्वपूर्ण लगता है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उत्तम नेतृत्व में देश ने स्वच्छता और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। 11 करोड़ से अधिक शौचालय निर्मित किए गए, 12 करोड़ से अधिक घरों तक नल से स्वच्छ जल पहुंचाया गया, जहां पीढ़ियों से इसकी प्रतीक्षा की जा रही थी। 186,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर लोगों के निवास स्थान के निकट स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। आयुष्मान भारत जो योजना है वो 61 करोड़ से अधिक नागरिकों को बीमारी के आर्थिक भार से सुरक्षा प्रदान कर रही है। यह संख्या यूरोपीय संघ के देशों की कुल आबादी से अधिक है। व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर नेटवर्क के माध्यम से 12 आवश्यक हेल्थ पैकेज दिए जा रहे हैं। टीबी मुक्त भारत अभियान की वजह से भारत में हर साल सामने आने वाले टीबी के नए मामलों में 21% की कमी आई है और टीबी से होने वाली मौतों में 28% की गिरावट दर्ज की गई है। अपने दूरदर्शी नेतृत्व से प्रधानमंत्री जी ने करोड़ों भारतीयों को एक मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी का मानना है कि स्वस्थ समाज का लक्ष्य स्वस्थ सुविधाओं के विस्तार से और जागरूकता और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देकर प्राप्त किया जा सकता है। बनेगा स्वस्थ इंडिया अभियान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा। एक स्वस्थ और जागरूक नागरिक ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला है। स्वस्थ नागरिक, स्वस्थ समाज और स्वस्थ भारत, यही विकसित भारत की मजबूत नींव है। मैं बनेगा स्वस्थ इंडिया की पूरी टीम को इसके लिए और उनके सहयोगी संस्थानों को 13वीं सीजन के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आइए महात्मा गांधी जी के स्वच्छता और स्वस्थ समाज के सपने को साकार करने के लिए हम सब मिलकर स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और विकसित भारत का संकल्प लें। जय हिंद।
1: बहुत बहुत शुक्रिया नड्डा जी। कहीं ना कहीं सरकार का सहयोग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह के मिशन में प्राइवेट कंपनियां जुड़ती हैं, मीडिया जुड़ता है, लेकिन साथ ही साथ जब सरकार की ताकत लगती है तभी वाकई में ज़मीन पर इसका असर दिखता है। इट्स फैंटास्टिक टू बी हियर। आयुष्मान एंड अंबिका, द टीम्स हैव बीन वर्किंग थ्रू आउट द ईयर, एंड व्हाट स्ट्राइक्स मी एज मोस्ट रिमार्केबल इज कि साल भर कितना एफर्ट लगता है। ये जो लोग अभी टेलीविजन पे, डिजिटल पे, सोशल पे देख रहे हैं, साल भर की पूरी मेहनत, पूरी तपस्या है जिसके बाद हम यहाँ पे पहुँचे। It's fantastic to have you. And Ayushman, I see you're getting better with the passing year. When you came in, you were a little concerned about how this would go. He's just growing into this role. We're very, very happy to have you with us. And thank you so much,
2: Rahul. Thank you so much. Nadda ji ne 3 baar Ayushman naam le liya. Yeah, of course.
1: Unko pata tha kaun hai yahan pe. Isiliye. We want to go across to Chris Lish. He's the CEO of Reckitt Globally. Thank you very much, Chris, for joining us. And thank you for partnering with NDTV in this very important mission. We're broadcasting live across a country of 1.4 billion people, and your organization's core mission has been better health in more hands every day. But every day is a massive logistical and behavioral hurdle. As viewers watch this telethon, how does Reckitt ensure that basic wellness doesn't remain a luxury for the urban and richest people all across the country, especially in those parts where they need it the most?
3: Well, the question for us is not how we reach 1.4 billion people once. but actually how healthier choices can become.

0: part of everyday life for 1.4 billion. That's a fundamentally different challenge. At Reckitt, we've learned that improving health at scale requires three things. The first thing is access. Better health cannot depend on where you live or what you earn. It requires solutions that are affordable, available, and relevant across diverse communities, say from major cities to the most remote parts of the country. The second element is trust. Sustainable behavior changes happen through healthcare workers, those at the front line, and the leaders in the community who all play a critical role turning health information into action and action into habits. And at Reckitt, we're guided by the simple principle, doing the right thing always. That trust is not built through what we say, it is earned through consistent action, long-term commitment, and delivering meaningful outcomes for communities. And then the third element is prevention. The greatest public health impact comes when we help people stay healthy, not just treat illness. That's why we focus on embedding early healthy behaviors, particularly among children, where small interventions can create lifelong benefits and actually also influence entire families. So ultimately, it takes all those three components to be successful in this mission.
1: So well said, right? I mean, Rahul, what he said initially, this is what Chris has said, right? It's about behavior change, and that's what we've been trying to bring about, you know, through the campaign, like actually being the change, being part of this change. Ayushman, humne wo dekha, and Sonu, you've been, you know, an integral part. Aap shuru se, you've been supporting the campaign, but when we see your work as well, chahe wo COVID ho, humne Nepal mein dekha, kahin bhi jab issue ho, especially health ke, you've always been there.
2: मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, देखो, एक मैं फिल्म कर रहा हूँ सूरज बजाते कि उसमें प्रेम बना हूँ, ये भी प्रेम बन चुके हैं. प्रेम का एक ना बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, प्रेम इज़ अ ग्रीन फ्लैग. आज ग्रीन पहनकर भी आए हैं तो आप पब्लिक की नज़रों में इतने ग्रीन फ्लैग हैं, उनकी हमेशा सहायता करते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो आप कैसे इसको देखते हैं?
3: आयुष्मान, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यू नो, मेरा इस कैंपेन के साथ बड़े सालों का रिश्ता है, और आज जब मैं आपके साथ बैठा हूँ तो आई फील बागडोर सही हाथों में है. We are making sure that you know the message reaches to the right people. But like you said, जब मैं मुंबई आया था तो बहुत सारे ड्रीम्स लेकर, you know, you're an engineer, you want to become an actor, फिर आप light, camera, action की दुनिया में आप आ जाते हैं, और फिर कई सालों बाद आपको लगता है कि शायद जो ज़िंदगी होती है वो सिर्फ light, camera नहीं होती, एक ऐसा action होता है जो आपकी ज़िंदगी का मकसद बन जाता है. और जब आप एक आम इंसान के साथ जुड़ते हैं इन मुश्किल समय में, तब आपको लगता है कि दुआओं में बड़ा असर होता है. यू नो, द काइंड ऑफ हैप्पीनेस दैट यू गेट, हमें हर रोज़ एक ऐसी फीलिंग होती है कि आज एक यू नो 1000 करोड़ की ब्लॉकबस्टर फिल्म दी है, जब हम उन परिवारों के साथ समय बिताते हैं. तो मुझे लगता है कि एक रास्ता मिला है ज़िंदगी का, अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी डू, एंड आई थिंक दैट गिव्स यू द बेस्ट फीलिंग एवर. और मुझे हर रोज़ ईश्वर का धन्यवाद करना पड़ता है कि यू नो आई फील दैट आई वाज अ चोजन वन.
4: सोनू के साथ खास बात यह है कि ऐसा नहीं कि वो कैमरे के लिए कर रहे हैं या सोशल मीडिया के लिए कर रहे हैं. जब कैमरा ना भी हो, कोई किसी का फोन ना भी हो, तभी लगे रहते हैं. सो इट्स अ लॉट ऑफ कमिटमेंट, एंड दैट इज क्वाइट ऑसम. मोर पावर टू यू.
3: इट्स नॉट जस्ट मी, आई वुड से कि कनेक्शंस बड़े जुड़ते हैं. जब आप किसी यू नो अनजान इंसान के लिए मदद मांगते हैं किसी और से, और आप बोलते हैं कि मेरा, देखिए, मैं इससे मिला नहीं हूँ, मैं जानता नहीं हूँ, मैं दोबारा शायद मिलूंगा भी नहीं, लेकिन हम लोग कोशिश करके इनकी जान बचा सकते हैं, और फिर जो डॉट्स जुड़ने शुरू होते हैं, आई थिंक दैट गिव्स यू द स्ट्रेंथ टू मूव फॉरवर्ड.
4: ये बहुत पुण्य का काम है. वो पुण्य का काम वो भी है जो गौरव करे, क्योंकि जिस तरह का एफर्ट लगता है, एंड द नंबर्स ऑन दिस आर स्टैगरिंग. 30 million चिल्ड्रन रीच्ड, लैक्स ऑफ स्कूल्स इम्पैक्टेड अक्रॉस द कंट्री. But the question is about outcome. It's not just about outreach. How do you ensure that the outreach that you're being able to deliver is actually leading to measurable outcome, which I know is extremely important for you?
5: Well, I'll thank you for the question, Rahul. I'll answer it. But I think as the CEO of the company in India, I have to start with saying a big thank you. I think I'll start by saying thank you to my friend here, Ravi. I think Ravi and his four-man army, Kashika, Vivek, Sahil, Dr. Chris, I mean, they put their heart and soul into this for the last 13 years. I think, salute to you, Ravi.
4: And a clap thank for them as well. They've been really amazing.
5: It's just amazing. I think a big thank you to our partners. A lot of them are outside. I think what they've done with us.

0: it just spreads. And you can't avoid not to do it. And as I said, we are so result-oriented that when we see good results, it motivates us to do better and better and better. And so why give up a good thing which is doing so well? It motivates our people. We talked about in colleges and campuses. It helps us get talent. People look at us and say, this is a good company to work for. So all the good things associated with it, but in the end, something...
1: Good karma compounds.
0: Kind of.
1: Ayushman, you've really been growing in your role as the brand ambassador for Banega Swasth India. You've been doing so many things, you know, from acting, music. Where does this stand in your list of priorities? What brings you back year after year?
2: It's the sheer relentlessness of maybe Reckitt and NDTV and the level of involvement and passion. It's unparalleled, I think. Aaj Gandhi Jayanti hai, 2 October hai. And achhi jo sahi deshbhakti wahi hoti hai agar aap desh ke liye kuch karna chahe. Aap kya kar sakte hain? Aapki awaaz de sakte hain zyada se zyada as an opinion leader. Uske alawa, I think this is the biggest form of patriotism. I think it's a collective consciousness which comes together. And I think it's beautiful. Isse achhi nation building nahi ho sakti.
1: But outside of this campaign and outside of the stage, do you try and do as much as Sonu does? आप भी एफर्ट कर रहे हैं?
2: मैं एफर्ट करता हूँ. मैं यूनिसेफ एम्बेसडर हूँ इंडिया का. मैं काफ़ी फील्ड विजिट्स कर चुका हूँ. ग्रास रूट लेवल से कनेक्ट होता हूँ. सो आई गेस जो इनफैक्ट एज एन आर्टिस्ट ऑल्सो मेरी सारी फिल्में ग्रास रूट लेवल पर बेस्ड होती हैं. सोशल मैसेजेस होते हैं मोस्टली. तो आई थिंक इट्स मी एज एन आर्टिस्ट वी वॉन्ट टू क्रिएट अ सर्टन वैल्यू. एंड ये एक छोटा सा तरीका है करने का. और क्या
1: सुनो, आप जो लोगों की मदद करते हैं उससे एक अलग आपकी इमेज बनती है ओवर एंड बियॉन्ड जस्ट बीइंग अ स्टार एंड अ फेमस पर्सनैलिटी. Are you also trying to encourage others to come? Because आपकी देखा देखी कोई लग जाए काम में जुड़ जाए. दूसरा ये कि आपको लगे कि नहीं, वाकई में बॉलीवुड के या स्पोर्ट्स स्टार्स हों, फिल्म स्टार्स हों, OTT स्टार्स हों, सबको लगना चाहिए कि फिर एक सोनू सूद नहीं 10-12 हो जाते. आप कैसे तय करते कि, क्योंकि इतने लोगों को मदद चाहिए, आप कैसे तय करते कि किसकी मदद कर सकते हैं किसकी नहीं और किसको छोड़ दे नहीं कर पाए?
3: इतने सालों में राहुल, एक मुझे लगता है ना, हमारे अंदर एक ऐसा एक्सरे मशीन लग जाता है कि जैसे हम लोग बात करने लगते हैं तो हमें पता होता है कि ये कितना जेन्युइन केस है. आज भी मेरे ऑफिस या घर के सामने 200-300 लोग पहुंचते ही हैं और मैं जब शाम को निकलता हूं तो उनसे जब मिलते हैं तो किसी की मेडिकल इमरजेंसीज होती हैं, किसी की एजुकेशन का प्रॉब्लम होता है. बट पिछले 6-7 सालों के अंदर एक नेटवर्क ऐसा बन गया है कि पूरे देश भर में छोटे छोटे जिलों के अंदर भी जहाँ पर किसी को पढ़ाई करनी हो, इलाज करवाना हो, बेड चाहिए, सो फ़ोन करते हैं, जुड़ जाते हैं. कोविड के दौरान करीबन 7.5 लाख लोगों से मैं कनेक्ट हुआ था जिनको घर भेजा था. आज वो 7.5 लाख जो लोग हैं वो मेरे वॉलेंटियर्स की तरह हैं कि अगर हमें यूपी में गोंडा जिला में किसी को पहुँचाना है तो मैं गोंडा दबाऊंगा तो वहाँ पे 10 कॉन्टैक्ट्स आ जाएंगे. फिर उनको फ़ोन करते हैं, यार उसको ये पहुँचा दे. बिहार में किसी को भैंस पहुँचानी हो तो हम लोग वो ढूंढते हैं. तो फिर लड़का एक भैंस ढूंढने जाता है कि कौन सी अच्छी भैंस है जो अच्छा दूध देती है और उसके साथ बछड़ा भी दिया जाता है ताकि उस जो बाढ़ में वो घर तबाह हो गया उसको एक रोज़ी रोटी मिल सके. तो बड़ी छोटी सी एग्जाम्पल्स होती हैं. आज जब मैं सुबह यहाँ पर आ रहा था तो मैं जब सुबह उठा तो मुझे 5:30 बजे मेरा फ़ोन बजा. मैं उठने वाला था तो मैंने देखा कि एक किसी का कॉल आ रहा है. मैंने फ़ोन किया तो कहते सर मेरा भाई का जो बेटा है वो PGI लखनऊ के बाहर है, उसको एडमिशन नहीं मिल रही और बहुत सीरियस है, आप कीजिए. तो मैंने मैसेज डाला वहाँ पे डॉक्टर्स को. तो 6:15 बजे मुझे फ़ोन आ गया और बाय द टाइम आई वाज कमिंग फ्रॉम माय हाउस टू दिस प्लेस उसका एडमिशन हो गया था एंड फाइनली ही इज़ गेटिंग ट्रीटेड. सो मकसद ये है कि शायद ऊपर वाला चुन लेता है कि ये कुछ कर दीजिए और फिर हो जाएगा. एंड दैट मेक्स योर डे वेरी स्पेशल. तो आई फील अपने आप हो जाता है, पता नहीं. बट आई एक बड़ा बिगेस्ट लेसन दैट आई लर्न इन ऑल दीज इयर्स इज कि यू नो आप फेवर्स लेने में कतराए मत. यू नो मैंने अगर आपको एक फोन किया कि राहुल चलिए मिलके हम उसकी पढ़ाई करा देते हैं,
1: ऐसा मत मांगना बस. ऐसा नहीं है और कुछ हो तो बताइए.
3: या उसको चैनल में कहीं जॉब लगवा दे. अगर वो डिजर्व करता है, अगर वो डिजर्व करता है वो पहले है तो फिर यू नो
2: ऐसा मांगना किसी ये दुनिया मुश्किल है.
3: सो आइडिया ये है कि आप भी जानते हैं कि आप मैं उनको बोलता हूँ कि भैया देखिए मैं इसको कभी जानता नहीं, मिला नहीं हूँ, लेकिन देख लीजिए अगर वो डिजर्व करता है. और कई बार ऐसे हो जाता है कि यू नो अपने आप वो डॉट्स जुड़ जाते हैं और वो इंसान अपने लक्ष्य पे पहुँच जाता है. सो दैट्स व्हाट आई ट्राई टू जॉइन दोज डॉट्स एवरी सिंगल डे एंड समवेयर गॉड इज डूइंग द ट्रिक. एंड
4: It's not just about joining the dots. I think it's also जो आप दिल से करते हैं, right? The effort and you know the willingness is one thing. But जो दिल से करते हैं कोई भी चीज़.
3: इसमें ना हमेशा एक बड़ी कमाल की चीज़ जो मैंने एक बार लिखी थी भी अपनी फिल्म के अंदर कि कहते हैं कि जब आप मदद करना शुरू करते हैं तो बहुत दफ़ा अच्छा भी होता है, कई बार आप पे उल्टा भी आता है कि यार यू नो आप जिसको जितनी मदद चाहिए उतनी नहीं कर पाए, कम तो देंदे यार इतना इसने किया नहीं। तो एक बड़ी कमाल की लाइन थी कि मदद भी बड़ी कमाल की चीज़ होती है, करो तो लोग भूल जाते हैं, ना करो तो याद रखते हैं। सो आई थिंक उस
2: क्या बात है?
3: तो उस चक्कर में आपको रुकना नहीं है।
1: पर भूल क्यों जाएंगे ऐसे कैसे कि करो तो भूलेगा नहीं, आपको लगता होगा ऐसा, पर ऐसा हो जिसको आपने मदद की उसको याद रहेगा। आयुष्मान की
3: याद रहता है, पर मकसद है कि हर इंसान अपनी जिंदगी में बिजी हो जाता है, या दुआएं देगा कि यार उसने मदद की थी, बड़ा अच्छा हुआ, कुछ हुआ, फिर उनकी जिंदगी एक शुरू हो जाती है। लेकिन जब आप किसी की मदद नहीं करते हो हमेशा याद रखते हैं कि बॉस मैं गया था उससे और मेरी मदद नहीं हुई।
2: सो आई थिंक उसकी एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं चाहिए कि वहां से क्या आएगा।
3: या
2: जस्ट बी सेल्फलेस।
4: एब्सोल्युटली। वेल वी हैव क्रिस स्टिल वेटिंग, सो वी विल जस्ट गो बैक एंड ये चर्चा हम जारी रखेंगे। क्रिस, यू नो वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट बिहेवियर चेंज और a major theme of this telethon has been everyday habit creation. Now, changing behavior is far harder than obviously distributing products or building infrastructure. As a CEO, how

0: First of all, a platform like this is something that brings that awareness, that motivates people to come forward. And also, I would say, Gaurav said, ki kis tarah aap ग्राउंड लेवल पर जाकर उन तकलीफ़ों को समझते हैं और करते हैं. एक छोटा सा एक एग्जांपल पिछले महीने ऐसा ही हुआ था. आंध्रा में एक जगह है अनकापल्ली करके, एक बड़ा छोटा सा डिस्ट्रिक्ट में. वहाँ पे कुछ समय पहले एक इवेंट के लिए गया था, करके आया. बड़ा ब्यूटीफुल, लॉट ऑफ लव यू गेट फ्रॉम देयर. और फिर वहाँ पे मुझे 8-10 दिन बाद एक सोशल मीडिया पे किसी ने टैग किया कि एक उसके पास गांव है जहाँ पर पानी की समस्या है, और उसमें मैक्सिमम गांव ने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पानी मिलता नहीं और लेडीज़ जो हैं बड़ी दूर दूर कई किलोमीटर तक जाती हैं. सो जब अनकापल्ली में अगला इवेंट होने वाला था मेरा उसी ब्रांड के साथ, तो मैंने बोला कि यार मेरी फीस नहीं, वहाँ पर एक बोरवेल वगैरह लगाइए और वहाँ पर उनको पानी मिलना चाहिए. सो अगले ही दिन वो लोग पहुँचे वहाँ पर, और कुछ ही दिन में वहाँ पर लग भी गया. और जो गांव में बड़े परिवार छोड़कर चले गए थे, वापस आने शुरू हुए, और मैं अभी उनको विज़िट भी कर आया. तो एक इतना कमाल का एक्सपीरियंस था कि किस तरह आप जो छोटे छोटे लोग उन गांव में उनके आसपास रहते हैं, आपको उनका हाथ थामने और बोलने कि यार चलो ऐसा मिलकर करते हैं. फिर उनकी जो एक्सपर्टाइज होती है, चाहे वो ग्राउंड लेवल पर काम करने की हो, या हम अपने लेवल पे अवेयरनेस की बात करें, या टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं लेकर आती, तो वो सब जब चीज़ें जुड़ती हैं और ऑटोमेटिकली एक ऐसी दुनिया बनती है जो आई थिंक हम चाहते हैं कि देश भर के हर गाँव में रहे हो.
1: Actually, true. आपने जो टेक्नोलॉजी की बात की गौरव, I want to quickly ask you, we're running out of time, but how under banega Swachh India and of course Swasth India, हम टेक्नोलॉजी को किस तरह इंटरवेंशन को यूज़ कर सकते हैं ताकि हम और लोगों को गिव देम मोर बेटर हेल्थ इन मोर हैंड्स.
2: We've used technology from the beginning. हमने जब स्टार्ट किया था, जो स्कूल प्रोग्राम था, 5,000 स्कूल था, we had 2 rooms full of books that used to come. और मैंने रवि से बोला था यार अगर इसे 1 million करेंगे तो स्टेडियम चाहिए होगा, वी कांट डू दैट. सो द फर्स्ट थिंग वी डिड वाज डिजिटाइज इट, एंड वी ऑब्वियसली नाउ गो टू 1 million स्कूल ऑल डिजिटाइज, बिकॉज वी कुडंट हैव गॉन अदरवाइज. द स्केल दैट वी हैव गॉट इज लाइक टेक्नोलॉजी, बिकॉज एवरीबडी नाउ हैज अ फोन, यू कैन यूज इट, द वे मैसेजेस आर सीन बाय जनरल पब्लिक एंड ऑल ऑफ दैट. एंड वी हैव डन अ लॉट ऑफ स्टफ ऑन, आई मीन वी हैव लॉन्च्ड इन दिस फोरम the Hygia chatbots, the card that we have for loyalty card for hygiene, the game that we've launched, we're launching the AI powered teacher training module today. I think last year we launched those 2 tech accelerators. I think they were very interesting. The Bempu kit for newborn, which basically tracks your the hypothermia in babies, and we are testing it now in 1 district, and the initial results are extremely encouraging. There was the one that we had, the AI kit, where you put a bracelet on the high-risk pregnant mothers and it tracks, and it gives signals back to. So that's technology. What we are trying to do now with the sanitation workers, I mean, that we have tried a lot of things, but when they go down, it's extremely unsafe, and because of the gases and the poisons. And we have no technology today to figure out where to go, when not to go, and we

0: प्रगति की है, लेकिन स्वस्थ भारत का सपना तभी साकार होगा जब स्वास्थ्य से जुड़ी अच्छी नीतियाँ हमारे रोजमर्रा के जीवन और हमारी आदतों का हिस्सा बने। स्वास्थ्य केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हर नागरिक, हर परिवार, हर स्कूल और हर समुदाय की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। बीमारी से बचाव, स्वस्थ जीवन शैली और रोजमर्रा के जीवन में किए गए सही चुनाव ही एक स्वस्थ भारत की मजबूत नींव होती है। मैं उन सभी नागरिकों को बधाई देता हूं जो अपने छोटे छोटे प्रयासों से भारत को और अधिक स्वस्थ बनाने में योगदान दे रहे हैं। NDTV के माध्यम से मैं आह्वान करता हूं कि आइए स्वास्थ्य को एक सच्चा जन आंदोलन बनाए। हर भारतीय यह संकल्प ले कि मैं स्वस्थ भारत के निर्माण में अपना योगदान दूंगा। आइए मिलकर स्वस्थ भारत और विकसित भारत का निर्माण में अपना अपना योगदान दे। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश।
1: वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट गेट रेडी फॉर समथिंग रियली एक्साइटिंग। स्ट्रेंथ, बैलेंस और इनक्रेडिबल मूव्स का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन, मलखम्ब।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: Welcome back. You're watching the launch of season 13 of the NDTV Dettol Banega Swasth India campaign. Joining us now is actor Devendu, who has also lent his voice to conversations around health and well-being, particularly encouraging men to speak up about things they often keep bottled up. We also have with us Professor Ravi Bhatnagar, Director Corporate Communications and Corporate Affairs, South Asia, MENARP and Africa, RECID. And of course, I have my colleague Sikta Dio joining us as well.
1: Always beautiful to be part of this cause, Ambika.
0: Well, thank you all so much. Screen par Munna Bhaiya ka bhokal hum sab jante hai. Thank you, Devendu, for joining us. Lekin as a character, you know, Munna Bhaiya ka character jo hai, it's a world of goli, gali, gussa, violence. Toh jab aap apna character khatam karke ghar aate hain, how do you leave Munna behind back at the set and when you're back home? Uska jo aapka apna mental well-being, apna, you know, jo wo wala stress hai, aap kaise chhodkar normal life pe aate hain?
2: जी मैं तो मैं ज़्यादातर मुन्ना को ना वैनिटी वैन में ही लॉक करके आता हूँ
0: लॉक करके
2: जी एंड लिसन वी आर एक्टर्स यू नो वी आर ट्रेन टू डू समथिंग लाइक दिस आई थिंक ओवर द इयर्स मी एंड मुन्ना वी हैव बिकम फ्रेंड्स नाउ देर इज़ अ लाइन विच आई डोंट लेट हिम क्रॉस एवर एंड ऑल्सो आई मीन सी प्लेइंग सच डार्क कैरेक्टर्स ऑल्सो टू बी वेरी ऑनेस्टली टेलिंग यू एट टाइम्स इट गिव्स यू अ सॉर्ट ऑफ अ रिलीफ that we all have a dark side, you know, in us. And, you know, to just let it out.
0: Yeah.
2: And in with a character, there's nothing better than that.
0: Hmm.
2: You know, taki hame real life mein wo cheeze na karni pade, wo screen pe kuch nikal jata hai. And then I go back to my home, I see my lovely wife. Main unka chehra dekhta hun, main wapis Devendu ban jata hun. Bombay wala bhi nahi, college wala. So it's all good then.
0: And I love the way when he says lovely wife, full 100% mark.
3: Yeah, green flag aadmi hai yaar.
0: Mirza
3: ko dekhne ke pata nahi chalta ki Devendu itna green flag hai. In Devendu hum dono kafi associate karte hain aisi conversation se which people normally don't talk about, they hesitate to talk about, even part of men don't talk. And why do you think men still find it difficult to talk about their vulnerabilities, ki kya andar kya chal raha hai, wo kisi se baat karne mein katrate hain, like I need help, I'm not okay. Ye baat kyun nahi keh pate hain?
2: Yeah, I think कहीं ना कहीं आयुष्मान मुझे लगता है it's the deep conditioning of our society over the years जहाँ पे आदमियों को एक तरीके का alpha protector of the family you know वो बना के रखा गया है हमें लगता है हम शायद कभी अगर vulnerable होंगे या मैंने अपने दोस्त को बोला कि यार मुझे ठीक feel नहीं हो रहा है मेरा रोने का दिल है तो कोई मजाक ना उड़ा दे हंस ना दे जैसे हम बात करते हैं लड़कियों की तरह क्यों रो रहा है या लड़कियों की तरह तू क्यों ऐसे बातें कर रहा है वो कहीं ना कहीं वो कंडीशनिंग हमें तोड़नी होगी अपनी सोसाइटी में लड़का लड़की हम दोनों हम समानता की जब बात करते हैं तो यहाँ लड़कों की मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए ताकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक इट आउट वरना वो चीज़ें आपका कहीं कुछ और बहुत बुरी शक्ल लेके शायद बाहर आ सकती हैं जो कि आ भी रही हैं हम अपनी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली इंस्टेंसेस ऐसे देखते हैं आई थिंक मोर देन एनीथिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक आदमी का एक आदमी से बात करना यार दोस्तों में बात करना एंड इट्स इंपॉर्टेंट कि मजाक ना बनाया जाए उस चीज़ का आप जब अपने दिल की बात किसी से शेयर करते हैं आप अपने लोएस्ट पॉइंट पे होंगे उस टाइम जस्ट लैंड एन ईयर यू नो उसमें ज़रूरी भी नहीं होता है कि आप मुझे बताएं कि तू ये कर ले या वो बस सुन लो बैठ के उस इंसान की बात Maybe that.
4: Yeah, absolutely.
5: It's okay to be vulnerable. Yeah. It's okay to be sensitive and to cry and shed the tears.
3: But specific लोगों के साथ हमेशा अपनी vulnerability sleep पर रखना भी जरूरी नहीं है. खास आपका एक zone होता है जिनके साथ आप बात कर सकते हैं, share कर सकते हैं, जिनको trust कर सकते हैं.
0: Absolutely.
6: हम सेहत की बात कर रहे हैं रवि और खास तौर से पुरुषों के role की. आप एक नवजात बच्चे के जो पहले 1000 दिन होते हैं, उसकी जिम्मेदारी एक माँ पर सौंप दी जाती है. लेकिन इसमें एक मेल मेंबर का फादर का उतना ही बड़ा रोल होना चाहिए डू यू सी दैट चेंजिंग और देयर इज लॉट टू डू ऑन ग्राउंड
7: थैंक यू एनडीटीवी एंड थैंक यू सिकदा फॉर हैविंग

0: हेयर टुडे. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा. रोल पहले भी था, रोल आज भी है और रोल आगे भी रहेगा. बेसिकली क्या चेंज हुआ है कि इंफॉर्मेशन अभी ज़्यादा है. एक हमारा कैंपेन भी था, डैड्स कैन डू, सो उसके अंदर हमने यही बात किया लार्जली कि एक ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा और ऐसा कुछ भी नहीं मुझे ऐसा समझ में आता जो कि मैन नहीं, जो पिता नहीं कर सकते. सो चाहे बच्चे को नैप दिलाना है या नैपी चेंज करना है या हैंड वॉश कराना है या डॉक्टर के पास लेके जाना है या उसके लिए फीड तैयार करना है, तो मुझे नहीं लगता कि नहीं हो सकता. ये बात और है कि और ज़्यादा ज़रूरत है अवेयरनेस की. और फर्स्ट 1000 days एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम होता है जिसके अंदर बच्चे के जो न्यूरॉन्स हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं. और एक बॉन्ड बच्चा अपने टच से, अपनी स्माइल से, अपनी क्राई से अपने पेरेंट्स के साथ में एस्टैब्लिश करता है. तो बॉन्डिंग तो ऑलरेडी बच्चे का पेरेंट्स के साथ में है ही. अब ये बात बोलना कि मेन का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है बट फैमिली एज ए कपल दोनों का रोल इक्वली इम्पॉर्टेंट है.
1: देवेंद्र जो बात कर रहे,
2: बिल्कुल सही कहा. इनफैक्ट
1: जो देवेंद्र बात कर रहे थे कि हमने बॉक्स किया हुआ है, एक मेल इस तरह से बिहेव करेगा और एक फीमेल इस तरह से बिहेव करेगी और ये इसमें रिफ्लेक्ट करता जो बच्चों की देखरेख और उनकी देखभाल को लेकर है भी.
2: हाँ, और उसी को आई थिंक तोड़ना बहुत जरूरी है. आई मीन ऑफ कोर्स फर्स्ट 1000 days इंपॉर्टेंट है. मदर इज डूइंग एनीवे आई थिंक द हार्ड वर्क. आई मीन लेट मी पुट इट दैट वे. इट्स नॉट इजी, यू नो, जो वो जाती है, यू नो, थ्रू हर प्रेगनेंसी एंड इवन आफ्टर दैट. लेकिन फादर्स प्ले वेरी वेरी क्रिटिकल रोल. यू वांटेड टू ऐड समथिंग?
3: या आई मीन विमेन गो थ्रू अ लॉट एज वी ऑल नो, लाइक पोस्टपार्टम.
2: Yes.
3: And everything, it's not just like about mental. the kid. It's yeah. I mean, वहाँ पे शायद responsibility ज़्यादा बन जाती है बच्चे का. तो आप ध्यान रखें ही रखें, अपने partner का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. उनका mental health क्या है?
2: बच्चा आता है, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा. Everybody is focusing on the kid.
3: Exactly.
2: And very often माँ की well-being, माँ की सेहत हम बहुत often भूल जाते हैं. That's when lot of women, lot of mothers go into postpartum.
3: Yes.
2: Yeah. In fact, sorry, everyone.
0: Basically, the families are also now nuclear.
2: Yeah.
0: There's more of role of you know the partner to take care of the postpartum depression, to take care of the mom, because har koi aata hai, chahe wo gift bhi leke aata hai, blessings bhi leke aata hai, wo stay karti hai newborn tak
2: bacche ke liye.
0: Mothers jo hota hai wo pura ignore ho jata hai. So it's very important basically ki mothers ignore nahi ho, uske jo partner hai wo supportive role mein rahe. And it should not be seen as a band-aid solution ki kuch din ke liye, because the postpartum depression takes lot of time for overcoming.
3: Yeah.
0: And sometimes some years also in some women.
2: Absolutely.
4: And you know, hota hai kai bar ki jaise agar बच्चा बीमार पड़े, बच्चे की देखरेख हो रही है, मर्द बीमार पड़े, घर का जो है उसकी देखरेख हो रही है, जब माँ बीमार पड़ती है वो फिर भी काम कर रही है. तो ये बहुत एक आयरोनिक सी चीज़ है, विडंबना भरी चीज़ है. ये होता है हमारे समाज में जिसको हमें आई थिंक कंट्रोल करना.
3: लाइक दे से इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ किड.
4: एब्सोल्युटली
3: राइट. आई मीन इट्स अ कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एवरीवन कमिंग टुगेदर फॉर दैट न्यू लाइफ.
4: तो वही बोल रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज में और रोल बढ़ जाता है मर्द का.
3: मर्द
4: का
3: टेक केयर ऑफ
2: बच्चों की बात नहीं. मीन यू नो, अगर हम आगे बढ़े, ऑफ कोर्स 1000 days बच्चे हैं, 5 years, बट आई वांट टू आस्क यू देवेंद्र ऑन जेन जी. राइट, वी हैव सीन जेन जी हैज अ वॉइस, दे हैव एन इन्फ्लुएंस एंड दे आर नॉट अफ्रेड टू यूज इट. हम सबने देख लिया है. You know, as actors, as somebody who's a voice, of course, we have Ayushman here with us, and we've spoken about that. How do we get more young people to actually use that influence towards a healthier India? Because now we've seen that health is directly impacted, whether it's our economy, whether it's prosperity.
3: Yeah.
2: We know that. Gen Z ki ko hum kis tarah aware kare ki sehat bahut zaruri hai?
3: I think to begin with, हमको समझना होगा कि health सिर्फ एक physical aspect नहीं है. जैसे हमने mental health की भी बात करी. Health सिर्फ एक तरीके से दिखने के लिए ज़रूरी नहीं है. सिर्फ प्रोटीन खाने से आप हेल्दी नहीं हो जाते हैं. यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड आपका बॉडी टाइप क्या है टू बिगिन विद. आप उसमें क्या क्या चीज़ें खाते हैं, आपको कार्ब्स, फाइबर, इसेंशियल फैट्स, आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट है उसमें. दैट आई थिंक दैट कॉन्वर्सेशन नीड्स टू स्टार्ट एट आर डिनर टेबल्स कि आप क्या खा रहे हैं. मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर पीपल, यू नो, फॉर द यंग किड्स, यू नो, कि तुमने क्या खाया, इससे तुम्हें क्या मिला, इसको तुम और बेटर कैसे कर सकते हो, डज इट सूट यू योर बॉडी. Maybe all of that,
2: yeah.
4: I think वही मेरा अगला सवाल था. Actually, answer उन्होंने कर ही दिया है कि सेहत जो है वो mental सेहत भी बहुत जरूरी है. Six packs के अलावा
2: बहुत कुछ. And जो protein का भौकाल है. Yeah. I can use that word. That's another one.
3: It's such an OD right now. Everyone is just भगवान के बाद protein का ही नाम आता है मुझे लग रहा है.
1: Fitness और सेहत को अलग रखना होगा.
3: हाँ, बिल्कुल.
1: Fitness और सेहत को अलग रखना चाहिए, you know.
3: And लगना चाहिए. I think sport can be a very big instrument in this. I think it has to be a compulsory, जैसे हम physics, chemistry, like geography padhte hain, there has to be a sport included in our curriculum.
2: Which teaches so much, right? It's about bilkul. Character building, it's about discipline, absolutely.
4: Well, I think Aishman... 100 gram gyan ke sa 100 gram protein. Hum aksar kehte hain ki sehat har insaan ka haq hai, lekin sawal ye hai ki us haq ko har ghar tak pahunchata kaun hai? Who are the people who are ensuring India's future all over the country, ensuring better health in more hands every day, overcoming huge odds?
2: Aishman, that's the biggest challenge, sorry. Kyunki kabhi raaste aasan nahi hote, accessibility ki problem aati hai, lekin kuch log aise hote hain jinke liye mushkil raasta rukne ki wajah nahi, aage badhne ki wajah ban jata hai. Aaiye dekhte hain Manipur ki Tamalong mein se ek aisi aasha worker ki kahani, Medinlun Nemai ki kahani.
5: For a 56-year-old Asha worker, Medinlun Nemai begins with household chores before she sets out to serve the women and children of a remote village, Atang Kulin Nenruang, 28 kilometers from Tamil in Manipur's Taminglong district. Asha workers are a critical link between India's healthcare system and rural communities. They support immunization, educate families on healthcare and nutrition, maintain health records, and promote sanitation. Medinlun continues to cross difficult terrain to reach people in her village. With the focus on women and children, her motivation is straightforward: keeping children healthy.
6: Asha ka kam to bahut hai, kam to likha bhi bahut hai, fir bacha log ke bhi kam. बच्चा लोग कैसा बाल होगा, कैसा करेगा, कैसा बच्चा लोग से बीमार नहीं सहने के लिए रखेगा, ऐसे भी हम लोग से सब ये उसको बच्चा लोग को ऐसा हम आशा लोग तो कम करते हैं.
5: For Medinlun, every journey through the hills, forests and rivers is a journey to take healthcare closer to her community. And she keeps on going, one household and one child at a time.
4: अभी जो आपने देखा, ये सिर्फ एक आशा वर्कर की कहानी नहीं है, ये हौसले की कहानी है, फर्ज की कहानी है और उस जज्बे की कहानी है जो एक दिन विकसित भारत का सपना पूरा करेगा.
2: Absolutely, Aishman. It's the unsung heroes like Medinlun who are giving better health into more hands every day.
1: बिल्कुल, ये वो मुहिम है जो असरदार है और जिसका संदेश बहुत सरल लेकिन प्रभावशाली है. अब चर्चा हमारे भविष्य की, भारत के भविष्य की, कैसे हम देश के स्वास्थ्य और सेहत को सुरक्षित करके अपने भविष्य को सुरक्षित रख सकते हैं. जॉइनिंग अस डॉक्टर नरेंद्र सैनी, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA एंड मेंबर प्राइम मिनिस्टर्स ग्रुप ऑन इन्फेंट मोर्टैलिटी, नीरज जैन CEO सोशल अल्फा, डॉक्टर नीलम मोहन प्रेसिडेंट इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिशियंस, वुंटास मुद्गल रीजनल मार्केटिंग डायरेक्टर हेल्थ साउथ एशिया रैकेट, और हमारे साथ देवेंद्र और रवि तो बने ही हुए हैं मंच पर. डॉक्टर सैनी, अगर मैं आपसे शुरू करूँ, इन्फेंट मोर्टैलिटी को लेकर तमाम चुनौतियां हमारे देश में बनी हुई हैं, अभी भी बहुत काम हुआ है, लेकिन इन चुनौतियों से पार पाना इस वक्त सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है. कैसे एक नवजात के भविष्य को हम सुरक्षित रख सकते हैं अभी इन चुनौतियों को देखते हुए?
7: देखिए, चुनौतियां आपने बिल्कुल सही कहा, चुनौतियाँ बहुत हैं, लेकिन हमने काफ़ी कुछ अचीव भी किया. कहाँ हम 120-125 हम इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट से आज की तारीख में 27 तक पहुँचे हैं, तो इस बात की तो उपलब्धि है, लेकिन चुनौतियां बहुत हैं. यदि हम चाहते हैं कि हमारा जो नव शिशु है इज नॉट ओनली सर्वाइविंग, इट इज़ थ्राइविंग, कि बच्चा पनपे, स्वस्थ रहे और अपना जीवन कुछ स्वस्थ कुछ सोसाइटी को भी दे पाए, इसको आज की तारीख में कहेंगे कि यस, अच्छा एक जीवन हमने दिया है. उसके लिए ज़रूरी है इंस्टीट्यूशनलाइज डिलीवरी. आज की तारीख में भी अभी भी हमारे यहाँ पर रूरल और अर्बन में डिवाइड है. यदि मैं अर्बन की बात करूं तो 17% है और रूरल में 37 इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट है. तो देर इज़ ए डिवाइड बिटवीन द टू, क्योंकि इंस्टीट्यूशनलाइज डिलीवरी नहीं हो रही, तो थोड़ा हमें उसकी तरफ बढ़ना होगा कि इंस्टीट्यूशनलाइज डिलीवरी हो. क्योंकि अभी भी जो हमारे एडोलिसेंट गर्ल्स हैं, मैं कहूँगा 1000 डेज बोलते हैं, मैं उससे पहले की भी बात करूँगा, क्योंकि उससे पहले कंसीव करने से पहले की बात है कि डिलीवरी जब शादी होती है तो बहुत ज़रूरी है कि माँ की उम्र क्या है. एडोलिसेंट हेल्थ आज की तारीख में भी अराउंड 25% जो फीमेल्स हैं हमारे देश के अंदर बिफोर द 18 ईयर्स मैरिज हो जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ के साथ जरूरी है कि माँ की ग्रोथ पूरी हो जाए उसके बाद बच्चा होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली होता है। तो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिलीवरी और ये जो एडोलेसेंट जो हमारी शादियाँ होती हैं वो बंद होनी चाहिए, उसके ऊपर कुछ ना कुछ हमारे को और काम करना होगा, क्योंकि काफ़ी काम हुआ है लेकिन और करना पड़े। तीसरा है इन्फेक्शन, वो सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि इन्फेक्शन आज की तारीख में हमारे अराउंड 30% डिलीवरी जो होती है इन्फेक्शन के कारण हो जाती हैं, तो उसको भी रोकना होगा, क्योंकि ये एक बहुत जरूरी चीज़ है। आज सारे ये प्रिवेंटेबल है, दिस इज़ नॉट विच इज़ नॉट प्रिवेंटेबल, और इंडिया इज़ गुड इनफ, हमारे पास अच्छी चीज़ें हैं, अच्छा सब कुछ हम कर सकते हैं, सिर्फ लोगों के बिहेवियर चेंज में और हाइजीन प्रैक्टिस को एक अमल मिला।
4: बिल्कुल डॉक्टर सैनी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर डॉक्टर मोहन। वैक्सीन्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स फॉर प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन, एंड मैम व्हाट डू यू से टू पेरेंट्स हु आर एंटी वैक्सर्स, हु डोंट बिलीव इन इट, हु हैव स्टिल हैव डाउट्स कि बच्चों को वैक्सीन देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, व्हाट डू यू से अबाउट दैट?
8: देखो, जो पेरेंट्स को ये शक होता है या वैक्सीन के बारे में, तो मैं उन्हें एक कंसर्न पेरेंट ही मानूंगी, एटलीस्ट वो चाहते हैं कि इसका रिस्क तो नहीं है। लेकिन जब वो ये सवाल पूछते हैं तो दो चीज़ समझना ज़रूरी है, जिसके लिए हम वैक्सीन दे रहे हैं उस डिज़ीज़ के क्या इम्पैक्ट है, यू नो, रिस्क से ज़्यादा उस डिज़ीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल आप वो डिज़ीज़ क्या मीज़ल्स है या मेनिनजाइटिस है या कैंसर कोरिलेटेड हेपेटाइटिस बी है, सो ये अपनी या HPV जो निकली हैं, तो इसको लेके आपको ये समझना चाहिए कि रिस्क वर्सेस की डिज़ीज़ का इम्पैक्ट क्या है। नंबर वन, कोई भी वैक्सीन जब आती है तो आई वुड से दे आर अमंग द हाईली स्टडीड मेडिसिन दैट यू कैन थिंक अबाउट लेते हैं, और वैक्सीन आने के बाद भी इनकी ऑनगोइंग स्टडीज़ चलती रहती है, नेशनली ही नहीं इंटरनेशनली भी। कोई भी एडवर्स इवेंट होता है तो वो पूरी तरीके से, कभी कभी एक सोशल मीडिया आजकल इतना बढ़ चुका है कि एक छोटी सी स्टोरी, एक पर्सनल फियर को इतना बढ़ाया जाता है कि वो उससे इम्पैक्ट हो जाता है। तो जो भी ये सोशल मीडिया में स्टोरीज़ देखते हैं, उनको ये समझना भी चाहिए कि कोई चीज़ अगर वैक्सीन से साथ जुड़ी है या वैक्सीन के आसपास हुई है, सपोज़ किसी को गिर गया और उसे कुछ एक्सीडेंट हुआ, चोट लगी, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वैक्सीन से ही रिलेटेड है, एग्जाम्पल दिए। सो ये समझना ज़रूरी है, बिकॉज वैक्सीन्स एक आपको प्रोटेक्शन दे रही हैं ताकि आप एक अच्छी तरीके से उस बच्चे की ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो। और
4: हम जैसे मिलेनियल्स हैं, उस टाइम पे HPV वैक्सीन नहीं हुआ करती थी, लेकिन आजकल टीनेजर्स को दी जाती है, तो ये अभी ये क्या डिफरेंस क्या है, मेडिकल साइंस इवॉल्व हो रही है ऑफ कोर्स।
8: जी, वेरी नाइस क्वेश्चन, थैंक यू। 600 मिलियन से ज़्यादा डोजेज HPV की ग्लोबली दी गई हैं, 600 मिलियन, लेकिन अभी भी लोगों को फियर है कि ये वैक्सीन HPV की जो गवर्नमेंट ने अप्रूव की है, एंड इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री भी वैक्सीन दे रही हैं, कि उसका दिस इज़ वन ऑफ द ओनली प्रूवन वैक्सीन अगेंस्ट अ कैंसर। जैसे हेपेटाइटिस बी भी लिवर सिरोसिस से कैंसर कर सकता है, तो उसे हम वैक्सीन से प्रिवेंट कर सकते हैं। उसी तरीके से ये कैंसर लड़कों में भी, एनल कैंसर या वॉट जेनाइटल कैंसर, और लेडीज़ में कैंसर जो होता है सर्वाइकल, इसको प्रिवेंट कर सकता है, क्योंकि एक वायरस के कारण है ये। सो ये समझना ज़रूरी है कि उसकी मॉर्बिडिटी, उसका इम्पैक्ट, उसकी डेथ कितनी रिलेटेड है, रैदर देन वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट एक थोड़ा सा फीवर या पेन या स्वेलिंग, इतना ही लिमिटेड होता है।
2: इनफैक्ट एब्सोल्युटली ट्रू आपने जो कहा। इनफैक्ट देवेंद्र, आप भी क्षेत्र में काफ़ी काम करते हैं अवेयरनेस पे, यू नो, ऑन वैक्सीनेशन, सर्विकल कैंसर, और आपने इन चीज़ों के लिए भी अपनी आवाज़ उठाई है। How important is it to lend your voice, like how Ayushman and like you'll do it, you know, on important issues like this? Just explain kya, right? Myths hain, parents bhi confused rehte, kare nahi kare, kitna zaruri hai?
3: Bahut zaruri hai, I think ye, aur jaisa ma'am ne bataya, ye it's all science backed, you know, iske upar ek research hai, ye, you know, man se banayi hui baat nahi hai. और जितना हम लोगों को एजुकेट करें इसके बारे में, आई थिंक इट्स बेटर फॉर आर फ्यूचर, फॉर आर फ्यूचर जनरेशन टू कम, और उसका हम जितना इम्पैक्ट कहते हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर, if we take that into account, I think it's very important to talk about these things.
2: Yeah, absolutely. Sorry, Ayushmani, you were
4: talking. No, I'm talking to Guntaz now, I think.
2: I was just saying prevention ki agar hum baat karein, picking up from what Dr. Mohan said, Neeraj, you know, using social media to, you know, very often that's used. Of course, it should be used for the right thing, right? Yeah. Neeraj, technology, we've seen how it's evolved, so much is happening out there. Innovations, we're seeing it through our campaign. How can that really bring about a change for last mile connectivity? जो अभी हमने story देखी, जैसे कि technology help करे ताकि preventive तौर पर भी और ताकि health care सब तक पहुँचे.
0: Thank you, Ambika, and it's really nice to be back here. Thank you for inviting me in my new avatar as the CEO of Social Alpha.
2: Yes.
0: So technology is not something that we are saying that, you know, we cannot actually solve the healthcare problem without technology. So technology is going to be at the core of it. Because it's a big country, lots of people, access is the largest challenge.
2: Yeah.
0: In fact, a lot of technology and a lot of innovation is now coming out of India. So what we are doing is really looking at the gap at the end, working backward and supporting innovations through that journey into actually last mile delivery. So primary healthcare, for example, a lot of the diagnosis, screening, etc., which is going to happen at primary healthcare is going to be with the help of technology.
2: Yeah.
0: Because we cannot physically have so many trained people right at the front end. So technology is the only way to do it.
2: Yeah.
0: I mean, whether it's screening for cervical cancer, you know, we don't find out about cervical cancer until probably it's too late. But if we're able to do population level screening, then we can do a lot more in terms of taking action. For newborn babies, you know, 30% are dying because of sepsis.
2: Right.
0: So how do you actually do quick tests at the primary care level to be able to do that?
2: Yeah.
0: So those are the kind of things that we really need to push forward, and a lot is happening. One more which I want to talk about is a stethoscope. It's artificial intelligence supported, and it tells you when there's something, some sort of irregularity. It's just a screening tool, but it kind of immediately warns you and takes you into the next class.
2: So why preventive over curative? I think screening important here.
4: Yeah, bilkul. Guntaz, today's discussion is about securing India's future by securing India's health. From Reckitt's perspective, why should preventive health, something as simple as washing hands with a soap, you know, it is taken as an investment in Viksit Bharat, not as a cost?
9: Great question. In my view, preventive health is not a welfare expenditure. It is definitely a economic investment. And in fact, the economics is extraordinary. The WHO estimates that for every dollar that we invest in hand hygiene, in preventive healthcare, there is a $15 economic return simply because of avoidance of healthcare cost, reduced burden of the health system, and labor productivity. Let me explain. When a kid falls sick, the kid also misses his or her school, misses an opportunity to improve his or her life. The parents miss work. And in case of hospitalization, it can cost anywhere between 16,000 rupees to 22,000 rupees, which is a financial shock for many families in India.
2: Sure.
9: And hence, the simple act of hand washing is not just a health agenda, it's an economic agenda.
10: That's simply explained.
2: Yeah.
9: Thank you.
8: Continue into that. It's not only about the outpatient, even within the hospital.
2: Yeah.
8: Loads of infection you can reduce if you do your hand hygiene within the hospital when they are admitted.
2: Which is
7: common saying is, clean hand saves life.
4: आवाज जो उठाते हैं इसका क्या क्या वैल्यू क्रिएट होता है सोसाइटी में?
3: आई थिंक लोग कहीं ना कहीं हमको एज हीरोज देखते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे आके एज दिव्येंदु या आयुष्मान बात करते हैं. हमारे कैरेक्टर से जो आप देखते हैं कई बार इन्फ्लुएंस होते हैं, ओवर इन्फ्लुएंस भी होते हैं, लेकिन हमारा जो बिलीव सिस्टम है उसके बारे में यहाँ पे बात करना बहुत ज़रूरी है कि हम जो स्क्रीन पे करते हैं दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग. वी प्ले अ कैरेक्टर हेयर, व्हाट वी टॉक अबाउट वी आर एज अ यू नो एज अ पर्सन व्हाट वी बिलीव इन. तो कहीं ना कहीं यार यही चीज़ों के बारे में बात है. हेल्थ के बारे में हमने जो बात करी है, न्यूट्रिशन के बारे में हमने जो बात करी है, जो बेसिक एक हैंड वॉशिंग आज भी हम इन 2026 वी स्टिल हैव टू यू नो टेल, आई मीन इट्स ऑल इन द बेसिक्स,
2: टेल एंड ब्रिंग अबाउट बिहेवियर चेंज. अभी भी बेसिक पे हम बात
3: बेसिक्स पे हम बात कर रहे हैं, बट आई गेस इट्स एज दे से बेसिक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. in anything and everything. वो बात करनी बहुत जरूरी है.
2: True. In fact, I think that's a very, very important message. Basic है, लेकिन on that note, we're going to be taking a really short break. But please don't go away, क्योंकि ये चर्चा जारी है. You're watching the launch of season 13 of the NDTV Dettol Banega Swasth India campaign. So stay tuned.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: कोई
1: नहीं
0: बात
1: नहीं
0: नहीं,
1: प्लीज
0: बोलिए
1: आप
0: ना,
2: दिल से
1: दिक्कत है ना
2: बोलिए,
1: मेरे
2: दिल से
1: को बोलने
2: बोलिए।
1: को वजह से कैसा है सर, जब मैं वेट उठाता हूँ वेट की वजह से मेरे को ना जो अपना हाथ जो रहता है उससे थोड़ा दर्द होता है इससे सर करके, मैं कैसा भी अपना घर का चूल्हा मैदा खाता हूँ, अगर नहीं गया काम को तो घर का चूल्हा बंद रहेगा सर जी, क्योंकि मेरे को कौन से हाल में जाने का ही जाने का रहता, दो बच्चे के वास्ते बस उनके वास्ते मेरी जिंदगी में मैंने ये करवा लिया। जब से मैंने ये आपे टॉयलेट ज्वाइन करा तब से मेरे को बहुत सेफ्टी मिल गई।
0: Thank you so much, Sunil ji. And Rashi, how can you, how do you believe that you ensure that every Indian should be truly healthy? And how can we give better health in more hands?
3: I think firstly, I'm very happy to be a part of this panel. And I think we need to have more such conversations. We are so overstimulated with information all the time that I think the right information doesn't reach us. Is why I think these conversations are very important on a platform like this. Talk about it as much as you can and become more responsible citizens. I think, as, like I said before, those small habits can change everything for us. So I think it starts with home and not littering anywhere outside, taking care of not using so much water, just very basic things. It all starts at home. And you know, that translates into the collective movement. So I feel अपनी हेल्थ का ध्यान आप रखते हैं, बट यू शुड ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पीपल हु आर वर्किंग सो हार्ड टू मेक श्योर वी आर हेल्दी, यू नो, जस्ट बीइंग मोर रिस्पॉन्सिबल।
0: इट्स वेरी वेल सर राशि, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल द गेस्ट फॉर बीइंग अस, बीइंग हियर विद अस। टाइम फॉर अ क्विक ब्रेक, बट वी आर बैक विद मोर।

रहे हैं बनेगा स्वस्थ इंडिया। देश भर में आयोजित एक इनोवेशन चैलेंज के जरिए बनेगा स्वस्थ इंडिया ने कुछ ऐसे नए और असरदार समाधानों की पहचान की जो जोखिम कम कर सकते हैं, जिंदगियां बचा सकते हैं और हमारे शहरों को चलाने वाले लोगों के काम को ज्यादा सुरक्षित और सम्मानजनक भी बना सकते हैं। आज मिलिए ऐसे ही 5 इनोवेटर्स से जिन्होंने अपने यकीन को बदलाव में बदला और मुमकिन किया और उनके पास ये समाधान इस वक्त हैं। तो शुरू करते हैं हमारे पहले इनोवेटर से। इनका सफर शुरू हुआ एक लैब से जहां वो DRDO के लिए गैस सेंसर्स पर काम कर रही थी, लेकिन जब भी किसी सीवर में सफाई कर्मचारी की मौत की खबर सामने आती, उन्हें लगता कि उनकी रिसर्च का मकसद सिर्फ लैब तक सीमित नहीं रह सकता। वो लैब से निकलकर जमीन पर गईं, सफाई कर्मचारियों से मिली, उनकी मुश्किलों को भी समझा और फिर तैयार किया सेफ 360, एक ऐसा सिस्टम जो किसी कर्मचारी के अंदर उतरने से पहले वहाँ की हवा और ख़तरनाक गैस की जांच करता है और काम के दौरान भी उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। प्लीज़ वेलकम मोनिका जायसवाल। प्लीज़

खानदानी की टीम इमारतों, ऊर्जा और पानी के लिए स्मार्ट सेंसर्स बनाती है और अपने इस अनुभव को वो एक बात अच्छी तरह जानते हैं, हालात कभी भी बदल सकते हैं। इसी चुनौती को देखते हुए फाउंट लैब ने एक छोटा सा वायरलेस मैग्नेटिक मॉनिटर तैयार किया। इसे कर्मचारी के कपड़ों पर, सीढ़ी पर या सीधे मैनहोल पर लगाया जा सकता है और जब तक काम चलता रहता है ये लगातार अंदर की हवा पर नज़र रखता है। और सबसे अहम बात, खतरे का अलर्ट कर्मचारी और सुपरवाइजर दोनों को एक साथ मिलता है ताकि समय का रहते कदम उठाया जा सके। प्लीज़ मंच पर आइए।

सावण मास ते एक सांझ लेके चौतरा के नीम पे को झूला बांध लेवे, न दिखे मानस की जात मारे ओरे धोरे प्रेम की ही ओट मैं यूरा।

0: I want to welcome my brother Vikit Sari. Please come on the stage, brother.
1: किसी के पीछे नहीं चलना था तो अपने ही रास्ते बना लिए। सस्ती ये दुनिया में आंखों ने ख्वाब मेरी थोड़े महंगे सजा लिए। आंखों पे चश्मे चढ़ा लिए कि सबको देखे ये चेहरा हंसता हुआ। रुकी नहीं सांसे तो चल पड़ा फिर और कंधों पे बस्ते उठा लिए। दुनिया घुमारी है मैं भी कमाल हूँ देखो ना घूमते जा रहा हूँ। कि टूटे ना हिम्मत इसलिए तस्वीर को माँ की मैं चूमते जा रहा हूँ। मिली ना मंजिल तो चल पड़ा मंदिर को सोचा भगवान मिलेंगे जो पहले से अंदर है मुझ में बसा हुआ। मैं उसको ही ढूंढते जा रहा हूँ। है घर का वो छोटा जो कंधों पे जिम्मेदारी बड़ी लेके चला है। जब बैठा वो छाँव में उतारे जूते तब जाना वो कितना चला है। वो तो बस जानता ये कि करो भला तो बस होता भला। इतिहास गवाह है जो बांट के खाता उसे ऊपर वाले से कम ही मिला है। घर वाले याद भी आते हैं घर लौटो ये बाप नहीं चाहते हैं। जब पेट हो भूखा तो बिस्तर पे नींद तो आती पर ख्वाब नहीं आते हैं। चेहरे पे धूल लगी जिनके आईने घर के वो साफ दिखाते हैं। पेट वो भरते हैं भूख से ज्यादा जो अक्सर ही मांग के खाते हैं। टूटा है दिल टूटा हूँ मैं पर फिर भी सब रोज संभाला है। कुछ ना कुछ कम ही पड़ा है जब से जिंदगी में होश संभाला है। लिखी है ऊपर वाले ने जिंदगी है या मौत की सजा। मौत ही होगी शायद क्योंकि

पावे नीम की डाली मेरे सुपने में, एक घेर पड़ा कति खाली मेरे सुपने में, एक अरहड़ भरी ट्राली मेरे सुपने में, सरसों के फूल की बाली मेरे सुपने में, एक चूल्हे आगे पोती मावा स्वाद हाथ की रोटी का, एक कोल्लू वाला खेत मेरा मिलके दस खो गया एक मेरा, एक सूरज छुपता खेत जगे सरवाले में, एक डिबिया की लो जड़ती दिखे आड़े में, वे धरी पाम की कड़ी काट के ताड़े में, फिर फंस गया बचपन चका चौंद के जाड़े में, बेशक कब्जे में जंग लगी एक खुला आज भी क्वाड़ पड़ा, एक चरखा खालिया दीमक ने पर देखे मेरी बाट खड़ा, एक रोवे बाजा हीर हीर चिल्लावे और टैम की सुई तीर से तोड़े जावे, मेरा मन दरिया में डूबा गड़वा सोनी का, मेरा घर पारोसा देवदास।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: अमेजिंग या।
1: और अगला नाम, पीरियड्स कभी भी किसी बच्चे की शिक्षा के रास्ते में अवरोध नहीं बन सकते, उनकी मुश्किल नहीं बन सकते। सुषमा तमांग ने इस चुनौती को दूर करने की ठानी। स्वागत करें सिक्किम की द पीरियड स्टिग्मा डिस्ट्रॉयर सुषमा तमांग का। वेलकम एंड कांग्रेचुलेशन।
2: Congratulations.
3: Well, clean water, safe toilets, and a place to wash your hands should be basic to every child's school day. Please welcome the Wash Infrastructure Reviver, Om Prakash Mishra. A big round of applause.

एक बेहतर स्कूल एक बच्चे की रोज की कश्मकश को बहुत हद तक बदल सकता है। उत्तराखंड के विजय प्रसाद भट्ट ने अपने आसपास के लोगों को साथ लिया ताकि मिलकर वो क्लासरूम, हाथ धोने की सुविधाएं और अच्छे पोषण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त कर सकें। प्लीज वेलकम द स्कूल वेलबींग ट्रांसफॉर्मर विजय प्रसाद भट्ट जी को।

0: Thank you so much. Rupak Roy Chaudhary helped bring menstrual hygiene into everyday school life through better facilities, awareness and student participation. Ladies and gentlemen, please welcome making menstrual hygiene a habit, not a hush, Rupak Roy Chaudhary. बदलाव नहीं किया बल्कि एक स्कूल को जमीन से बिल्कुल शुरुआत से शुरू की। राजस्थान की गीता कुमारी ने स्थानीय समुदाय को साथ लिया ताकि बच्चे खासकर लड़कियों को एक सुरक्षित विद्यालय मिले जिसमें पानी साफ सफाई और सम्मान भी साथ हो। अब स्वागत करते हैं द स्कूल फ्रॉम स्क्रैच विजनरी गीता कुमारी जी का।
1: Manipur, Changamayum Damayanti Devi turned everyday hygiene into student responsibility, inspiring children to wash hands, manage waste, and guide one another towards cleaner habits. Please welcome the student hygiene commander, Changamayum Damayanti Devi.

0: आदतों को बदलने के लिए या उसे सुधारने के लिए थोड़ी सी क्रिएटिविटी जरूरी होती है
1: जी।
0: तो अंडमान निकोबार आइलैंड के भी निलैया ने शतरंज के खेल से बच्चों को प्लास्टिक वेस्ट के असर के बारे में समझाया, फिर इस सीख और समझ को वो बीच की सफाई में ले गए और उनका इस्तेमाल किया। स्वागत करिए द चेकमेट प्लास्टिक चैंपियन बी निलैया जी का।
2: Towards change is simply breaking the silence. In Jammu and Kashmir, Anjali Raina opened conversations around periods, improved access to sanitary pads, and helped girls manage menstruation with greater confidence and dignity. Please welcome on stage the period silence breaker, Anjali Raina.
3: Congratulations. Bhavini Dinesh Bhai Desai turned students into cleanliness ambassadors, making hand washing and responsible waste disposable everyday habits. Please welcome the cleanliness culture creator, Bhavini Dinesh Bhai Desai.
2: Congratulations. Well, moving on, in Nagaland, K. Zanbeni Lotha brought students, parents, and the school together to make menstrual health, hygiene, education, and practical support part of everyday school life. Please welcome the adolescent health guardian, K. Zanbeni Lotha, with a big round of applause.
3: You look lovely.
2: You look so lovely. All of them look lovely. Yeah.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: He is being lauded for his courage across the world, and now Prime Minister Narendra Modi has spoken with Braveheart Captain Smith Machar while he recovers at a hospital in Abu Dhabi. The Prime Minister commended the captain for his courage, patience and presence of mind that saved many lives. Here's that full conversation, which is almost 10 minutes long.
1: Smith, namaste.
2: Namaste, sir.
1: कैसे हो अभी? तबीयत कैसी है?
2: सर सब ठीक है, सर सब ठीक है।
1: देखिए, पूरा देश आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। महामृत्युंजय का जाप सब दूर चल रहे हैं।
2: यस सर।
1: आपकी हिम्मत ने, आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने एंड फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई, और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं हैं, जान बचाने वाले लोग हैं। और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपनी जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात,

0: 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूं। कल मुझे भूपेंद्र भाई से बात करने का मौका मिला, गीता बहन से बात की, सोनल बहन से बात की, जावा और बॉबी से तो नहीं कर पाया, लेकिन मैंने गीता बहन को कहा था कि आपका नाम गीता है लेकिन आपने कृष्ण की गीता को पूरी तरह पचा दिया और आपने स्मित को उस साक्षात गीता के संस्कारों से उसका जीवन बनाया। स्मित, अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा।
1: सर, मेरे लिए मैं सर से भी बोल रहा था, आप मेरे सबसे बड़े एक्टर हैं और आप मेरे को ऐसे कॉल करके मेरी ऑफिस जाए कर रहे हैं, मुझे बहुत बहुत बहुत गर्व फील हो रहा है। मैं उस मोमेंट में सर, मैं अपनी लाइफ के लिए लड़ रहा था, बट एक ऐसा मोमेंट था जब मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं गिर चुका था, मेरे को इतने गांव लग चुके थे कि मैं गिर चुका था नीचे, एंड उस टाइम पे मैं बोला अगर मैं नहीं उठूंगा तो मैं 17 साल से जा जुड़ा था, मैं पिछले 11 साल से कैप्टन हूँ और मुझे पता चलता है यहाँ बन करके भी कि जहाज में क्या हो रहा है। जब मैं नीचे गिरा हुआ था तब मुझे ऐसा सो रहा था कि एयरक्राफ्ट नीचे जा रहा है और मुझे बिल्कुल पता था कि ये एक लार्ज पुश होगा, स्मिथ कर दे, दरवाजा बस वही है और तभी भी मैं मार खा ही रहा था, बस वो खोल दिया सर, बाकी सब आ गए और बाकी सब की भी उतनी उसमें रोल था। बट जान के मैं सर को बोल रहा था कि मैं अपनी जान के हिसाब से कर रहा था, बट एट द सेम टाइम मुझे इतना भी पता था कि मैं उन सबको नहीं मत दे सकता। बस उसके बाद मेरे को लोगों ने यहाँ पे भी सऊदी में भी या फिर तो बन के इससे अच्छी केयर और इससे अच्छा मेडिकल अटेंशन नहीं मिल सकता था। एंड मैं सर मैं एक सिर्फ पॉजिटिविटी मैं जब भी मेरे को डर होता है मुझे एक ही चीज आती है, मैं सिर्फ हनुमान चालीसा बोलता हूँ। उस टाइम पे भी मैं सिर्फ हनुमान चालीसा ही बोल रहा था, अब मुझे पता है कि वो भगवान ही मेरे को बचाए। बस आपका एक कॉल आ गया, मैं जो बहुत बहुत गर्व होता है, अब भी मेरे को हो रहा है, मेरे पे गर्व अब तक नहीं हो रहा था, अब हो गया सर। सॉरी क्या आपके सामने लौट रहा हूँ सर।
0: स्मित, अगर मेरे सामने आप भावुक नहीं होंगे तो कहां होंगे।
1: तो ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी आपसे बात होगी, कभी नहीं सोचा।
0: आपने इतना बड़ा काम किया है भाई कि हर देशवासी आज दुनिया के लोग भी आपको देखने, आपसे बात करने के लिए बहुत ही आतुर है। और ये बात आपने जो बताई है हनुमान चालीसा की, इसके लिए तो मैं गीता बहन को प्रणाम करूंगा कि आपको ऐसे संस्कार दिए, भूपेंद्र भाई को प्रणाम करूंगा, कोना नहीं। और मैं आपको बताऊं, उसमें कम मेरी जब सोनल बहन से बात हुई तो मैं सरप्राइज था, इतनी स्वस्थता से वो बात कर रही थी, इतनी हिम्मत से बात कर रही थी। सचमुच मैंने कल्पना नहीं की थी कि सोनल बहन ऐसी परिस्थिति में इतनी स्वस्थता से बात कर सकती है। तो मैं समझता हूं कि आपने एक परिवार के नाते आपने सचमुच में पूरे देश का नाम रोशन किया है।
1: सर, मैं रोज सुबह जब पूजा करता हूँ, मेरा 2 साल का बेटा मुझे गोद में बैठ के मेरे साथ हनुमान चालीसा मैं उसको सुनाता हूँ कि जो मुझे बोला गया है, क्योंकि आज हम लोग देश से दूर है बट हमारी संस्कृति से दूर नहीं होनी चाहिए।
0: सही बात है।
1: और अभी तो यहाँ पे तो वो भी नहीं लगता कि हम देश से दूर है, ये यहाँ पे लोग बहुत बहुत बहुत प्यार से और बहुत ध्यान से हमें रखते हैं।
0: आपको पता नहीं होगा, लोग सावर कुंडला में भी, वढ़वाण में भी, सब दूर एक ऐसे भावुक वातावरण बना दिया है, और पूरे हिंदुस्तान में तो है ही नहीं है। कल सभी मंदिरों में पूजा प्रार्थना आरती हुई, सभी तीर्थ क्षेत्रों में आरती हुई, और सब आपके दीर्घायु के लिए और उत्तम स्वास्थ्य के लिए सब प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए आप तो जल्दी स्वस्थ होने ही वाले हैं। भारत आपका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक है। आप शरीर में कोई तकलीफ जो भी मैं समझ सकता हूं, आप वीर पुरुष हैं तो आपने घावों को तो झेलना शायद आपके लिए बहुत आसान कर लिया है आपने।
1: नहीं सर, मैं उस घाव को घाव की तरह नहीं सोच रहा हूँ, बिकॉज वो मेरे को और भी फिर उतना मुश्किल होगा मेरा रिकवरी। मैं इसको एक जर्नी की तरह सोच रहा हूँ जो स्लोली स्लोली होने वाला है, एंड वो टाइम लेके होगा, बट मैं बहुत बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि ये रिकवरी होगा और मैं एकदम ही स्वस्थ हो जाऊंगा।
0: मैं सऊदी सरकार का भी और यूएई सरकार का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आपकी बहुत केयर की, मैं उनका भी आभारी हूँ। स्मित, आपको जब भी जरूरत लगे मैं एक फोन कॉल अवे हूँ। लेकिन आपने सचमुच में, वरना ये कल मैं देख रहा था लोगों ने सोशल मीडिया में जो अपनी भावनाएं व्यक्त की, और लोगों ने कहा अगर ऐसा न होता तो पता नहीं हिंदुस्तान पर क्या क्या बीतती, भारत के सभी पायलटों पर क्या बीतती, भारत के सभी पायलटों को किस प्रकार से देखा जाता। आपने इन सबको बचा लिया है, यानी बहुत बड़ा काम आपने किया है। जब मिलूंगा तब अंदर की बातें तो बाद में सुनूंगा मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मोबाइल पर ऐसी बातें करूं मैं आपसे। और आप भी पूरी तरह स्वस्थ हो जाइए, और आप बिल्कुल, पूरा देश आपके साथ है। मैं ज्यादा आपको परेशान करना नहीं चाहता हूं। मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं। आज गांधी जयंती है, अहिंसा क्या होती है वो आपने जी करके दिखाया है। चलिए, जय श्री कृष्ण। मेरा थोड़ा गुजराती में बात करी ली। बॉबी अने जेवा गुजराती बोले छे कि नहीं बोलता? गुजराती बोले छे। તો બાળકો મળવાનું થઈ ગયું? બાળકોને ડોક્ટર એલાવ કર્યા મળવા માટે?
1: મારી મોટી દીકરી આવી હતી પણ એ આ ઉપર જોઈ નહીં ડરી ગઈ.
0: અચ્છા અચ્છા.
1: એ થોડી એ મારાથી બહુ ક્લોઝ છે. અને મારા નાના સન 2 વર્ષ પછી એને નથી એલાવ
0: કરતો. નહીં, હમણાં તો સાચવું જ જોઈએ. પણ સોનલબેન ખૂબ હિંમત વાળા છે. કાલે આટલી સ્વસ્થતાથી મારી જોડે વાત કરી, નહીં તો મેં તો અનુભવ કર્યો છે કે આવી પરિસ્થિતિમાં કોઈ વાત જ અને ફરિયાદનું નામો નિશાન ને ભૂપેન્દ્રભાઈ અને ગીતાબેન જોડે ગઈકાલે મુંબઈ એરપોર્ટ પર વાત કરી મેં, તો પણ ફરિયાદ એક નામો નિશાન નહીં. બસ એમની એક જ વાત હતી ને ભગવાન સારું જ કરશે. ચાલો, જય શ્રી કૃષ્ણ, અને ખૂબ જલ્દી સાજા થાવ, પછી આપણે મળીએ છીએ. ગોડ બ્લેસ યુ.
2: That's a 9-minute 52-second conversation between the Prime Minister of India and Captain Smith. We're going to replay that entire conversation for you in a couple of minutes from now. But before that, my colleagues Vishnu Shom and Aditya Rajkol joining me live. Vishnu, a relief for millions of people across the country and of course overseas as well to see the first image, the first video, the first visual of the man everyone has been talking about ever since the incident took place midair.
3: You know, Vedika and Aditya, I was just looking at the videos that you see on your screen right now. You can get an idea of the extent of the injuries that he has. He's got head injuries, his left hand very badly, it's sort of plastered. Obviously, he's been injured over there. What we know is that he was injured in the head, in the upper chest, the torso region, in the stomach as well, the upper abdomen. This is what our sources are indicating to us. So, you can see his hand over there. You know, I mean, it's heavily bandaged. So this is a man who was brutally stabbed. Let's be very clear about this. He was stabbed most likely with an axe in the cockpit of the aircraft. It's wonderful to see him, you know, in this demeanor, in this mood, speaking to the Prime Minister today, and basically explaining that. For me, the most poignant part of this was when he said that he was on the ground in

0: in the cockpit, and he told himself while reciting the Hanuman Chalisa that, you know, I just need to do one more thing, because otherwise all of these people are going to perish. So he managed to somehow or the other open the door. He was on the ground. He managed to open the door. Had he not done this, this conversation that we are having would have been very different.
1: Absolutely. Very, very different, Vishnu. Aditya, it all sums down to this, doesn't it? It boils down to this. I was fighting for my life. I realized at that time, if I won't show courage, then 170 passengers will lose their lives.
2: Vedika, you know, it's been a very, very powerful, very emotional conversation between Prime Minister Narendra Modi and Captain Smith. The world, especially people in India and Israel, have been praying for him relentlessly for his, you know, good life, fast recovery. Of course, we'll be playing out that video again for our viewers shortly. But this is a very powerful conversation where, you know, Captain Smith says that he reads Hanuman Chalisa and chants Hanuman Chalisa very frequently. And during this entire occurrence, he was chanting Hanuman Chalisa. There are very grievous injuries that he has had. And he narrates the entire ordeal to the Prime Minister, what he was going through, what was going through his mind, and how Prime Minister also encourages him and says that the country is proud of him, and of course narrates how he was in touch with his parents and his wife, and they have given the right kind of education, the right kind of upbringing to him, that the value system of India, the value system of our country, of our nation, is very much ingrained. The Prime Minister also tells him that the country can't wait to welcome him with open arms. The entire world is talking about him. The Prime Minister also mentioned how prayers are being held all across the country, all across the world, for his speedy recovery. So very important, very powerful, very simple conversation in many ways. But Prime Minister and Captain Smith both come from Gujarat. That is the common connection in many ways. Briefly, just for a few seconds, they did speak in Gujarati and parted with Jai Shri Krishna. So that is the kind of personal chemistry that Prime Minister had with Captain Smith. Of course, he would be in agony, in pain. Still, the road to recovery is very long, but Prime Minister taking the effort to have this almost 10 minutes long conversation with him this morning. He is currently at the Abu Dhabi military hospital. Right. He's out of danger. He's stable. But this conversation gives a glimpse to the people and a relief, a sigh of relief for the entire global community that the braveheart Indian pilot is alive, is safe, and is on a road to recovery.
1: For a moment, we should also talk about, and we will after we replay this entire interaction again, Vishnu and Aditya, the trauma that the man on our screen has also gone through. You can see the physical injuries, but the trauma also is going to be something he will have to battle with for a long time to come. But look at the resilience of the man on our screen. He says, I'm going to bounce back. I'll make sure I recover completely. Now, Prime Minister Modi, like we said, spoke to Captain Smith for about 10 minutes. Listen in once again to that entire conversation.
3: Smith, namaste.
4: Namaste, sir.
3: कैसे हो अभी? तबीयत कैसी है?
4: सर सब ठीक है सर, सब ठीक है.
3: देखिए, पूरा देश आपके लिए प्रार्थना कर रहा है. महामृत्युंजय का जाप सब दूर चल रहे हैं.
4: Yes, sir.
3: आपकी हिम्मत ने, आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने, यानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई, और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं हैं, जान बचाने वाले लोग हैं. और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय भी आपने अपनी जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की. और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया, और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता. कल मुझे भूपेंद्र भाई से बात करने का मौका मिला, गीता बहन से बात की, सोनल बहन से बात की, जावा और बॉबी से तो नहीं कर पाया, लेकिन मैंने गीता बहन को कहा था कि आपका नाम गीता है लेकिन आपने कृष्ण की गीता को पूरी तरह पचा दिया और आपने स्मित को उस साक्षात गीता के संस्कारों से उसका जीवन बनाया। स्मित, अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा।
4: सर, मेरे लिए मैं सर से भी बोल रहा था, आपने सबसे बड़े एक्टर से और मेरे को ऐसे कॉल करके मेरी ऑफिस में कर रहे, मुझे बहुत बहुत बहुत गर्व फील हो रहा है। मैं उस मोमेंट में सर, मैं अपनी लाइफ के लिए लड़ रहा था, बट एक ऐसा मोमेंट था जब मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं गिर चुका था, मेरे को इतने गांव लग चुके थे कि मैं गिर चुका था नीचे, एंड उस टाइम पे मैं बोला अगर मैं नहीं उठूंगा तो मैं एग्जाम में 17 साल से जा जुड़ा था, मैं पिछले 11 साल से कैप्टन हूँ और मुझे पता चलता है यहाँ बंद करके भी कि जहाज में क्या हो रहा है। जब मैं नीचे गिरा हुआ था तब मुझे ऐसा सो रहा था कि एयरक्राफ्ट नीचे जा रहा है और मुझे बिल्कुल पता था कि ये एक लास्ट पुश होगा स्मिथ कर दे, दरवाजा बस वही है, और तभी भी मैं मार खा ही रहा था, बस वो खोल दिया सर, बाकी सब आ गए और बाकी सब की भी उतनी उसमें रोल था, बट जान के मैं सर को बोल रहा था कि मैं अपनी जान के हिसाब से कर रहा था, बट एट द सेम टाइम मुझे इतना भी पता था कि मैं उन सबको नहीं मत दे सकता। बस उसके बाद मेरे को लोगों ने यहाँ पे भी सऊदी में भी या मुक्त बन के इससे अच्छी केयर और इससे अच्छा मेडिकल अटेंशन नहीं मिल सकता था, एंड मैं सर आई एम जस्ट मैं एक सिर्फ पॉजिटिविटी मैं जब भी मेरे को दर्द होता है मुझे एक ही चीज आती है, मैं सिर्फ हनुमान चालीसा बोलता हूँ। उस टाइम पे भी मैं सिर्फ हनुमान चालीसा ही बोल रहा था, अब मुझे पता है कि वो भगवान ही मेरे को बचाए। बस आपका एक कॉल आ गया, मैं जो बहुत बहुत गर्व होता है, आप अभी मेरे को हो रहा है, मेरे पे गर्व अब तक नहीं हो रहा था, अब हो गया सर। सॉरी क्या आपके सामने लौट रहा हूँ सर।
3: स्मित, अगर मेरे सामने आप भावुक नहीं होंगे तो कहाँ होंगे। आपने इतना बड़ा काम किया है भाई कि हर देशवासी आज दुनिया के लोग भी आपको देखने आपसे बात करने के लिए बहुत ही आतुर है, और ये बात आपने जो बताई है हनुमान चालीसा की, इसके लिए तो मैं गीता बहन को प्रणाम करूंगा कि आपको ऐसे संस्कार दिए, भूपेंद्र भाई को प्रणाम करूंगा कोना नहीं। और मैं आपको बताऊं उसमें कम मेरी जब सोलन बहन से बात हुई तो मैं सरप्राइज था, इतनी स्वस्थता से वो बात कर रही थी, इतनी हिम्मत से बात कर रही थी, सचमुच मैंने कल्पना नहीं की थी कि सोनल बहन ऐसी परिस्थिति में इतनी स्वस्थता से बात कर सकती है। तो मैं समझता हूं कि आपने एक परिवार के नाते आपने सचमुच में पूरे देश का नाम रोशन किया है।
4: सर, मैं रोज सुबह जब पूजा करता हूँ, मेरा 2 साल का बेटा मेरी गोद में बैठ के मेरे साथ हनुमान चालीसा मैं उसको सुनाता हूँ कि जो मुझे बोला गया है, क्योंकि आज हम लोग देश से दूर है बट हमारी संस्कृति से दूर नहीं होनी चाहिए।
3: सही बात है,
4: और अभी तो यहाँ पे तो वो भी नहीं लगता कि हम देश से दूर है, ये यहाँ पे लोग बहुत बहुत बहुत प्यार से और बहुत ध्यान से हमें रखते हैं।
3: आपको पता नहीं होगा लोग सावरकुंडला में भी वढ़वाण में भी सब दो एक ऐसे भावुक वातावरण बना दिया है, और पूरे हिंदुस्तान में तो है ही नहीं है। कल सभी मंदिरों में पूजा प्रार्थना आरती हुई, सभी तीर्थ क्षेत्रों में आरती हुई, और सब आपके दीर्घायु के लिए और उत्तम स्वास्थ्य के लिए सब प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए आप तो जल्दी स्वस्थ होने ही वाले हैं। भारत आपका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक है। अब शरीर में कोई तकलीफ जो भी मैं समझ सकता हूं आप

0: वीर पुरुष हैं तो आपने घावों को तो झेलना शायद आपके लिए बहुत आसान कर लिया है आपने।
1: नहीं सर, मैं उस घाव को घाव की तरह नहीं सोच रहा हूँ, बिकॉज वो मेरे को और भी फिर उतना मुश्किल होगा मेरा रिकवरी। मैं उसको एक जर्नी की तरह सोच रहा हूँ जो स्लोली स्लोली होने वाला है, एंड वो टाइम लेके होगा, बट मैं बहुत बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि ये रिकवरी होगा और मैं एकदम ही स्वस्थ हो जाऊंगा।
0: मैं सऊदी सरकार का भी और यूएई सरकार का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ तो उन्होंने आपकी बहुत केयर की, मैं उनका भी आभारी हूँ। स्मित, आपको जब भी जरूरत लगे मैं एक फोन कॉल अवे हूँ, लेकिन आपने सचमुच में, वरना ये कल मैं देख रहा था लोगों ने सोशल मीडिया में जो अपनी भावनाएं व्यक्त की और लोगों ने कहा अगर ऐसा न होता तो पता नहीं हिंदुस्तान पर क्या क्या बीतती, भारत के सभी पायलटों पर क्या बीतती, भारत के सभी पायलटों को किस प्रकार से देखा जाता। आपने इन सबको बचा लिया है, यानी बहुत बड़ा काम आपने किया है। जब मिलूंगा तब अंदर की बातें तो बाद में सुनूंगा मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मोबाइल पर ऐसी बातें करूं मैं आपसे। और आप भी पूरी तरह स्वस्थ हो जाइए और आप बिल्कुल, पूरा देश आपके साथ है। मैं ज्यादा आपको परेशान करना नहीं चाहता हूं, मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं। आज गांधी जयंती है, अहिंसा क्या होती है वो आपने जी करके दिखाया है। चलिए, जय श्री कृष्ण। मेरा थोड़ी गुजराती में बात करी ली बॉबी अने जेवा गुजराती बोले छे कि नहीं बोलता? गुजराती बोले छे। તો બાળકો મળવાનું થઈ ગયું? બાળકોને ડોક્ટરો એલાવ કર્યા મળવા માટે?
1: મારી મોટી દીકરી આવી હતી પણ એ આ ઉપર તો જોઈ નહીં ડરી ગઈ.
0: અચ્છા અચ્છા.
1: એ થોડી એ મારાથી બહુ ક્લોઝ છે. હા હા. અને મારા નાના સન 2 વર્ષ પછી એને નથી એલાવ
0: કર્યું. નહીં, હમણાં તો સાચવું જોઈએ. પણ સોનલબેન ખૂબ હિંમત વાળા છે. યસ. હા.
1: યસ.
0: કાલે આટલી સ્વસ્થતાથી મારી જોડે વાત કરી, નહીં તો મેં તો અનુભવ કર્યો છે કે આવી પરિસ્થિતિમાં કોઈ વાત જ ના, ફરિયાદનું નામો નિશાન ને ભૂપેન્દ્રભાઈ અને ગીતાબેન જોડે ગઈકાલે મુંબઈ એરપોર્ટ પર વાત કરી મેં, તો પણ ફરિયાદ એક નામો નિશાન નહીં. બસ એમની એક જ વાત હતી ને ભગવાન સારું જ કરશે. ચાલો, જય શ્રી કૃષ્ણ, અને ખૂબ જલ્દી સાજા થાવ, પછી આપણે મળીએ છીએ. ગોડ બ્લેસ યુ.
2: प्रार्थना
0: कर रहा है, महामृत्युंजय का जाप सब दूर चल रहे हैं।
1: yes, sir.
0: आपकी हिम्मत ने, आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने, यानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई, और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं हैं, जान बचाने वाले लोग हैं। और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय भी आपने अपनी जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया, और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूं। कल मुझे भूपेंद्र भाई से बात करने का मौका मिला, गीता बहन से बात की, सोनल बहन से बात की, जावा और बॉबी से तो नहीं कर पाया, लेकिन मैंने गीता बहन को कहा था कि आपका नाम गीता है लेकिन आपने कृष्ण की गीता को पूरी तरह पचा दिया और आपने स्मिथ को उस साक्षात गीता के संस्कारों से उसका जीवन बनाया। स्मिथ, अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा।
1: सर, मेरे लिए मैं सर से भी बोलता था, आप मेरे सबसे बड़े एक्टर हैं सर, और आप मेरे को ऐसे कॉल करके मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं। मुझे बहुत बहुत बहुत गर्व फील हो रहा है। मैं उस मोमेंट में सर, मैं अपनी लाइफ के लिए लड़ रहा था, बट एक ऐसा मोमेंट था जब मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं गिर चुका था, मेरे को इतने गांव लग चुके थे कि मैं गिर चुका था नीचे, एंड उस टाइम पे मैं बोला अगर मैं नहीं उठूंगा तो मैं एग्जाम में 17 साल से जा जुड़ा था, मैं पिछले 11 साल से कैप्टन हूँ, और मुझे पता चलता है आंख बंद करके भी कि जहाज में क्या हो रहा है। जब मैं नीचे गिरा हुआ था तब मुझे एहसास हो रहा था कि एयरक्राफ्ट नीचे जा रहा है, और मुझे बिल्कुल पता था कि ये एक लास्ट पुश होगा स्मिथ कर दे, दरवाजा बस वही है, और तभी भी मैं मार खा ही रहा था, बस वो खोल दिया सर, बाकी सब आ गए, और बाकी सब की भी उतनी उसमें रोल था, बट जान के मैं सर को बोल रहा था कि मैं अपनी जान के हिसाब से कर रहा था, बट एट द सेम टाइम मुझे इतना भी पता था कि मैं उन सबको नहीं मत दे सकता। बस उसके बाद मेरे को लोगों ने यहाँ पे भी सऊदी में भी यहाँ पे तो बन के इससे अच्छी केयर और इससे अच्छा मेडिकल अटेंशन नहीं मिल सकता था। एंड मैं सर, आई एम जस्ट, मैं एक सिर्फ पॉजिटिविटी में, मैं जब भी मेरे को दर्द होता है मुझे एक ही चीज आती है, मैं सिर्फ हनुमान चालीसा बोलता हूँ। उस टाइम पे भी मैं सिर्फ हनुमान चालीसा ही बोल रहा था, अब मुझे पता है कि वो भगवान ने मेरे को बचाए। बस आपका एक कॉल आ गया, मैं जो बहुत बहुत गर्व होता है, और अब भी मेरे को हो रहा है, मेरे पे गर्व अब तक नहीं हो रहा था, अब हो गया सर। सॉरी कि आपके सामने लौट रहा हूँ सर।
0: स्मिथ, अगर मेरे सामने आप भावुक नहीं होंगे तो कहाँ होंगे?
1: सही है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी आपसे बात होगी, कभी नहीं सोचा।
0: आपने इतना बड़ा काम किया है भाई कि हर देशवासी, आज दुनिया के लोग भी आपको देखने, आपसे बात करने के लिए बहुत ही आतुर है। और ये बात आपने जो बताई है हनुमान चालीसा की, इसके लिए तो मैं गीता बहन को प्रणाम करूंगा कि आपको ऐसे संस्कार दिए, भूपेंद्र भाई को प्रणाम करूंगा, कोना नहीं। और मैं आपको बताऊं, उसमें कम मेरी जब सोलन बहन से बात हुई तो मैं सरप्राइज था, इतनी स्वस्थता से वो बात कर रही थी, इतनी हिम्मत से बात कर रही थी, सचमुच मैंने कल्पना नहीं की थी कि सोनल बहन ऐसी परिस्थिति में इतनी स्वस्थता से बात कर सकती है। तो मैं समझता हूं कि आपने एक परिवार के नाते आपने सचमुच में पूरे देश का नाम रोशन किया है।
1: सर, मैं रोज सुबह जब पूजा करता हूँ, मेरा 2 साल का बेटा मेरी गोद में बैठ के मेरे साथ हनुमान चालीसा मैं उसको सुनाता हूँ कि जो मुझे बोला गया है, क्योंकि आज हम लोग देश से दूर है बट हमारी संस्कृति से दूर नहीं होनी चाहिए।
0: सही बात है।
1: और अभी तो यहाँ पे तो वो भी नहीं लगता कि हम देश से दूर है, ये यहाँ पे लोग बहुत बहुत बहुत प्यार से और बहुत ध्यान से हमें रखते हैं।
0: आपको पता नहीं होगा, लोग सावरकुंडला में भी, वढ़वान में भी, सब दूर एक ऐसे भावुक वातावरण बना दिया है, और पूरे हिंदुस्तान में तो है ही है। कल सभी मंदिरों में पूजा प्रार्थना आरती हुई, सभी तीर्थ क्षेत्रों में आरती हुई, और सब आपके दीर्घायु के लिए और उत्तम स्वास्थ्य के लिए सब प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए आप तो जल्दी स्वस्थ होने ही वाले हैं, भारत आपका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक है। आप शरीर में कोई तकलीफ जो भी मैं समझ सकता हूँ, आप वीर पुरुष हैं तो आपने घावों को तो झेलना शायद आपके लिए बहुत आसान कर लिया है अपने।

0: October, New Delhi.
1: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
2: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal. What's happening? How?
1: The show that sets the prime time agenda.
2: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
1: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, weekdays at 5 p.m. only on NDTV, when it really matters.
3: 5 hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddaramaiah. NDTV stands completely engaged with Karnataka.
4: Higher end, check the audio. Higher end, check the audio.
3: Let's do it. Let's start.
5: Breaking story, we're jumping straight into it.
3: We've got a picture of the letter. What is in your letter? You can never predict what's going to happen in Tamil Nadu politics.
6: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
3: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling.
7: Welcome back. We know so much about Captain Smith, but the moment we were waiting for is this moment where the Prime Minister has spoken to the Braveheart captain and was captured on video. You can see his injuries there in the video, but you must listen into the conversation and hear from the man himself, Captain Smith.
8: Smith, namaste.
9: Namaste, sir.
8: Kaise ho abhi? Tabiyat kaisi hai?
9: Sir, sab theek hai, sir, sab theek hai.
8: देखिए पूरा देश आपके लिए प्रार्थना कर रहा है.
10: महामृत्युंजय का जाप सब दूर चल रहे हैं.
9: yes,
10: आपकी हिम्मत ने, आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने एंड फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने. yes, और इतने लोगों की जान बचाई और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं हैं, जान बचाने वाले लोग हैं. और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय भी आपने अपनी जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की. और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता. कल मुझे भूपेंद्र भाई से बात करने का मौका मिला, गीता बहन से बात की, सोनल बहन से बात की, जावा और बॉबी से तो नहीं कर पाया, लेकिन मैंने गीता बहन को कहा था कि आपका नाम गीता है लेकिन आपने कृष्ण की गीता को पूरी तरह पचा दिया और आपने स्मिथ को उस साक्षात गीता के संस्कारों से उसका जीवन बनाया. स्मिथ, अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा.
9: सर, मेरे लिए मैं सर से भी बोल रहा था, आपने सबसे बड़े एक्टर से और मेरे को इनसे कॉल करके मेरी फ्रेंड्स कर रहे, मुझे बहुत बहुत बहुत गर्व फील हो रहा है. मैं उस मोमेंट में सर, मैं अपनी लाइफ के लिए लड़ रहा था, बट एक ऐसा मोमेंट था जब मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं गिर चुका था, मेरे को इतने गांव लग चुके थे कि मैं गिर चुका था नीचे. एंड उस टाइम पे मैं बोला अगर मैं नहीं उठूंगा तो मैं एग्जाम में 17 साल से ज्यादा जुड़ा रहा, मैं पिछले 11 साल से कैप्टन हूँ और मुझे पता चलता है यहाँ बंद करके भी कि जहाज में क्या हो रहा है. जब मैं नीचे गिरा हुआ था तब मुझे एहसास हो रहा था कि एयरक्राफ्ट नीचे जा रहा है और मुझे बिल्कुल पता था कि ये एक लास्ट पुश होगा स्मिथ कर दे, दरवाजा बस वही है. और तभी भी मैं मार खा ही रहा था, बस वो खोल दिया सर, बाकी सब आ गए और बाकी सबकी भी उतनी उसमें रोल था. बट जान के मैं सर को बोल रहा था कि मैं अपनी जान के

0: सेम टाइम मुझे इतना भी पता था कि मैं उन सबको नहीं मत दे सकता। बस उसके बाद मेरे को लोगों ने यहाँ पे भी सऊदी में भी यहाँ पे तो बन के इससे अच्छी केयर और इससे अच्छा मेडिकल अटेंशन नहीं मिल सकता था। मैं एक सिर्फ पॉजिटिव है कि मैं जब भी मेरे को दर्द होता है मुझे एक ही चीज आती है, मैं सिर्फ हनुमान चालीसा बोलता हूँ। उस टाइम पे भी मैं सिर्फ हनुमान चालीसा ही बोल रहा था और मुझे पता है कि वो भगवान ने मेरे को बचाए। बस आपका एक कॉल आ गया मेरे को बहुत बहुत गर्व होता है और अब भी मेरे को हो रहा है मेरे पे गर्व, अब तक नहीं हो रहा था। अब हो गया सर, सॉरी मैं आपके सामने रो रहा हूँ सर।
1: सुमित, अगर मेरे सामने आप भावुक नहीं होंगे तो कहां होंगे?
0: सही है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी आपसे बात होगी, कभी नहीं सोचा।
1: आपने इतना बड़ा काम किया है भाई कि हर देशवासी, आज दुनिया के लोग भी आपको देखने, आपसे बात करने के लिए बहुत ही आतुर है। और ये बात आपने जो बताई है हनुमान चालीसा की, इसके लिए तो मैं गीता बहन को प्रणाम करूंगा कि आपको ऐसे संस्कार दिए। भूपेंद्र भाई को प्रणाम करूंगा कोना न। और मैं आपको बताऊं, उसमें कम मेरी जब सोलन बहन से बात हुई तो मैं सरप्राइज था, इतनी स्वस्थता से वो बात कर रही थी, इतनी हिम्मत से बात कर रही थी। सचमुच मैंने कल्पना नहीं की थी कि सोनल बहन ऐसी परिस्थिति में इतनी स्वस्थता से बात कर सकती है। तो मैं समझता हूं कि आपने एक परिवार के नाते आपने सचमुच में पूरे देश का नाम रोशन किया है।
0: सर मैं रोज सुबह जब पूजा करता हूँ, मेरा 2 साल का बेटा मेरी गोद में बैठ के मेरे साथ हनुमान चालीसा मैं उसको सुनाता हूँ कि जो मुझे बोला गया है, क्योंकि आज हम लोग देश से दूर है बट हमारी संस्कृति से दूर नहीं होना चाहिए।
1: सही बात है।
0: और अभी तो यहाँ पे तो वो भी नहीं लगता कि हम देश से दूर है। ये यहाँ पे लोग बहुत बहुत बहुत प्यार से और बहुत ध्यान से हमें रखते हैं।
1: आपको पता नहीं होगा, लोग सावरकुंडला में भी, वढ़वान में भी, सब दूर एक ऐसे भावुक वातावरण बना दिया है और पूरे हिंदुस्तान में तो है ही है। कल सभी मंदिरों में पूजा प्रार्थना आरती हुई, सभी तीर्थ क्षेत्रों में आरती हुई और सब आपके दीर्घायु के लिए और उत्तम स्वास्थ्य के लिए सब प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए आप तो जल्दी स्वस्थ होने ही वाले हैं। भारत आपका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक है। आप शरीर में कोई तकलीफ जो भी मैं समझ सकता हूँ, आप वीर पुरुष हैं तो आपने घावों को तो झेलना शायद आपके लिए बहुत आसान कर लिया है अपने।
0: नहीं सर, मैं उस गांव को गांव की तरह नहीं सोच रहा हूँ, बिकॉज वो मेरे को और भी फिर उतना मुश्किल होगा मेरा रिकवरी। मैं उसको एक जर्नी की तरह सोच रहा हूँ जो स्लोली स्लोली होने वाला है एंड वो टाइम लेके होगा, बट मैं बहुत बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि ये रिकवरी होगा और मैं एकदम ही स्वस्थ हो जाऊंगा।
1: मैं सऊदी सरकार का भी और यही सरकार का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आपकी बहुत केयर की, मैं उनका भी आभारी हूं। सुमित, आपको जब भी जरूरत लगे मैं एक फोन कॉल अवे हूं, लेकिन आपने सचमुच में, वरना ये कल मैं देख रहा था लोगों ने सोशल मीडिया में जो अपनी भावनाएं व्यक्त की और लोगों ने कहा अगर ऐसा न होता तो पता नहीं हिंदुस्तान पर क्या क्या बीतती, भारत के सभी पायलटों पर क्या बीतती, भारत के सभी पायलटों को किस प्रकार से देखा जाता। आपने इन सबको बचा लिया है, यानी बहुत बड़ा काम आपने किया है। जब मिलूंगा तब अंदर की बातें तो बाद में सुनूंगा मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मोबाइल पर ऐसी बातें करूं मैं आपसे। और आप भी पूरी तरह स्वस्थ हो जाइए और अब बिल्कुल पूरा देश आपके साथ है। मैं ज्यादा आपको परेशान करना नहीं चाहता हूं। मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं। आज गांधी जयंती है, अहिंसा क्या होती है वो आपने जी करके दिखाया। चलिए जय श्री कृष्ण, मेरा थोड़ी गुजराती में बात कर ली। बॉबी अने जेवा गुजराती बोले छे कि नहीं बोलता? गुजराती बोले छे। તો બાળકો મળવાનું થઈ ગયું? બાળકોને ડોક્ટર એલાવ કર્યા મળવા માટે?
0: મારી મોટી દીકરી આવી હતી પણ એ આવું બધું જોઈ નહીં ડરી ગઈ.
1: અચ્છા અચ્છા.
0: એ થોડી એ મારાથી બહુ ક્લોઝ છે.
1: હા
0: અને મારા નાના સન 2 વર્ષ પછી એને નથી એલાવ
1: કર્યું. નહીં હમણાં તો સાચવું જ જોઈએ. પણ સોનલબેન ખૂબ હિંમત વાળા છે. કાલે આટલી સ્વસ્થતાથી મારી જોડે વાત કરી, નહીં તો મેં તો અનુભવ કર્યો છે કે આવી પરિસ્થિતિમાં કોઈ વાત જ. અને ફરિયાદનું નામો નિશાન ને ભૂપેન્દ્રભાઈ અને ગીતાબેન જોડે ગઈકાલે મુંબઈ એરપોર્ટ પર વાત કરી મેં, તો પણ ફરિયાદ એક નામો નિશાન નહીં. બસ એમની એક જ વાત હતી ને ભગવાન સારું જ કરશે. ચાલો જય શ્રી કૃષ્ણ, અને ખૂબ જલ્દી સાજા થાવ પછી આપણે મળીએ
0: છીએ.
1: ગોડ બ્લેસ યુ. જય જય હિન્દ.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: own life, but cared for the lives of 170 people on board. Now, he even said that he was reciting Hanuman Chalisa during the incident, which gave him courage to fight. Now, Prime Minister Narendra Modi praised him for his extraordinary courage and said the whole nation is proud of him.
1: Meet Namaste.
2: Namaste, sir.
1: कैसे हो अभी तबीयत कैसी है
2: सर सब ठीक है सर सब ठीक है
1: देखिए पूरा देश आपके लिए प्रार्थना कर रहा है महामृत्युंजय का जाप सब दूर चल रहे हैं
2: yes,
1: आपकी हिम्मत ने आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने यानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं हैं जान बचाने वाले लोग हैं और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की और सबसे बड़ी बात 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता कल मुझे भूपेंद्र भाई से बात करने का मौका मिला गीता बहन से बात की सोनल बहन से बात की जावा और बॉबी से तो नहीं कर पाया लेकिन मैंने गीता बहन को कहा था कि आपका नाम गीता है लेकिन आपने कृष्ण की गीता को पूरी तरह पचा दिया और आपने स्मित को उस साक्षात गीता के संस्कारों से उसका जीवन बनाया स्मित अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा
2: उस मोमेंट में सर मैं अपनी लाइफ के लिए लड़ रहा था बट एक ऐसा मोमेंट था जब मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मैं गिर चुका था मेरे को इतने गांव लग चुके थे कि मैं गिर चुका था नीचे एंड उस टाइम पे मैं बोला अगर मैं नहीं उठूंगा तो मैं एंजर में 17 साल से ज्यादा जुड़ा था मैं पिछले 11 साल से कैप्टन हूँ और मुझे पता चलता है आंख बंद करके भी कि जहाज में क्या हो रहा है जब मैं नीचे गिरा हुआ था तब मुझे ऐसा सो रहा था कि एयरक्राफ्ट नीचे जा रहा है और मुझे बिल्कुल पता था कि ये एक लास्ट पुश अगर स्मिथ कर दे दरवाजा बस वही है और तभी भी मैं मार खा ही रहा था बस वो खोल दिया सर बाकी सब आ गए और बाकी सब की भी उतनी उसमें रोल था बट जान के मैं सबको बोल रहा था कि मैं अपनी जान के हिसाब से कर रहा था एट द सेम टाइम मुझे इतना भी पता था कि मैं उन सबको नहीं मत दे सकता बस उसके बाद मेरे को लोगों ने यहाँ पे भी सऊदी में भी या तो बन के इससे अच्छी केयर और इससे अच्छा मेडिकल अटेंशन नहीं मिल सकता था एंड मैं सर आई एम जस्ट मैं एक सिर्फ पॉजिटिविटी मैं जब भी मेरे को डर होता है
1: अगर मेरे सामने आप भावुक नहीं होंगे तो कहां होंगे

0: आपने इतना बड़ा काम किया है भाई कि हर देशवासी, आज दुनिया के लोग भी आपको देखने, आपसे बात करने के लिए बहुत ही आतुर है। और ये बात आपने जो बताई है हनुमान चालीसा की, इसके लिए तो मैं गीता बहन को प्रणाम करूंगा कि आपको ऐसे संस्कार दिए। भूपेंद्र भाई को प्रणाम करूंगा कोना नहीं। और मैं आपको बताऊं, उसमें कम मेरी जब सोलन बहन से बात हुई तो मैं सरप्राइज था, इतनी स्वस्थता से वो बात कर रही थी, इतनी हिम्मत से बात कर रही थी। सचमुच मैंने कल्पना नहीं की थी कि सोनल बहन ऐसी परिस्थिति में इतनी स्वस्थता से बात कर सकती है। तो मैं समझता हूं कि आपने एक परिवार के नाते आपने सचमुच में पूरे देश का नाम रोशन किया है।
1: सर, मैं रोज सुबह जब पूजा करता हूँ, मेरा 2 साल का बेटा मेरी गोद में बैठ के मेरे साथ हनुमान चालीसा मैं उसको सुनाता हूँ कि जो मुझे बोला गया है। क्योंकि आज हम लोग देश से दूर है, बट हमारी संस्कृति से दूर नहीं होनी चाहिए।
0: सही बात है।
1: और अभी तो यहाँ पे तो वो भी नहीं लगता कि हम देश से दूर हैं। ये यहाँ पे लोग बहुत बहुत बहुत प्यार से और बहुत ध्यान से हमें रखते हैं।
0: आपको पता नहीं होगा, लोग सावरकुंडला में भी, वढ़वान में भी, सब दूर एक ऐसे भावुक वातावरण बना दिया है। और पूरे हिंदुस्तान में तो है ही है। कल सभी मंदिरों में पूजा प्रार्थना आरती हुई, सभी तीर्थ क्षेत्रों में आरती हुई, और सब आपके दीर्घायु के लिए और उत्तम स्वास्थ्य के लिए सब प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए आप तो जल्दी स्वस्थ होने ही वाले हैं। भारत आपका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक है। आप शरीर में कोई तकलीफ जो भी मैं समझ सकता हूँ, आप वीर पुरुष हैं तो आपने घावों को तो झेलना शायद आपके लिए बहुत आसान कर लिया है अपने।
1: नहीं सर, मैं उस गांव को गांव की तरह नहीं सोच रहा हूँ, बिकॉज वो मेरे को और भी फिर उतना मुश्किल होगा मेरा रिकवरी। मैं उसको एक जर्नी की तरह सोच रहा हूँ जो स्लोली स्लोली होने वाला है, एंड वो टाइम लेके होगा, बट मैं बहुत बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि ये रिकवरी होगा और मैं एकदम ही स्वस्थ हो जाऊंगा।
0: मैं सऊदी सरकार का भी और यूएई सरकार का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आपकी बहुत केयर की। मैं उनका भी आभारी हूं। स्मित, आपको जब भी जरूरत लगे मैं एक फोन कॉल अवे हूं। लेकिन आपने सचमुच में, वरना ये कल मैं देख रहा था लोगों ने सोशल मीडिया में जो अपनी भावनाएं व्यक्त की और लोगों ने कहा अगर ऐसा न होता तो पता नहीं हिंदुस्तान पर क्या क्या बीतती, भारत के सभी पायलटों पर क्या बीतती, भारत के सभी पायलटों को किस प्रकार से देखा जाता। आपने इन सबको बचा लिया है, यानी बहुत बड़ा काम आपने किया है। जब मिलूंगा तब अंदर की बातें तो बाद में सुनूंगा मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मोबाइल पर ऐसी बातें करूं मैं आपसे। और आप भी पूरी तरह स्वस्थ हो जाइए और अब बिल्कुल पूरा देश आपके साथ है। मैं ज्यादा आपको परेशान करना नहीं चाहता हूं। मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं। आज गांधी जयंती है, अहिंसा क्या होती है वो आपने जी करके दिखाया है। चलिए, जय श्री कृष्ण। मेरा थोड़ा गुजराती में बात कर ली है। बॉबी अने जेवा गुजराती बोले छे नथी बोलता?
1: નહીં,
0: હમણાં તો સાચવું જ જોઈએ, પણ સોનલબેન ખૂબ હિંમત વાળા છે ભૂપેન્દ્રભાઈ અને ગીતાબેન જોડે ગઈકાલે મુંબઈ એરપોર્ટ પર વાત કરી મેં, તો પણ ફરિયાદ એક નામો નિશાન નહીં, બસ એમની એક જ વાત હતી ને ભગવાન સારું જ કરશે।

0: I was fighting for my life. That's what Fly Dubai Captain Smith Matar told Prime Minister Modi today as he recalled the terrifying moments after his co-pilot attacked him, saying he could feel the aircraft going down and pushed himself to open the cockpit door. We'll hear more about that. First, let's go across to NDTV's Shivaroor for more.
1: And joining me live now from Abu Dhabi is Bhupendra Bhai Matar. He is the father of hero pilot Smith Matar, whose son has made the entire country proud and is now a global icon of courage. Bhupendra Bhai, NDTV par aapka swagat hai. Aapke bete par pura desh ka garv hai. Kya aap bata sakte hain, Bhupendra Bhai, Smith abhi kaisa hai? उनकी तबीयत कैसी है? उनकी अभी जो वीडियो सामने आया है प्राइम मिनिस्टर के साथ बातचीत करते हुए साफ नज़र दिखाई देता है कि वो ठीक है. आप एक अपडेट दीजिए कि वो कैसे हैं, आपका बेटा कैसा है अभी भूपेंद्र भाई?
2: जैसा आपने देखा वीडियो में, वही चीज मैंने भी देखी आज, क्योंकि मैं आज उनको कल में मिला था 10 मिनट के लिए. तभी वो थोड़ा पूरे कंट्रोल में नहीं था. थोड़ी सी बात करके फिर डॉक्टरों ने भी बोला कि आज अपलिफ्ट हुआ है, तो अपन शांति से बात करें तो बेटर है. तो आज हम लोग वहां पहुंच रहे हैं थोड़े टाइम में, हम ऑन द वे ही है. और जितना आपने देखा नरेंद्र मोदी के साथ बात करते हुए, मेरे को भी बहुत खुशी हुई कि आज वो अच्छे फेज में है और अच्छी बात कर रहा है, तो भगवान का बहुत बड़ा शुक्र है.
1: स्मिथ ने आपको क्या बताया जब आप मिले उनसे, भूपेंद्र भाई, आपको क्या बताया कल?
2: एक्चुअली कल हम लोग ने एक बात रखी थी कि इस इंसिडेंट के बारे में आज कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि वो अभी भी उतने ही वो फेज में था. तो मैंने सोचा कि आज भी अपन एक खाली भगवान की बहुत मेहरबानी समझ के आज हम लोग गले मिलते हैं, कोई उसकी बात नहीं करेंगे. आज बहुत सब लोग खुश होकर बात कर 10 मिनट बैठेंगे हम लोग तेरे साथ. तो कल की हमारी कोई भी बात में हमने उसको कोई वो चीज को याद नहीं दिलाया, मतलब वो बात ही मत छेड़ना अभी, अपन शांति से कल बात करेंगे.
1: भूपेंद्र भाई, स्मिथ के जख्म कितना सीरियस हैं? इन तस्वीरों में दिखाई देता है कि वो हॉस्पिटल में है, वो ट्रीटमेंट जारी है. डॉक्टर्स का क्या कहना है भूपेंद्र भाई?
2: डॉक्टर्स ने बोला है कि समय लगेगा ये जख्म को क्लियर करने में, और सर पे भी लगा है, दोनों हाथ से भी लगा है, और सर पे कुछ ऑपरेट भी हुआ है, स्टिचेस भी आए हैं काफी. तो अभी एकदम डिटेल में मैं आज नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जख्म है और शायद अच्छा टाइम जाएगा इसको क्लियर होने में.
1: भूपेंद्र भाई, आप स्मिथ के पिताजी हैं, आप और स्मिथ के माँ, क्या महसूस हुआ जब आपने सुना कि ये हादसा हुआ था आपके बेटे के साथ? आपका क्या रिएक्शन था, क्या महसूस किया आपने?
2: जैसे जैसे हर माँ बाप का हो गए, सबसे पहले एक ही विचार खराब आ जाता है, और तुरंत हमने हमारे भगवान के पास दिया किया और बोला भगवान कुछ भी हो जावे, खराब भी उठ नहीं आना चाहिए, आप बचा लेंगे.
1: लेकिन आप में विश्वास था कि आपका बेटा स्मिथ ऐसे करेगा, ऐसे ही बहादुरी दिखाएगा इस हादसे में? आप में विश्वास था?
2: देखो ये इस चीज की कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, जैसे आप भी वो चीज समझते हो, लेकिन एक ऊपर वाले की मेहरबानी रहेगी, कोई शक्ति उसके साथ आ गई और उसने ये जो प्रॉब्लम आया उसको सॉल्व किया, अपना पूरा सबके लिए गर्व की बात हो गई. और मैं भी बोलूंगा कि इसमें ज्यादातर भगवान की मेहरबानी है, हम लोग ज्यादा धर्मी थे पूरे घर वाले.
1: जी, और भूपेंद्र भाई, आपकी बेटे की बहादुरी भी थी, आपने डिटेल में देखा है कि उन्होंने क्या किया कॉकपिट में. हमला के बाद उन्होंने जख्मी होते हुए कॉकपिट के दरवाज़ा को खुला रखा. डिटेल में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है आपको पता है कि क्या हुआ, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये एक प्रेजेंस ऑफ माइंड थी, जैसे आपने बताया कि इसका कोई ट्रेनिंग नहीं होता है सर.
2: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसका एक शब्द बोल दूं मैं, कि जैसे वो गिर गया जैसे नीचे कॉकपिट में, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि अभी जो करना है वो अभी कर ले, अदरवाइज कुछ नहीं होएगा. तो फिर उसके मन में एक विचार आया कि अभी फाइट करना ही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है दूसरा, और उसने एक्शन लिया और सक्सेस हो गया. और उसके मन में एक बात पक्की थी कि मेरे हिसाब से पीछे के जितने भी पैसेंजर थे वो किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए, वो उसके मन में पूरा भरा हुआ था. तो उस चीज ने ऊपर वाले ने सपोर्ट किया और ये पूरा सक्सेस हो गई बात।
1: भूपेंद्र भाई, क्या स्मिथ हमेशा ऐसे ही थे, सेल्फलेस, औरों के लिए ऐसे बिहेव करना उनका ट्रेनिंग था एक पायलट के हिसाब से, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग वो कभी भी ऐसे ही थे?
2: एक्चुअली बोलूं तो वो आज समझो 17 साल से फ्लाइंग कर रहा है और इस 17 साल के अंदर उसने सैकड़ों पायलटों को किस तरीके से इंटरव्यू देना है, किस तरीके से अपने को ये चीज समझना चाहिए, वो उसके पहले से नेचर में है। वो फ्लाइंग के बारे में एकदम से उसका मतलब, वो वाइफ है उसकी ऐसा समझ लो
1: जी,
2: उसको फ्लाइंग मतलब और कुछ समझता ही नहीं, बोलता है मेरे को ज्यादा अच्छे से अच्छा फ्लाइंग करना है।
1: और जब वो ठीक हो जाएंगे भूपेंद्र भाई, क्या वो फ्लाइंग कंटिन्यू करेंगे?
2: वो ना बोलेगा ही नहीं कभी भी कि मैं नहीं करूंगा ऐसा।
1: और
2: मैं भी चाहूंगा कि वो करे, क्यों नहीं करेगा, करेगा।
1: क्या आप उनके पिताजी हैं, आप कुछ एडवाइस दे रहे हैं उनको, आपने कुछ बताया उनको?
2: अभी आज से शुरू होएगा हमारी डिस्कशन जो भी हो।
1: ये एक टेरर इंसिडेंट था भूपेंद्र जी, सारा दुनिया इसके बारे में बात कर रहा है, सारा दुनिया आपके बेटे का प्रशंसा कर रहा है अभी। क्या आपको लगता है कि एक पूरा एक ग्लोबल स्पॉटलाइट बन गया है आपके परिवार को लेकर? अब
2: जरूर ऐसा इंसिडेंट हुआ है, हम लोग तो एक आप बोलेंगे तो साधारण से हम लोग सिंपल जीवन जीने वाले आदमी हैं और सब लोग पहले बोलते थे कि प्राउड मोमेंट है। हमारे घर में मेरे और मेरी वाइफ को और उनकी वाइफ को एक ही विचार आता था कि प्राउड मोमेंट भले है लेकिन हमको हमारे लड़के को देखना है अच्छी तरह से पहले।
1: जी बिल्कुल। और जैसे प्रधानमंत्री ने कन्वे किया भूपेंद्र भाई, आज आपने देखा वो वीडियो जिसमें उन्होंने बोला है कि इंडिया का प्रेयर्स जो है, प्रार्थना जो है, जो कन्वे किया स्मिथ को, वो बिल्कुल सही है। पूरा नेशन, एंटायर इंडिया आपके बेटे के लिए प्रार्थना कर रहा है, प्रे कर रहा है अभी।
2: सही है, वो मैंने भी सुना और मैंने देखा कुछ वीडियो और पूरे देशवासी को मैं पूरा आभार मानूंगा सबका के इस तरीके से सबने इतना अच्छा मेरे बेटे के लिए प्रार्थना की और ये सब लोग का आशीर्वाद है कि वो जल्दी रिकवर हो जाएगा और मेरे को विश्वास है कि वो अगेन वापस आएगा और अच्छी तरह से फ्लाइंग करेगा।
1: भूपेंद्र भाई, स्मिथ की माँ की रिएक्शन क्या थी जब ये हुआ था, उनकी रिएक्शन क्या थी? सर
2: बहुत सेंसिटिव है, हम दोनों सेंसिटिव है बहुत ही और हम लोग ने एक ही श्रद्धा रखा था कि भगवान जो भी करेगा अच्छा ही करेगा, अपने साथ बुरा नहीं होगा।
1: और उनकी उनकी पत्नी और उनके छोटा बच्चा भी है, उनका क्या रिएक्शन था? ये एक बहुत ही सीरियस इंसिडेंट
2: था। हम लोग को बहुत ही डर लग रहा था क्योंकि वो दोनों बच्चे और स्मिथ की वाइफ दुबई में थे, हम लोग बॉम्बे में थे और हम लोग की कंटिन्यूस फोन में बात चल रही थी कि मैं बोला बस भगवान का नाम लेते रहते हम लोग भी निकल जाते हैं बॉम्बे से जल्दी और डर ना मत, मैं मतलब हम लोग पहुंच ही रहे बस कैसे भी करके
1: जी,
2: हम लोग ने अपने आप को संभाला है सब लोगों ने।
1: भूपेंद्र जी, आपने देखा होगा कि इजराइल के प्रधानमंत्री, इंडिया के प्रधानमंत्री और बहुत सारे ग्लोबल लीडर्स ने आपके बेटे को प्रेज़ किया है। बातचीत चल रही है कि शायद इजराइल में एक ऑनर भी मिलेगा स्मिथ को, इसको लेकर आप क्या बोलेंगे?
2: बस बहुत खुशी हो रही है फादर मदर हम लोग दोनों को, बहुत अच्छा बात हुआ है और जीवन जीवन में ऐसा मौका मिले तो जीवन अच्छा जिया है सब प्रूव हो जाएगा कि भाई कुछ किया अपन जीवन में।
1: और यहाँ इंडिया में कुछ पॉलिटिशियंस ने ऑलरेडी एक कॉन्वर्सेशन जारी किया है, मिलिंद देवरा ने एक चिट्ठी लिखा है प्रधानमंत्री को कि अशोक चक्र मिलना चाहिए स्मिथ को, क्या आप सहमत हैं अशोक चक्र मिलना चाहिए स्मिथ को?
2: नहीं, मैं इस चीज के लिए नहीं बोल सकता हूँ।
1: क्या आपको लगता है कि स्मिथ को वापस आना चाहिए या दुबई से ही काम करेंगे आगे जाकर? भूपेंद्र जी, आप उनके पिताजी हैं, आपके वरीज भी हैं, आप कंसर्न भी हैं, क्या आपको लगता है उनको वापस आना चाहिए भारत?
2: वो काम शायद जहां कर रहा है वहीं करेगा।
1: इसको लेकर जो इम्पैक्ट होगा एविएशन पर, भूपेंद्र जी थोड़ा डिटेल में आपका जो अंडरस्टैंडिंग है इसके बारे में बताइए, क्योंकि जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स था कॉकपिट में उसको लेकर क्या आपको लगता है कि सिक्योरिटी लेकर, टेरर लेकर, एविएशन को लेकर असर पड़ेगा? अब
2: अभी वो अपनी कंपनी का सब लोग अपने हिसाब से देखेंगे, लेकिन ऐसा ऐसा चीज बहुत सालों में एक बार होता है और वो नहीं होना चाहिए प्रैक्टिकली, और उसके लिए जो भी चौकसाई करनी होगी वो कंपनी वाले करेंगे जरूर।
1: एक एक बात बताइए भूपेंद्र जी, सारा दुनिया आपका आपके बेटे को जानता है, अब उनका नाम पूरा रोशन हो गया है, लेकिन जो ओमानी को पायलट था जो स्मिथ के साथ ऑपरेट कर रहा था इस फ्लाइट में, उसका नाम किसी को पता नहीं है, उसका आइडेंटिटी किसी को पता नहीं है, बिल्कुल सीक्रेट है ये, इसके बारे में आपका क्या सोच है?
2: मेरे को उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है।
1: किसी ने क्या आपको ब्रीफ किया है कि क्या हुआ था उस कॉकपिट में? किसी सिक्योरिटी एजेंसी ने आपको क्या ब्रीफ किया है?
2: नहीं, मैं ब्रीफ करूंगा मेरे बेटे के साथ ही, जो भी समझना है पूरा उनके साथ ही।
1: जो ग्लोबल मीडिया में आपके बेटे के बहादुरी को लेकर जो मीडिया स्टोरीज चल रहे हैं, उसको लेकर आप क्या बोलेंगे भूपेंद्र जी? क्योंकि जैसे मैंने बताया इस इंटरव्यू के पहले, स्मिथ मच्छर जो है एक इंडियन पायलट नहीं है, अब एक वो ग्लोबल एक बहादुरी के एक आइकॉन है ऑलमोस्ट। क्या ये सही है? ही इज अ ग्लोबल सिटीजन नाउ सर।
2: ऊपर वाले की मेहरबानी है।
1: क्या आप सिटीजन्स को कुछ बोलना चाहेंगे एज द फादर ऑफ स्मिथ मच्छर, द मोस्ट फेमस इंडियन पायलट ऑफ आर जेनरेशन सर? उन्होंने जो किया है इंडिया को प्राउड किया है, क्या सिटीजन्स को कुछ बताएंगे? अब बहुत सारे यंग जेंजी भी देख रहे हैं अभी, स्मिथ जो है 38 साल के हैं, कुछ मैसेज है आपका?
2: मैं खाली एक स्मिथ का एक आपको नेचर और हमारा फैमिली का जो चलने का रास्ता है वो मैं एक खाली अपने जेंजी को खाली बोल सकता हूँ कि जो रिस्पेक्ट आज स्मिथ फादर मदर को दे रहा है और जिस तरीके से अपने फैमिली के साथ वो अच्छा लाइफ जी रहा है, तो जितना अच्छा सोचेंगे जितना अच्छा काम करेंगे उतना ऊपर वाला हेल्प करेगा जब भी तकलीफ आएगी। तो मैं यंगस्टर्स को जो अपग्रोन है अभी जो नया लाइन में जाना चाहते हैं या अभी उनके हाथ में कोई सब्जेक्ट आया नहीं है, तो एक ही बात बोलूंगा कि सच्चाई और ईमानदारी है ना वो हमेशा जीतती है, और उसी को पकड़ के चलना वही अपने लिए सक्सेसफुल रहेगा, तो आगे अपना इंडिया में सब जन अच्छी तरह से रह पाएंगे।
1: जी बिल्कुल। और
2: धन्यवाद। अभी
1: भूपेंद्र जी आखिरी सवाल, एक जो मोस्ट वायरल कमेंट है इस इंटरेक्शन में प्रधानमंत्री के साथ वो था हनुमान चालीसा को लेकर, क्या स्मिथ बहुत रिलीजियस माइंडेड है, बहुत विश्वास रखते हैं हनुमान जी में आपके परिवार में, इसके बारे में बताइए सर।
2: खाली एक ही लाइन में बोलूंगा कि हम लोग के घर में एक सिस्टम है कि एक सोते टाइम हम लोग हनुमान चालीसा सुनते हैं और लाइट ऑफ करते हैं, और सुबह स्मिथ ने अपने छोटे बच्चे को रोज सुबह मंदिर में बैठ के हनुमान चालीसा बोलने का काफी दिनों से चालू किया है, तो हमको खुशी है हम लोग के घर में इस तरीके का सबका।
1: भूपेंद्र जी एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वी आर सो प्राउड ऑफ स्मिथ मच्छर। थैंक यू वेरी मच। वी विश यू द वेरी बेस्ट। वी विश हिम अ स्पीडी रिकवरी एंड आई नो यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग हिम अगेन आफ्टर ही हैज जस्ट स्पोकन टू द प्राइम मिनिस्टर। थैंक यू वेरी मच भूपेंद्र मच्छर, फादर ऑफ द हीरो इंडियन पायलट स्मिथ, स्पीकिंग फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव हियर on NDTV. It's back to the studio now.
0: Thanks for that, Shiv. And Bhupender ji there speaking to NDTV about his brave son. His son, Smith Machar, earlier today spoke to Prime Minister Modi. Let's bring you those details. All right, we're now joined by Smith Machar's uncle, Kishore. Kishore ji on the phone line with us. Thank you so much for speaking to NDTV. Kishore ji, I'd like to ask you your first reaction when you heard the news. आप कहाँ थे? आपको कब ये खबर आई जो हुआ ये fly Dubai flight पे?
3: मैं घर में ही था।
0: जी।
3: और मेरी बेटी ने मुझे बोला कि आपने टीवी देखा है ऐसा स्मिथ फ्लाइट पे गया और उसके ऊपर अटैक हुआ है, और हम लोग बहुत ही शॉक में थे। फिर ये सिलसिला चला, हम टीवी देखते रहे। फिर मैं मेरे भाई साहब से बात की, भी ऐसी ऐसी बात हुई है, फिर पता चला हमें न्यूज के माध्यम से कि भाई उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है, वो सब हम जैसे आम जनता को पता चलता है वैसे ही हम लोग बैठे थे टीवी पे देख के देख रहे हैं।
0: और आपने अपने भाई को फोन किया पता करने के लिए कि उनको क्या खबर आ रही है, क्या हुआ है?
3: हम भाई के पास ही, मेरे दो बिल्डिंग करीब ही रहते हैं वो
0: जी।
3: मैं उनके पास गया, पहुंचा और उनको संभाला मैंने, हम लोग दोनों। ही वॉज ऑल्सो वेरी शॉक्ड, ही वॉज नॉट अवेयर। जब भी मैं उनके पास गया भाई, उनके पास भी कोई नॉलेज नहीं था ये। फिर हमने देखा टीवी पे ये सब, फिर हमने कॉन्टेक्ट किया उनकी वाइफ का, तो उन्होंने बोला कि भाई इस तरह से ऐसा ऐसा हुआ है। वो भी सी वॉज ऑल्सो नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग।
0: ओके,
3: फिर रात भर वही चल रहा, हम लोग तैयारी करने लगे कि हम दुबई चलेंगे। फिर भाई साहब और उनकी वाइफ दोनों दुबई के लिए हम लोग ने सब।
0: और अब इस समय आपका क्या कहना है, जिस तरह से पूरी दुनिया भर में प्रेज आ रहा है स्मिथ मच्छर के लिए, जिस तरह उनके जो बहादुरी जो उन्होंने दिखाई, लोगों की जान बचाई फ्लाइट पर, अब आपको क्या कहना है अपने नेव्यू के बारे में?
3: बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है, और एक तो संतुष्टि है, हमारे PM साहब ने उनसे बात की, उनकी देखभाल के लिए वहाँ व्यवस्था हो गई, और अभी हॉस्पिटल में कल हमारे भाई साहब उनको मिल के आए और उनकी हालत अच्छी है, समझ के हम लोग बहुत रिलीव्ड हो गए। हमको अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। वी आर फीलिंग वेरी प्राउड, और ईश्वर की बड़ी कृपा है हमारी फैमिली पे कि वो हमारा बच्चा एकदम ठीक है।
0: ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू NDTV। किशोर मच्छर देयर, हु इज द अंकल of Smit Machar. And just a short while ago, Shiv Arur spoke with Smit Machar's father, Bhupendra ji. Just listen in to what he had to say.
1: Bhupendra Bhai Machar, he is the father of hero pilot Smit Machar, whose son has made the entire country proud and is now a global icon of courage. Bhupendra Bhai, NDTV par aapka swagat hai. आपके बेटे पर पूरा देश का गर्व है, क्या आप बता सकते हैं भूपेंद्र भाई, स्मिथ अभी कैसा है, उनकी तबीयत कैसी है? उनकी अभी जो वीडियो सामने आया है प्राइम मिनिस्टर के साथ बातचीत करते हुए, साफ नज़र दिखाई देता है कि वो ठीक है। आप एक अपडेट दीजिए कि वो कैसे हैं, आपका बेटा कैसा है अभी भूपेंद्र भाई?
2: जैसा आपने देखा वीडियो में वही चीज़ मैंने भी देखी आज, क्योंकि मैं आज उनको कल मैं मिला था 10 मिनट के लिए, तभी वो थोड़ा पूरे कंट्रोल में नहीं था। थोड़ी सी बात करके फिर डॉक्टरों ने भी बोला कि आज अपलिफ्ट हुआ है, तो अपन शांति से बात करें तो बेटर है। तो आज हम लोग वहां पहुंच रहे हैं, थोड़े टाइम में हम उनके वे ही है। और जितना आपने देखा नरेंद्र मोदी के साथ बात करते हुए, मेरे को भी बहुत खुशी हुई कि आज वो अच्छे फेज में है और अच्छी बात कर रहा है, तो भगवान का बहुत बड़ा शुक्र है।
1: स्मित ने आपको क्या बताया जब आप मिले उनसे भूपेंद्र भाई, आपको क्या बताया कल?
2: एक्चुअली कल हम लोग ने एक बात रखी थी कि इस इंसिडेंट के बारे में आज कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि वो अभी भी उतने ही वो फेज में था। तो मैंने सोचा कि आज स्मित अपन एक खाली भगवान की बहुत मेहरबानी समझ के आज हम लोग गले मिलते हैं, कोई उसकी बात नहीं करेंगे। आज बहुत सब लोग खुश होकर बात कर 10 मिनट बैठेंगे हम लोग तेरे साथ। तो कल की हमारी कोई भी बात में हमने उसको कोई वो चीज को याद नहीं दिलाया, मतलब वो बात ही मत छेड़ना, अभी अपन शांति से कल बात करेंगे।
1: भूपेंद्र भाई, स्मित के जख्म कितना सीरियस हैं, इन तस्वीरों में दिखाई देता है कि वो हॉस्पिटल में है, वो ट्रीटमेंट जारी है, डॉक्टर्स का क्या कहना है भूपेंद्र भाई?
3: डॉक्टर्स ने बोला है कि समय लगेगा ये जख्म को क्लियर करने में, और सर पे भी लगा है, दोनों हाथ से भी लगा है, और सर पे कुछ ऑपरेट भी हुआ है, स्टिचेस भी आए हैं काफी। तो अभी एकदम डिटेल में मैं आज नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जख्म है और शायद अच्छा टाइम जाएगा इसको क्लियर होने में।
1: भूपेंद्र भाई, आप स्मित के पिताजी हैं, आप और स्मित के माँ, क्या महसूस हुआ जब आपने सुना कि ये हादसा हुआ था आपके बेटे के साथ, आपका क्या रिएक्शन था, क्या महसूस किया आपने?
3: जैसे जैसे हर माँ बाप का हो गए, सबसे पहले एक ही विचार खराब आ जाता है, और तुरंत हमने हमारे भगवान के पास दिया किया और बोला भगवान कुछ भी हो जावे, खराब न्यूज नहीं आना चाहिए, आप बचा लेंगे।
1: लेकिन आप में विश्वास था आपका बेटा स्मित ऐसे करेगा, ऐसे ही बहादुरी दिखाएगा इस हादसे में, आप में विश्वास था?
3: देखो ये इस चीज की कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, जैसे आप भी वो चीज समझते हो,
4: लेकिन एक ऊपर वाले की मेहरबानी रहेगी, कोई शक्ति उसके साथ आ गई और उसने ये जो प्रॉब्लम आया उसको सॉल्व किया, अपना पूरा सबके लिए गर्व की बात हो गई। और मैं भी बोलूंगा कि इसमें ज्यादातर भगवान की मेहरबानी है, हम लोग ज्यादा धर्मिष्ठ थे पूरे घर वाले
1: जी। और भूपेंद्र भाई, आपकी बेटे की बहादुरी भी थी, आपने डिटेल में देखा है कि उन्होंने क्या किया कॉकपिट में, हमला के बाद उन्होंने जख्मी होते हुए कॉकपिट के दरवाजा को खुला रखा, डिटेल में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है आपको पता है कि क्या हुआ, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये एक प्रेजेंस ऑफ माइंड थी, जैसे आपने बताया कि इसका कोई ट्रेनिंग नहीं होता है सर।
4: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसका एक शब्द बोल दूं मैं, जैसे वो गिर गया जैसे नीचे कॉकपिट में, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि अभी जो करना है वो अभी कर ले, अदरवाइज कुछ नहीं होएगा। तो फिर उसके मन में एक विचार आया कि अभी फाइट करना ही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है दूसरा, और उसने एक्शन लिया और सक्सेस हो गया। और उसके मन में एक बात पक्की थी कि मेरे हिसाब से पीछे के जितने भी पैसेंजर थे वो किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए, वो उसके मन में पूरा भरा हुआ था। तो उस चीज ने ऊपर वाले ने सपोर्ट किया और ये पूरा सक्सेस हो गई बात।
1: भूपेंद्र भाई, क्या स्मिथ हमेशा ऐसे ही थे, सेल्फलेस, औरों के लिए ऐसे बिहेव करना? उनका ट्रेनिंग था एक पायलट के हिसाब से, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग वो कभी भी ऐसे ही थे?
4: एक्चुअली बोलूं तो वो आज समझो 17 साल से फ्लाइंग कर रहा है, और इस 17 साल के अंदर उसने सैकड़ों पायलटों को किस तरीके से इंटरव्यू देना है, किस तरीके से अपने को ये चीज समझना चाहिए, वो उसके पहले से नेचर में है। वो फ्लाइंग के बारे में एकदम से उसका मतलब, वो वाइफ है उसकी ऐसा समझ लो
1: जी,
4: उसको फ्लाइंग मतलब और कुछ समझता ही नहीं, बोलता मेरे को ज्यादा अच्छे से अच्छा फ्लाइंग करना है।
1: और जब वो ठीक हो जाएंगे भूपेंद्र भाई, क्या वो फ्लाइंग कंटिन्यू करेंगे?
4: वो ना बोलेगा ही नहीं कभी भी कि मैं नहीं करूंगा ऐसा।
1: और
4: मैं भी चाहूंगा कि वो करे, क्यों नहीं करेगा, करेगा।
1: क्या क्या आप उनके पिताजी हैं, आप कुछ एडवाइस दे रहे हैं उनको, आपने कुछ बताया उनको?
4: अभी आज से शुरू होएगा हमारी डिस्कशन जो भी हो।
1: ये एक टेरर इंसिडेंट था भूपेंद्र जी, सारा दुनिया इसके बारे में बात कर रहा है, सारा दुनिया आपके बेटे का प्रशंसा कर रहा है अभी। क्या आपको लगता है कि एक पूरा एक ग्लोबल स्पॉटलाइट बन गया है आपके परिवार को लेकर? अब
4: जरूर ऐसा इंसिडेंट हुआ है, हम लोग तो एक आप बोलेंगे तो साधारण से हम लोग सिंपल जीवन जीने वाले आदमी हैं, और सब लोग पहले बोलते थे कि प्राउड मोमेंट है, प्राउड मोमेंट है। मेरे हमारे घर में मेरे और मेरी वाइफ को और उनकी वाइफ को एक ही विचार आता था कि प्राउड मोमेंट भले है लेकिन हमको हमारे लड़के को देखना है अच्छी तरह से पहले।
1: जी बिल्कुल। और जैसे प्रधानमंत्री ने कन्वे किया भूपेंद्र भाई, आज आपने देखा वो वीडियो जिसमें उन्होंने बोला है कि इंडिया का प्रेयर्स जो है, प्रार्थना जो है, जो कन्वे किया स्मिथ को, वो बिल्कुल सही है। पूरा नेशन, एंटायर इंडिया आपके बेटे के लिए प्रार्थना कर रहा है, प्रे कर रहा है अभी।
4: सही है, सही है, वो मैंने भी सुना और मैंने देखा कुछ वीडियो, और पूरे देशवासी को मैं पूरा आभार मानूंगा सबका के इस तरीके से सबने इतना अच्छा मेरे बेटे के लिए प्रार्थना की। और ये सब लोग का आशीर्वाद है कि वो जल्दी रिकवर हो जाएगा, और मेरे को विश्वास है कि वो अगेन वापस आएगा और अच्छी तरह से फ्लाइंग करेगा।
1: भूपेंद्र भाई, स्मिथ की माँ की रिएक्शन क्या थी जब ये हुआ था, उनकी रिएक्शन क्या थी सर?

0: बहुत सेंसिटिव है, हम दोनों सेंसिटिव है बहुत ही, और हम लोग ने एक ही श्रद्धा रखा था कि भगवान जो भी करेगा अच्छा ही करेगा, अपने साथ बुरा नहीं होएगा।
1: और उनकी उनकी पत्नी और उनके छोटा बच्चा भी है, उनका क्या रिएक्शन था? ये एक बहुत ही सीरियस इंसिडेंट।
0: हम लोग को बहुत ही डर लग रहा था, क्योंकि वो दोनों बच्चे और स्मिथ की वाइफ दुबई में थे, हम लोग बॉम्बे में थे, और हम लोग की कंटिन्यूस फोन में बात चल रही थी कि मैं बोला बस भगवान का नाम लेते रहते, हम लोग भी निकल जाते हैं बॉम्बे से जल्दी, और डर ना मत, मैं मतलब हम लोग पहुंच ही रहे बस। कैसे भी करके
1: जी
0: हम लोग ने अपने आप को संभाला है सब लोगों ने।
1: भूपेंद्र जी, आपने देखा होगा कि इसराइल के प्रधानमंत्री, इंडिया के प्रधानमंत्री और बहुत सारे ग्लोबल लीडर्स ने आपके बेटे को प्रेज किया है। बातचीत चल रही है कि शायद इसराइल में एक ऑनर भी मिलेगा स्मिथ को, इसको लेकर आप क्या बोलेंगे?
0: बस बहुत खुशी हो रही है फादर मदर हम लोग दोनों को, बहुत अच्छा बात हुआ है, और जीवन जीवन में ऐसा मौका मिले तो जीवन अच्छा जिया ऐसा प्रूव हो जाएगा कि भाई कुछ किया अपन जीवन में।
1: और यहाँ इंडिया में कुछ पॉलिटिशियंस ने ऑलरेडी एक कॉन्वर्सेशन जारी किया है, मिलिंद देवरा ने एक चिट्ठी लिखा है प्रधानमंत्री को कि अशोक चक्र मिलना चाहिए स्मिथ को, क्या आप सहमत हैं अशोक चक्र मिलना चाहिए स्मिथ को?
0: नहीं, मैं इस चीज के लिए नहीं बोल सकता हूँ।
1: क्या आपको लगता है कि स्मिथ को वापस आना चाहिए या दुबई से ही काम करेंगे आगे जाकर? भूपेंद्र जी, आप उनके पिताजी हैं, आपके वरीज भी हैं, आप कंसर्न भी हैं, क्या आपको लगता है उनको वापस आना चाहिए भारत?
0: वो काम शायद जहां कर रहा है वहीं करेगा।
1: इसको लेकर जो इम्पैक्ट होगा एविएशन पर, भूपेंद्र जी थोड़ा डिटेल में आपका जो अंडरस्टैंडिंग है इसके बारे में बताइए, क्योंकि जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स था कॉकपिट में उसको लेकर क्या आपको लगता है कि सिक्योरिटी लेकर, टेरर लेकर, एविएशन को लेकर असर पड़ेगा?
0: अभी वो अपनी कंपनी का सब लोग अपने हिसाब से देखेंगे, लेकिन ऐसा चीज बहुत सालों में एक बार होता है और वो नहीं होना चाहिए प्रैक्टिकली, और उसके लिए जो भी चौकसाई करनी होगी वो कंपनी वाले करेंगे जरूर।
1: एक बात बताइए भूपेंद्र जी, सारा दुनिया आपका आपके बेटे को जानता है, अब उनका नाम पूरा रोशन हो गया है, लेकिन जो ओमानी कोपायलट था जो स्मिथ के साथ ऑपरेट कर रहा था इस फ्लाइट में, उसका नाम किसी को पता नहीं है, उसका आइडेंटिटी किसी को पता नहीं है, बिल्कुल सीक्रेट है ये, इसके बारे में आपका क्या सोच है?
0: मेरे को उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है।
1: किसी ने क्या आपको ब्रीफ किया है कि क्या हुआ था उस कॉकपिट में? किसी सिक्योरिटी एजेंसी ने आपको क्या ब्रीफ किया है?
0: नहीं, मैं ब्रीफ करूंगा मेरे बेटे के साथ ही, जो भी समझना है पूरा उनके साथ ही।
1: जो ग्लोबल मीडिया में आपके बेटे के बहादुरी को लेकर जो मीडिया स्टोरीज चल रहे हैं, उसको लेकर आप क्या बोलेंगे भूपेंद्र जी? क्योंकि जैसे मैंने बताया इस इंटरव्यू के पहले, स्मिथ मच्छर जो है एक इंडियन पायलट नहीं है, अब एक वो ग्लोबल एक बहादुरी के एक आइकॉन है ऑलमोस्ट, क्या ये सही है? ही इज अ ग्लोबल सिटीजन नाउ सर।
0: ऊपर वाले की मेहरबानी है।
1: क्या आप सिटीजन्स को कुछ बोलना चाहेंगे एज द फादर ऑफ स्मिथ मच्छर, द मोस्ट फेमस इंडियन पायलट ऑफ आर जेनरेशन सर? उन्होंने जो किया है इंडिया को प्राउड किया है, क्या सिटीजन्स को कुछ बताएंगे? अब बहुत सारे यंग जेनजी भी देख रहे हैं अभी, स्मिथ जो है 38 साल के हैं, कुछ मैसेज है आपका?
0: मैं खाली एक स्मिथ का एक आपको नेचर और हमारा फैमिली का जो चलने का रास्ता है वो मैं खाली अपने जेनजी को खाली बोल सकता हूँ कि जो रिस्पेक्ट आज स्मिथ फादर मदर को दे रहा है और जिस तरीके से अपने फैमिली के साथ वो अच्छा लाइफ जी रहा है, तो जितना अच्छा सोचेंगे, जितना अच्छा काम करेंगे उतना ऊपर वाला हेल्प करेगा जब भी तकलीफ आएगी। तो मैं यंगस्टर्स को जो अपग्रोन है अभी, जो नया लाइन में जाना चाहते हैं या अभी उनके हाथ में कोई सब्जेक्ट आया नहीं है, तो एक ही बात बोलूंगा कि सच्चाई और ईमानदारी है ना, वो हमेशा जीतती है, और उसी को पकड़ के चलना वही अपने लिए सक्सेसफुल रहेगा, तो आगे अपना इंडिया में सब जन अच्छी तरह से रह पाएंगे।
1: जी बिल्कुल। और
0: धन्यवाद। अभी
1: भूपेंद्र जी, आखिरी सवाल।

0: आखिरी सवाल, एक जो मोस्ट वायरल वायरल कमेंट है इस इंटरेक्शन में प्रधानमंत्री के साथ, वो था हनुमान चालीसा को लेकर। क्या स्मित बहुत रिलीजियस माइंडेड है, बहुत विश्वास रखते हैं हनुमान जी में, आपके परिवार में, इसके बारे में बताइए सर।
1: खाली एक ही लाइन में बोलूंगा कि हम लोग के घर में एक सिस्टम है कि एक सोते टाइम हम लोग हनुमान चालीसा सुनते हैं और लाइट ऑफ करते हैं, और सुबह स्मित ने एक अपने छोटे बच्चे को रोज सुबह मंदिर में बैठ के हनुमान चालीसा बोलने का काफी दिनों से चालू किया है। तो हमको खुशी है हम लोग के घर में इस तरीके का स्वभाव है सबका। ठीक है जी,
0: भूपेंद्र जी एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। We are so proud Thank of you. Smit Machar. Thank you very much. We wish you Thank the you. Very best. Thank We wish him a speedy recovery. And I know you are looking forward to meeting him again after he has just spoken to the Prime Minister. Thank you very much. Bhupendra Machar, father of the hero Indian pilot Smit, speaking first in exclusive here on NDTV.
2: All right, with that, we'll slip into a short break. Coming up on the other side, we'll also be bringing you the conversation that Smit Machar had with the Prime Minister today. Remember, he spoke to him from the hospital bed there in the UAE, where he recounted those terrifying moments, but how he pushed himself, because he said, I knew 170 people could die if he did not push himself. He also spoke about chanting the Hanuman Chalisa as he lay there on the cockpit floor. More on that coming up, first a short break.

0: Now, Prime Minister Narendra Modi spoke today to us, Captain Smith Machar, who is recovering in the UAE. Before that conversation, NDTV also exclusively spoke to Smith Machar's father, Bhupendra Ji, who spoke about his son, who also shared with us those frightening moments when they realized that he had come under attack. But he spoke about his resilience, about his faith and his determination as well. Listen in to this conversation with Shivarur.
1: Bhupendra Bhai Machar, he is the father of hero pilot Smith Machar, whose son has made the entire country proud and is now a global icon of courage. Bhupendra Bhai, NDTV par aapka swagat hai. Aapke bete par pura desh ka garv hai. Kya aap bata sakte hain Bhupendra Bhai, Smith abhi kaisa hai? उनकी तबीयत कैसी है? उनकी अभी जो वीडियो सामने आया है प्राइम मिनिस्टर के साथ बातचीत करते हुए साफ नज़र दिखाई देता है कि वो ठीक है. आप एक अपडेट दीजिए कि वो कैसे हैं, आपका बेटा कैसा है अभी भूपेंद्र भाई?
2: जैसा आपने देखा वीडियो में, वही चीज़ मैंने भी देखी है आज, क्योंकि मैं आज उनको कल में मिला था 10 मिनट के लिए, तभी वो थोड़ा पूरे कंट्रोल में नहीं था. थोड़ी सी बात करके फिर डॉक्टरों ने भी बोला कि आज अपलिफ्ट हुआ है, तो अपन शांति से बात करें तो बेटर है. तो आज हम लोग वहां पहुंच रहे हैं थोड़े टाइम में, माउंट वे ही है. और जितना आपने देखा नरेंद्र मोदी के साथ बात करते हुए, मेरे को भी बहुत खुशी हुई कि आज वो अच्छे फेज में है और अच्छी बात कर रहा है, तो भगवान का बहुत बड़ा शुक्र है.
1: स्मिथ ने आपको क्या बताया जब आप मिले उनसे भूपेंद्र भाई?

0: आपको क्या बताया कल?
1: एक्चुअली कल हम लोग ने एक बात रखी थी कि इस इंसिडेंट के बारे में आज कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि वो अभी भी उतने ही वो फेज में था। तो मैंने सोचा कि आज भी अपन एक खाली भगवान की बहुत मेहरबानी समझ के आज हम लोग गले मिलते हैं, कोई उसकी बात नहीं करेंगे। आज बहुत सब लोग खुश होकर बात कर 10 मिनट बैठेंगे हम लोग तेरे साथ। तो कल की हमारी कोई भी बात में हमने उसको कोई वो चीज को याद नहीं दिलाया, मतलब वो बात ही मत छेड़ना अभी, अपन शांति से कल बात करेंगे।
0: भूपेंद्र भाई, स्मित के जख्म कितना सीरियस है इन तस्वीरों में दिखाई देता है कि वो हॉस्पिटल में है, वो ट्रीटमेंट जारी है, डॉक्टर्स का क्या कहना है भूपेंद्र भाई?
1: डॉक्टर्स ने बोला है कि समय लगेगा ये जख्म को क्लियर करने में, और सर पे भी लगा है, दोनों हाथ से भी लगा है, और सर पे कुछ ऑपरेट भी हुआ है, स्टिचेस भी आए हैं काफी। तो अभी एकदम डिटेल में मैं आज नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जख्म है और शायद अच्छा टाइम जाएगा इसको क्लियर होने में।
0: भूपेंद्र भाई, आप स्मित के पिताजी हैं, आप और स्मित के माँ, क्या महसूस हुआ जब आपने सुना कि ये हादसा हुआ था आपके बेटे के साथ? आपका क्या रिएक्शन था, क्या महसूस किया आपने?
1: जैसे जैसे हर माँ बाप का हो, सबसे पहले एक ही विचार खराब आ जाता है, और तुरंत हमने हमारे भगवान के पास दिया किया और बोला भगवान कुछ भी हो जावे, खराब भी उसमें आना चाहिए, आप बचा लेंगे।
0: लेकिन आप में विश्वास था कि आपका बेटा स्मित ऐसे करेगा, ऐसे ही बहादुरी दिखाएगा इस हादसे में, आप में विश्वास था?
1: देखो देखो, ये इस चीज की कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, जैसे आप भी वो चीज समझते हो, लेकिन एक ऊपर वाले की मेहरबानी रहेगी, कोई शक्ति उसके साथ आ गई और उसने ये जो प्रॉब्लम आया उसको सॉल्व किया, अपना पूरा सबके लिए गर्व की बात हो गई। और मैं भी बोलूंगा कि इसमें ज्यादातर भगवान की मेहरबानी है, हम लोग ज्यादा धर्मी थे पूरे घर वाले
0: जी। और भूपेंद्र भाई, आपकी बेटे की बहादुरी भी थी, आपने डिटेल में देखा है कि उन्होंने क्या किया कॉकपिट में, हमला के बाद उन्होंने जख्मी होते हुए कॉकपिट के दरवाज़ा को खुला रखा, डिटेल में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है आपको पता है कि क्या हुआ, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये एक प्रेजेंस ऑफ माइंड थी, जैसे आपने बताया कि इसका कोई ट्रेनिंग नहीं होता है सर।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उसका एक शब्द बोल दूं मैं, के जैसे वो गिर गया जैसे नीचे कॉकपिट में, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि अभी जो करना है वो अभी कर ले, अदरवाइज कुछ नहीं होएगा। तो फिर उसके मन में एक विचार आया कि अभी फाइट करना ही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है दूसरा, और उसने एक्शन लिया और सक्सेस हो गया। और उसके मन में एक बात पक्की थी कि मेरे हिसाब से पीछे के जितने भी पैसेंजर थे वो किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए, वो उसके मन में पूरा भरा हुआ था। तो उस चीज ने ऊपर वाले ने सपोर्ट किया और ये पूरा सक्सेस हो गई बात।
0: भूपेंद्र भाई, क्या स्मित हमेशा ऐसे ही थे, सेल्फलेस, औरों के लिए ऐसे बिहेव करना उनका ट्रेनिंग था एक पायलट के हिसाब से, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग वो कभी भी ऐसे ही थे?
1: एक्चुअली बोलूं तो वो आज समझो 17 साल से फ्लाइंग कर रहा है, और इस 17 साल के अंदर उसने सैकड़ों पायलटों को किस तरीके से इंटरव्यू देना है, किस तरीके से अपने को ये चीज समझना चाहिए, वो उसके पहले से नेचर में है, वो फ्लाइंग के बारे में एकदम से उसका मतलब वो वाइफ है उसकी, ऐसा समझ लो
0: जी,
1: उसको फ्लाइंग मतलब और कुछ समझता ही नहीं, बोलता मेरे को ज्यादा अच्छे से अच्छा फ्लाइंग करना है।
0: और जब वो ठीक हो जाएंगे भूपेंद्र भाई, क्या वो फ्लाइंग कंटिन्यू करेंगे?
1: वो तो वो ना बोलेगा ही नहीं कभी भी कि मैं नहीं करूंगा ऐसा।
0: और
1: मैं भी चाहूंगा कि वो करे, क्यों नहीं करेगा, करेगा।
0: क्या क्या आप उनके पिताजी हैं, आप कुछ एडवाइस दे रहे हैं उनको, आपने कुछ बताया उनको?
1: अभी आज से शुरू होएगा हमारी डिस्कशन जो भी हो।
0: ये एक टेरर इंसिडेंट था भूपेंद्र जी, सारा दुनिया इसके बारे में बात कर रहा है, सारा दुनिया आपके बेटे का प्रशंसा कर रहा है अभी, क्या आपको लगता है कि एक पूरा एक ग्लोबल स्पॉटलाइट बन गया है आपके परिवार को लेकर? अब
1: जरूर ऐसा इंसिडेंट हुआ है, हम लोग तो एक आप बोलेंगे तो साधारण से हम लोग सिंपल जीवन जीने वाले आदमी है, और सब लोग पहले बोलते थे कि प्राउड मोमेंट है।

0: पावर मूवमेंट है, मेरे हमारे घर में मेरे और मेरी वाइफ को और उनकी वाइफ को एक ही विचार आता था, ये प्राउड मूवमेंट भले है लेकिन हमको हमारे लड़के को देखना है अच्छी तरह से पहले।
1: जी बिल्कुल। और जैसे प्रधानमंत्री ने कन्वे किया भूपेंद्र भाई, आज आपने देखा वो वीडियो जिसमें उन्होंने बोला है कि इंडिया का प्रेयर्स जो है, प्रार्थना जो है, जो कन्वे किया स्मिथ को, वो बिल्कुल सही है। पूरा नेशन, एंटायर इंडिया आपके बेटे के लिए प्रार्थना कर रहा है, प्रे कर रहा है अभी।
0: सही है, सही है, वो मैंने भी सुना और मैंने देखा कुछ वीडियो, और पूरे देशवासी को मैं पूरा आभार मानूंगा सबका के इस तरीके से सबने इतना अच्छा मेरे बेटे के लिए प्रार्थना की, और ये सब सब लोग का आशीर्वाद है कि वो जल्दी रिकवर हो जाएगा, और मेरे को विश्वास है कि वो अगेन वापस आएगा और अच्छी तरह से फ्लाइंग करेगा।
1: भूपेंद्र भाई, स्मिथ की माँ की रिएक्शन क्या थी जब ये हुआ था, उनकी रिएक्शन क्या थी? सर
0: बहुत सेंसिटिव है, हम दोनों सेंसिटिव है बहुत ही, और हम लोग ने एक ही श्रद्धा रखा था कि भगवान जो भी करेगा अच्छा ही करेगा, अपने साथ बुरा नहीं होगा।
1: और उनकी उनकी पत्नी और उनके छोटा बच्चा भी है, उनका क्या रिएक्शन था? ये एक बहुत ही सीरियस इंसिडेंट
0: था। हम लोग को बहुत ही डर लग रहा था, क्योंकि वो दोनों बच्चे और स्मिथ की वाइफ दुबई में थे, हम लोग बॉम्बे में थे, और हम लोग की कंटिन्यूस फोन में बात चल रही थी कि मैं बोला बस भगवान का नाम लेते रहते, हम लोग भी निकल जाते हैं बॉम्बे से जल्दी, और डर ना मत, मैं मतलब हम लोग पहुंच ही रहे बस, कैसे भी करके
1: जी
0: हम लोग ने अपने आप को संभाला है सब लोगों ने।
1: भूपेंद्र जी, आपने देखा होगा कि इजराइल के प्रधानमंत्री, इंडिया के प्रधानमंत्री और बहुत सारे ग्लोबल लीडर्स ने आपके बेटे को प्रेज किया है। बातचीत चल रही है कि शायद इजराइल में एक ऑनर भी मिलेगा स्मिथ को, इसको लेकर आप क्या बोलेंगे?
0: बस बहुत खुशी हो रही है फादर मदर हम लोग दोनों को, बहुत अच्छा बात हुआ है, और जीवन जीवन में ऐसा मौका मिले तो जीवन अच्छा जिया ऐसा प्रूव हो जाएगा कि भाई कुछ किया अपन जीवन में।
1: और यहाँ इंडिया में कुछ पॉलिटिशियंस ने ऑलरेडी एक कॉन्वर्सेशन जारी किया है, मिलिंद देवरा ने एक चिट्ठी लिखा है प्रधानमंत्री को कि अशोक चक्र मिलना चाहिए स्मिथ को, क्या आप सहमत हैं अशोक चक्र मिलना चाहिए स्मिथ को?
0: नहीं, मैं इस चीज के लिए नहीं बोल सकता हूँ।
1: क्या आपको लगता है कि स्मिथ को वापस आना चाहिए या दुबई से ही काम करेंगे आगे जाकर? भूपेंद्र जी, आप उनके पिताजी हैं, आपके वरीज भी हैं, आप कंसर्न भी हैं, क्या आपको लगता है उनको वापस आना चाहिए भारत?
0: वो काम शायद जहां कर रहा है वहीं करेगा।
1: इसको लेकर जो इम्पैक्ट होगा एविएशन पर, भूपेंद्र जी थोड़ा डिटेल में आपका जो अंडरस्टैंडिंग है इसके बारे में बताइए, क्योंकि जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स था कॉकपिट में उसको लेकर क्या आपको लगता है कि सिक्योरिटी लेकर, टेरर लेकर, एविएशन को लेकर असर पड़ेगा?
0: अभी वो अपनी कंपनी का सब लोग अपने हिसाब से देखेंगे, लेकिन ऐसा चीज बहुत सालों में एक बार होता है और वो नहीं होना चाहिए प्रैक्टिकली, और उसके लिए जो भी चौकसाई करनी होगी वो कंपनी वाले करेंगे जरूर।
1: एक बात बताइए भूपेंद्र जी, सारा दुनिया आपका आपके बेटे को जानता है, अब उनका नाम पूरा रोशन हो गया है, लेकिन जो ओमानी कोपायलट था जो स्मिथ के साथ ऑपरेट कर रहा था इस फ्लाइट में, उसका नाम किसी को पता नहीं है, उसका आइडेंटिटी किसी को पता नहीं है, बिल्कुल सीक्रेट है ये, इसके बारे में आपका क्या सोच है?
0: मेरे को उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है।
1: किसी ने क्या आपको ब्रीफ किया है कि क्या हुआ था उस कॉकपिट में? किसी सिक्योरिटी एजेंसी ने आपको क्या ब्रीफ किया है?
0: नहीं, मैं ब्रीफ करूंगा मेरे बेटे के साथ ही, जो भी समझना है पूरा उनके साथ ही।
1: जो ग्लोबल मीडिया में आपके बेटे के बहादुरी को लेकर जो मीडिया स्टोरीज चल रहे हैं उसको लेकर आप क्या बोलेंगे भूपेंद्र जी? क्योंकि जैसे मैंने बताया इस इंटरव्यू के पहले, स्मिथ मच्छर जो है एक इंडियन पायलट नहीं है, अब एक वो ग्लोबल एक बहादुरी के एक आइकॉन है ऑलमोस्ट, क्या ये सही है? ही इज अ ग्लोबल सिटीजन नाउ सर।
0: ऊपर वाले की मेहरबानी है।
1: क्या आप सिटीजन्स को कुछ बोलना चाहेंगे एज द फादर ऑफ स्मिथ मच्छर, द मोस्ट फेमस इंडियन पायलट ऑफ आर जेनरेशन? सर उन्होंने जो किया है इंडिया को प्राउड किया है, क्या सिटीजन्स को कुछ बताएंगे? अब बहुत सारे यंग जेन जी भी देख

0: Akhtar says Smith deserves the Mahavir Chakra. The message is clear. Smith's courage has sparked nationwide call for recognition. And the Prime Minister himself has praised Captain Smith's bravery. The Prime Minister spoke with Smith Machar today, praising him for averting the catastrophe after the co-pilot stabbed him in the cockpit and tried to crash the Fly Dubai plane. Speaking to the Prime Minister, Captain Smith from his hospital bed shared his experience and said that he didn't care about his life, but cared for the lives of 170 people on the plane. This was a very moving conversation. He got very emotional as well. In fact, Smith Machar telling the Prime Minister that he even recited the Hanuman Chalisa during that incident that gave him courage to fight. Prime Minister Narendra Modi praised him for his extraordinary courage and said that the whole nation is proud of you.
1: Smith, namaste.
2: Namaste, sir.
1: कैसे हो अभी तबीयत कैसी है?
2: सर सब ठीक है सर सब ठीक है.
1: देखिए पूरा देश आपके लिए प्रार्थना कर रहा है. महामृत्युंजय का जाप सब दूर चल रहे हैं.
2: yes,
1: आपकी हिम्मत ने, आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने यानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने. yes, और इतने लोगों की जान बचाई और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं हैं, जान बचाने वाले लोग हैं. और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय भी आपने अपनी जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की. और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता. कल मुझे भूपेंद्र भाई से बात करने का मौका मिला, गीता बहन से बात की, सोनल बहन से बात की, जावा और बॉबी से तो नहीं कर पाया, लेकिन मैंने गीता बहन को कहा था कि आपका नाम गीता है लेकिन आपने कृष्ण की गीता को पूरी तरह पचा दिया और आपने स्मित को उस साक्षात गीता के संस्कारों से उसका जीवन बनाया. स्मित, अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा.
2: सर, मेरे लिए मैं सर से भी बोल रहा था, आप मेरे सबसे बड़े एक्टर्स और आप मेरे को ऐसे कॉल करके मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं. मुझे बहुत बहुत बहुत गर्व फील हो रहा है. मैं उस मोमेंट में सर, मैं अपनी लाइफ के लिए लड़ रहा था, बट एक ऐसा मोमेंट था जब मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं गिर चुका था, मेरे को इतने गांव लग चुके थे कि मैं बच चुका था नीचे. एंड उस टाइम पे मैं बोला अगर मैं नहीं उठूंगा, मैं 17 साल से जहाज उड़ा रहा हूँ, मैं पिछले 11 साल से कैप्टन हूँ और मुझे पता चलता है यहाँ बंद करके भी कि जहाज में क्या हो रहा है. जब मैं नीचे गिरा हुआ था तब मुझे एहसास हो रहा था कि एयरक्राफ्ट नीचे जा रहा है और मुझे बिल्कुल पता था कि ये एक लास्ट पुश होगा स्मित कर दे, दरवाजा बस वही है. और तभी भी मैं मार खा ही रहा था, बस वो खोल दिया सर, बाकी सब आ गए और बाकी सब की भी उतनी उसमें रोल था. बट जान के मैं सर को बोला था कि मैं अपनी जान के हिसाब से कर रहा था, बट एट द सेम टाइम मुझे इतना भी पता था कि मैं उन सबको नहीं मत दे सकता. बस उसके बाद मेरे को लोगों ने यहाँ पे भी सऊदी में भी यहाँ पे तो बन के इससे अच्छी केयर और इससे अच्छा मेडिकल अटेंशन नहीं मिल सकता था. एंड मैं सर मैं एक सिर्फ पॉजिटिविटी में मैं जब भी मेरे को दर्द होता है मुझे एक ही चीज आती अजीब में सिर्फ हनुमान चालीसा बोलता हूँ। उस टाइम पे भी मैं सिर्फ हनुमान चालीसा ही बोल रहा था। अब मुझे पता है कि वो भगवान की मेरे को बचाए। बस आपका एक कॉल आ गया, मैं तो बहुत बहुत गर्व होता है। अब भी मैं तो हो रहा है मेरे पे गर्व, अब तक नहीं हो रहा था। अब हो गया सर, सॉरी क्या आपके सामने लौट रहा हूँ सर।
1: स्मित, अगर मेरे सामने आप भावुक नहीं हो गए तो कहां होंगे।
2: सही है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी आपसे बात होगी, कभी नहीं सोचा।
1: आपने इतना बड़ा काम किया है भाई कि हर देशवासी, आज दुनिया के लोग भी आपको देखने, आपसे बात करने के लिए बहुत ही आतुर है। और ये बात आपने जो बताई है हनुमान चालीसा की, इसके लिए तो मैं गीता बहन को प्रणाम करूंगा कि आपको ऐसे संस्कार दिए। भूपेंद्र भाई को प्रणाम करूंगा कोना नहीं। और मैं आपको बताऊं, उसमें कम मेरी जब सोनल बहन से बात हुई तो मैं सरप्राइज था। इतनी स्वस्थता से वो बात कर रही थी, इतनी हिम्मत से बात कर रही थी। सचमुच मैंने कल्पना नहीं की थी कि सोनल बहन ऐसी परिस्थिति में इतनी स्वस्थता से बात कर सकती है। तो मैं समझता हूं कि आपने एक परिवार के नाते आपने सचमुच में पूरे देश का नाम रोशन किया है।
2: सर मैं रोज सुबह जब पूजा करता हूँ, मेरा 2 साल का बेटा मेरी गोद में बैठ के मेरे साथ हनुमान चालीसा मैं उसको सुनाता हूँ कि जो मुझे बोला गया है। क्योंकि आज हम लोग देश से दूर है, बट हमारी संस्कृति से दूर नहीं होनी चाहिए।
1: सही बात है।
2: और अभी तो यहाँ पे तो वो भी नहीं लगता कि हम देश से दूर हैं। ये यहाँ पे लोग बहुत बहुत बहुत प्यार से और बहुत ध्यान से हमें रखते हैं।
1: आपको पता नहीं होगा, लोग सावर कुंडला में भी, वढ़वान में भी, सब दूर एक ऐसे भावुक वातावरण बना दिया है। और पूरे हिंदुस्तान में तो है ही है। कल सभी मंदिरों में पूजा प्रार्थना आरती हुई, सभी तीर्थ क्षेत्रों में आरती हुई, और सब आपके दीर्घायु के लिए और उत्तम स्वास्थ्य के लिए सब प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए आप तो जल्दी स्वस्थ होने ही वाले हैं। भारत आपका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक है। आप शरीर में कोई तकलीफ जो भी मैं समझ सकता हूँ, आप वीर पुरुष हैं तो आपने घावों को तो झेलना शायद आपके लिए बहुत आसान कर लिया है अपने।
2: नहीं सर, मैं उस गांव को गांव की तरह नहीं सोच रहा हूँ, बिकॉज वो मेरे को और भी फिर उतना मुश्किल होगा मेरा रिकवरी। मैं इसको एक जर्नी की तरह सोच रहा हूँ जो स्लोली स्लोली होने वाला है, एंड वो टाइम लेके होगा, बट मैं बहुत बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि ये रिकवरी होगा और मैं एकदम ही स्वस्थ हो जाऊंगा।
1: मैं सऊदी सरकार का भी और यूएई सरकार का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आपकी बहुत केयर की। मैं उनका भी आभारी हूं। स्मित, आपको जब भी जरूरत लगे मैं एक फोन कॉल अवे हूं। लेकिन आपने सचमुच में, वरना ये कल मैं देख रहा था लोगों ने सोशल मीडिया में जो अपनी भावनाएं व्यक्त की, और लोगों ने कहा अगर ऐसा न होता तो पता नहीं हिंदुस्तान पर क्या क्या बीतती, भारत के सभी पायलटों पर क्या बीतती, भारत के सभी पायलटों को किस प्रकार से देखा जाता। आपने इन सबको बचा लिया है, यानी बहुत बड़ा काम आपने किया है। जब मिलूंगा तब अंदर की बातें तो बाद में सुनूंगा मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मोबाइल पर ऐसी बातें करूं मैं आपसे। और आप भी पूरी तरह स्वस्थ हो जाइए, और अब बिल्कुल पूरा देश आपके साथ है। मैं ज्यादा आपको परेशान करना नहीं चाहता हूं। मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं। आज गांधी जयंती है, अहिंसा क्या होती है वो आपने जी करके दिखाया है। चलिए, जय श्री कृष्ण। मेरा थोड़ी गुजराती में बात कर ली बॉबी, अने जेवा गुजराती बोले छे नथी बोलता? गुजराती बोले छे। अच्छा, તો બાળકો મળવાનું થઈ ગયું? બાળકોને ડોક્ટર એલાવ કર્યા મળવા માટે?
2: મારી મોટી દીકરી આવી હતી પણ આ બધું જોઈ નહીં, ડરી ગઈ।
1: अच्छा अच्छा
2: ये थोड़ी इमारत ही बहुत क्लोज है।
1: हाँ
2: हाँ हमारा नाना सर बेवरस पहुँचे हैं ना तेरे लोग
1: पे। नहीं हमारा तो छात्र कुछ जो ही है पर हम सोनल बहन खूब हिम्मत बढ़ा चुके हैं।
2: यस
1: हाँ
2: यस सर
1: काले एटलीस्ट स्वस्थता से हमारे जोड़ बात करी नहीं तो मैं तो अनुभव कर रहा हूँ कि अभी परिस्थिति में कोई बात ना ने फरियाद तो नामो निशान ने भूपेंद्र भाई या गीता बहन जोड़े गई काले मुंबई एयरपोर्ट पर बात करी मैं तो पर फरियाद एक एक नामो निशान नहीं बस हमने एक ही बात थी इन्हें भगवान साबित कर से
2: बस बस एक महिमा चले
1: चलो जय श्री कृष्ण अने खूब जल्दी साझा थाओ पछी आपने मळीए छे।
2: यस
1: गॉड ब्लेस यू
0: All right, so Captain Smith Macha there speaking to the Prime Minister from his hospital bed. Now, NDTV also spoke to Captain Smith's in-laws. Listen into what they had to say about the bravery of their son-in-law.
3: कैप्टन स्मिथ मच्छर ने जो किया वो देश के लिए एक गौरवान्वित करने वाला क्षण है। ऐसे में उनका परिवार उनके साथ इस समय दुबई में मौजूद है और कैप्टन स्मिथ का फिलहाल इलाज चल रहा है। आज उन्होंने प्रधानमंत्री से वीडियो कॉल पर बात भी की है। इसी बीच ये कैप्टन स्मिथ और उनकी पत्नी सोनल के परिवार के लिए कितना बड़ा क्षण है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सोनल के पिता जयसुख जोगी और सोनल की माता जी हैं। सर सबसे पहले आपसे जानेंगे कि जब ये बात सामने आई कि एक फ्लाइट क्रैश होने वाली थी लेकिन एक भारतीय पायलट ने उस क्रैश को होते होते बचा लिया और आपको पता चला कि वो आपके सन इन लॉ कैप्टन स्मिथ थे, उस समय आपको कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ था?
4: वो सुनने के बाद हम लोग को एकदम से शॉट लगा और ऐसा लगा कि क्या हो गया है। और तभी हम लोग को मालूम पड़ा सर, 5 बजे हम लोग को मालूम पड़ा, मेरा एक दोस्त का फ़ोन आया कि भाई आपका ये सब हुआ है ऐसा करके। तो फिर हम लोग सोचते रहे कि ऐसा हो क्या, फिर उपेंद्र भाई को हमने फ़ोन किया अभी भाई को कि भाई क्या हो गया है ज़रा, तो बात सही है कि गलत, तो कहा हाँ बात सही है, ये हो चुका है और हम लोग सब अपसेट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है, अभी सब हम लोग बातचीत कर रहे हैं क्या हो रहा है। तो हम लोग को बहुत शॉट लगा, बाद में धीरे धीरे सब समाचार आने लगा तो ज़रा रिलैक्स होने लगे, मगर इतना टेंशन रहा रात भर नींद भी नहीं आई कि अभी क्या होगा, अभी क्या होगा ऐसा। उस फिर की तब वो बात करने को भी नहीं दे रहे थे उनके साथ, तो हम लोग को बहुत टेंशन, मेरी लड़की भी बहुत टेंशन में थी, पूरा घर सब टेंशन में था, कहते एक बार बात हो जाए तो ठीक है। फिर नरेंद्र मोदी ने बात की सोनल से, फिर वो कुछ रिलैक्स हुआ हम लोग, और उनको नरेंद्र मोदी को भी बोला कि जरा बात करा दो हम लोग को, तो हम लोग को एक बार हो जाए। फिर उन लोगों के मिलने को गया, फिर अब मिलने के बाद घर को शांति हुआ, तब तक बहुत सब लोग टेंशन के अंदर थे।
3: अब आपको थोड़ा सुकून लग रहा है क्योंकि कैप्टन स्मिथ ने आज प्रधानमंत्री से वीडियो कॉल पे बात भी की है और सोनल ने भी जो भी बात की है उसमें कहा है कि वो चाह रही हैं कि सब सही हो जाए और कैप्टन स्मिथ भी रिकवर कर रहे हैं,
4: उसके लिए बहुत अच्छा लगा। और देख दुनिया भर से सब लोग का उसको जो तरफ से उन लोग को जो आशीर्वाद मिल रहा है वो एकदम सराहनीय से, गर्व से सीना फूल रहा है कि भाई चलो एक मेरे आदमी ने इतना साहस करके इतना लोग की जान बनाई। और मेन दूसरा बात है कि पूरा इंडिया का नाम कर लिया, नगर एक जब मोदी जी ने किया वो बात सही है कि अगर ये हौसला हो जाता तो सब लोग का गलत मैसेज आता था कि भाई ये इंडियन पायलट ने सबको मार दिया, एकदम सही बात है, एकदम आदमी ने एकदम बराबर काम किया, पूरा समाज के लिए, मुंबई के लिए, पूरा घर के लिए, हमारा कुटुंब के लिए, हम लोग को सबको गर्व है। और बहुत लोग का फ़ोन आ रहा है कि उसके लिए हम लोग को बधाई दे रहे हैं कि आपने आपका जमाई ने बहुत अच्छा सा काम किया।
3: मैम आपसे जानेंगे आज जब कैप्टन स्मिथ प्रधानमंत्री से बात कर रहे थे तो वो काफ़ी इमोशनल हो गए थे, वो रोने लग गए थे और उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ रहा था जब मैं कॉकपिट में था और मुझे सिर्फ इतना दिख रहा था कि मुझे लोगों को बचाना है और मैं अपनी ड्यूटी से पहले मेरा जो कर्तव्य बनता है वो कर रहा था। कैप्टन स्मिथ को लेकर क्योंकि आप उन्हें कैप्टन स्मिथ ने आप उन्हें अपना बेटा मानते हैं, आपके दामाद हैं वो, आप वो बताइए कि वो बिहेवियर में कैसे हैं क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि वो बिहेवियर वाइज भी उतने ही अच्छे हैं जिस तरीके से उन्होंने काम किया है।
5: बिहेवियर वाइज बहुत लगनशील है और सबका केयर करता है, खास करके मम्मी पापा का, बच्चों का, सोनल का, सबका केयर करता है। और वो इमोशनल ऐसे हो गए कि मोदी जी ने फ़ोन किया इसलिए भी इमोशनल हो गए और

0: थोड़ा ये अब कठिन परिस्थिति में से बाहर आए हैं, भाई बच्चों से मिले नहीं हैं, तो वो थोड़े ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं कल।
1: आपने आपने बात की होगी सोनल से, कैप्टन स्मिथ से बात की आपने, क्या बात हुई उनसे?
0: खास कोई बात नहीं हुई, बस स्मिथ की तबीयत रिकवर हो रही है ऐसी बात हुई, और ये न्यूज़ में सब सुनते हैं कि सब लोग उसके जल्दी तबीयत रिकवर हो जाने के लिए प्रेयर करते हैं। सोमनाथ में वो महामृत्युंजय जप किया, कोई हीलिंग वाला ग्रुप है वो हीलिंग भेज रहे हैं, मतलब पूरा इंडिया उसकी तरफ गर्व करता है और हमदर्दी भी दिखा रहा है, इसलिए अच्छा लगता है। और प्राउड तो होगा ही होगा, कुछ छोटा काम नहीं किया है, बहुत बड़ा काम किया है, तो प्राउड तो बहुत है हमको। बस एक बार स्मिथ को मिल लेना हमको तो और ज़्यादा खुशी होगी।
1: कब कब मिली, कब थी आप उनसे आखिरी बार?
0: आखिरी बार याद करना, 3-4 महीना तो हो गया होगा।
1: अच्छा,
0: और वो दुबई से एक दो दिन के लिए आते हैं ना, तो मिलने का कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं भी होता है।
1: ओके, अब आप चाहेंगे कि वो जल्दी भारत आए और आप लोग से मिले?
0: नहीं, हम पहले तो अभी उसका तबीयत एकदम रिकवर होने दो, हम लोग दुबई जाके उसको एक बार मिल लेंगे।
1: क्या बात है सर, जैसा
0: तो आएंगे और मिलेंगे जरूर, हमारे घर पे भी आएंगे।
1: भारत आएंगे और मिलेंगे। सर आपसे जानेंगे कि जब प्रधानमंत्री ने कहा कि आप हमारे देश के एक हीरो हैं, और ये जो उन्होंने काम किया है, ये सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, इसराइल के भी जो प्रधानमंत्री हैं वो भी इनकी तारीफ कर रहे थे, तो आपको लगता है कि ये एक ऐसा क्षण है जिसको आगे चलकर इतिहास में लिखा जाएगा कि एक पायलट ने यदि जिस जो सूझबूझ उन्होंने दिखाई है वो 1 से 1.5 मिनट में वो हमेशा के लिए सुनहरे अक्षरों में लिख दिया जाएगा?
2: सही बात, एकदम सही बात है, सब लोग जो बता रहे हैं एकदम सही। एक क्षण था सब लोग का, सब लोग और 5 आदमी ने मदद किया उसने, वो भी सब सुनहरे अक्षर में जाएगा, क्योंकि ये चमत्कार ही है एक, समझ लो ऐसा कभी हो नहीं सकता है। बहुत लोग का वीडियो मैंने देखा, सब लोग यही बोले एक चमत्कार है, जो बाकी का एक स्मिथ का बहुत बड़ा था को दरवाज़ा खोल दिया, वो दरवाज़ा खोल दिया और बाकी का लोग ने जो जो एक एक ने सब काम किया, एक एक संभाल के पूरा सब लोग का जिंदगी बचा, एक समझ लो ऊपर वाले ने सबको बचा ऐसे समझ लो, बाकी अब पॉसिबल ही नहीं था ऐसा। जो आदमी जो प्लम्बिंग का आदमी काम करता है, वो आदमी ने स्टेयरिंग पर करके सही कर दिया, वो भी स्टेबल कर दिया, वो एक दो 3 मिनट का मामला, 3 मिनट में सब खत्म हो जाता था, मगर सब ऊपर वाले की दया से सब बच गए। प्राउड होता है कि सब अच्छे से हो गया, सब ट्रंप ने भी बताया, नेताओं ने बताया, मोदी जी ने बताया, सब लोग ने तारीफ किया, तो हम लोग को अच्छा लगता है कि भाई हमारा जमाई ने इतना सब अच्छा सा काम करके दिया और सब लोग इसके लिए खुश है। बहुत लोग का बहुत बोलेगा तो बहुत लोग का उसका लिए अभिनंदन आ रहा है। हम लोग कुछ कुछ स्मिथ से हम लोग की बात नहीं हुई है, खाली वीडियो देखा तभी उनको हम लोग देखा, बाकी देखा नहीं था। फैमिली से बात हुई उनके में वेवाई से, और सोनल से तभी बात हुआ था, तभी हम लोग खाली बात हुआ था, देखा नहीं था, देखा तो वीडियो में हमने पहली बार देखा। एकदम कवर हो रहे हैं, बात अच्छे से कर रहे थे, हमको भी दिल को तसल्ली हुई।
1: तो आप यहाँ पर सोनल के मम्मी और पापा को सुन रहे थे, इनका कहना है कि जो कुछ कैप्टन स्मिथ ने किया है वो आगे चलकर इतिहास में लिखा जाएगा, और वही दूसरी ओर फिलहाल कैप्टन स्मिथ रिकवर कर रहे हैं, और आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात भी की और अपने हेल्थ अपडेट को लेकर जानकारी भी साझा की। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ सुजाता द्विवेदी, NDTV इंडिया के लिए।
3: All right, Sujata there speaking with Captain Smith's in-laws. Now, in the midst of the life and death crisis at 30,000 feet, Captain Smith Machar says he turned to faith. He revealed this during his conversation today with Prime Minister Narendra Modi, badly injured, convinced that the aircraft could be going down. Smith says he recited the Hanuman Chalisa, saying that it is a prayer he turns to whenever he faces a crisis, and this time as he fought to save everyone on board, he says he kept reciting it. Smith also told Prime Minister Modi that he recites the Hanuman Chalisa with his 2-year-old son every day. For him, it was more than a prayer. It was a source of courage and faith in what he believed could be his last moments.
4: And myself, I'm just my ek positive that I jab bhi mujhe ko dance hota hai, mujhe ek cheez aati hai, main sirf Hanuman Chalisa bolta hu. Us time pe bhi main sirf Hanuman Chalisa hi bol raha tha. अब मुझे पता है कि वो भगवान की मेरे को बचाए। सर मैं रोज सुबह जब पूजा करता हूँ, मेरा 2 साल का बेटा मेरे गोद में बैठ के मेरे साथ हनुमान चालीसा मैं उसको सुनाता हूँ कि जो मुझे बोला गया है क्योंकि आज हम लोग देश से दूर है, बट हमारी संस्कृति से दूर नहीं होना चाहिए।
2: सही बात है।
4: और अभी तो यहाँ पे तो वो भी नहीं लगता कि हम देश से दूर हैं। ये यहाँ पे लोग बहुत बहुत बहुत प्यार से और बहुत ध्यान से हमें रखते हैं।
2: आपको पता नहीं होगा, लोग सावरकुंडला में भी, वढ़वान में भी, सब दूर एक ऐसे भावुक वातावरण बना दिया है, और पूरे हिंदुस्तान में तो है ही है। कल सभी मंदिरों में पूजा प्रार्थना आरती हुई, सभी तीर्थ क्षेत्रों में आरती हुई, और सब आपके दीर्घायु के लिए और उत्तम स्वास्थ्य के लिए सब प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए आप तो जल्दी स्वस्थ होने ही वाले हैं। भारत आपका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक है।
3: Right, Captain Smith, they're telling the Prime Minister how he turned to faith, how he was reciting the Hanuman Chalisa, thinking this could be his last moments. Well, with that, we'll slip into a short break. More news and updates on the other side. Yeah.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: As CJP takes to the streets in Mumbai, in Delhi, Aam Aadmi Party leaders are detained in protest against the Chief Election Commissioner. Is gold rush for India at the Asian Games in Japan? Sujit Kalkal wins wrestling gold. Lavlina Borgohain for boxing. India's gold medal tally now up to 12.
1: He hit me like
2: no.
1: So many times.
0: Well, Prime Minister Modi has spoken with Braveheart Smith Machar and praised him for averting catastrophe after the co-pilot stabbed him and tried to crash the flight Dubai plane. Speaking to Prime Minister Modi, Captain Smith shared his experience and said that he did not care about his life but cared for the lives of 170 people on the plane. He even said that he was reciting Hanuman Chalisa during the incident that gave him courage to fight. Prime Minister Modi praised him for his extraordinary courage and said that whole nation is proud of you.
3: Smith, namaste.
4: Namaste, sir.
3: कैसे हो अभी तबीयत कैसी है
4: सर सब ठीक है सर सब ठीक
3: देखिए पूरा देश आपके लिए प्रार्थना कर रहा है महामृत्युंजय का जाप सब दूर चल रहे हैं
4: yes,
3: आपकी हिम्मत ने आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने एंड फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं है जान बचाने वाले लोग और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे उस समय भी आपने अपनी जीवन की परवाह नहीं की सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की और सबसे बड़ी बात 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता कल मुझे भूपेंद्र भाई से बात करने का मौका मिला गीता बहन से बात की सोनल बहन से बात की जावा और बॉबी से तो नहीं कर पाया लेकिन मैंने गीता बहन को कहा था कि आपका नाम गीता है लेकिन आपने कृष्ण की गीता को पूरी तरह पचा दिया और आपने स्मिथ को उस साक्षात गीता के संस्कारों से उसका जीवन बनाया स्मिथ अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा
4: अपनी लाइफ के लिए लड़ रहा था मैं एक ऐसा मोमेंट था जब मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मैं गिर चुका था मेरे को इतने गांव लग चुके थे कि मैं गिर चुका था नीचे एंड उस टाइम पे मैं बोला अगर मैं नहीं उठूंगा तो मैं एंजर में 17 साल से ज्यादा दौड़ा था मैं पिछले 11 साल से कैप्टन हूँ और मुझे पता चलता है आंख बंद करके भी कि जहाज में क्या हो रहा है जब मैं नीचे गिरा हुआ था तब मुझे ऐसा सो रहा था कि एयरक्राफ्ट नीचे जा रहा है और मुझे बिल्कुल पता था कि ये एक लास्ट पुश अगर स्मिथ कर दे दरवाजा बस वही है और तभी भी मैं मार खा ही रहा था

0: वो खोल ले नजर बाकी सब आ गए और बाकी सब की भी उतनी उतनी उसमें उसमें रोल था। जान के मैं सब तो बोल रहा था कि मैं अपनी जान के हिसाब से कर रहा था, एट द सेम टाइम मुझे इतना भी पता था कि मैं उन सबको नहीं मत दे सकता। बस उसके बाद मेरे को लोगों ने यहाँ पे भी सऊदी में भी यहाँ पे तो बन के इससे अच्छी केयर और इससे अच्छा मेडिकल अटेंशन नहीं मिल सकता था। एंड मैं सर आई एम जस्ट मैं एक सिर्फ पॉजिटिविटी मैं जब भी मेरे को दर्द होता है मुझे एक ही चीज आती है, मैं सिर्फ हनुमान चालीसा बोलता हूँ। उस टाइम पे भी मैं सिर्फ हनुमान चालीसा ही बोल रहा था और मुझे पता है कि वो भगवान की मेरे को बचा है। बस आपका एक कॉल आ गया मेरे को बहुत बहुत गर्व होता है और अब भी मेरे को हो रहा है, मेरे पे गर्व अब तक नहीं हो रहा था, अब हो गया सर। सॉरी क्या आपके सामने रो रहा हूँ सर।
1: सुमित अगर मेरे सामने आप भावुक नहीं होंगे तो कहां होंगे।
0: चाहिए मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी आपसे बात होगी, कभी नहीं सोचा।
1: आपने इतना बड़ा काम किया है भाई कि हर देशवासी आज दुनिया के लोग भी आपको देखने आपसे बात करने के लिए बहुत ही आतुर है। और ये बात आपने जो बताई है हनुमान चालीसा की, इसके लिए तो मैं गीता बहन को प्रणाम करूंगा कि आपको ऐसे संस्कार दिए। भूपेंद्र भाई को प्रणाम करूंगा कोना नहीं। और मैं आपको बताऊं उसमें कम मेरी जब सोनल बहन से बात हुई तो मैं सरप्राइज था, इतनी स्वस्थता से वो बात कर रही थी, इतनी हिम्मत से बात कर रही थी। सचमुच मैंने कल्पना नहीं की थी कि सोनल बहन ऐसी परिस्थिति में इतनी स्वस्थता से बात कर सकती है। तो मैं समझता हूं कि आपने एक परिवार के नाते आपने सचमुच में पूरे देश का नाम रोशन किया है।
0: सर मैं रोज सुबह जब पूजा करता हूँ मेरा 2 साल का बेटा मेरे गोद में बैठ के मेरे साथ हनुमान चालीसा मैं उसको सुनाता हूँ कि जो मुझे बोला गया है, क्योंकि आज हम लोग देश से दूर है बट हमारी संस्कृति से दूर नहीं होनी चाहिए।
1: सही बात
0: है। अभी तो यहाँ पे तो वो भी नहीं लगता कि हम देश से दूर हैं। ये यहाँ पे लोग बहुत बहुत बहुत प्यार से और बहुत ध्यान से हमें रखते हैं।
1: आपको पता नहीं होगा लोग सावर कुंडला में भी वढ़वाड़ में भी सब दूर एक ऐसे भावुक वातावरण बना दिया है और पूरे हिंदुस्तान में तो है ही है। कल सभी मंदिरों में पूजा प्रार्थना आरती हुई, सभी तीर्थ क्षेत्रों में आरती हुई और सब आपके दीर्घायु के लिए और उत्तम स्वास्थ्य के लिए सब प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए आप तो जल्दी स्वस्थ होने ही वाले हैं। भारत आपका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक है। आप शरीर में कोई तकलीफ जो भी मैं समझ सकता हूँ, आप वीर पुरुष हैं तो आपने घावों को तो झेलना शायद आपके लिए बहुत आसान कर लिया है आपने।
0: नहीं सर मैं उस गांव को गांव की तरह नहीं सोच रहा हूँ बिकॉज वो मेरे को और भी फिर उतना मुश्किल होगा मेरा रिकवरी। मैं उसको एक जर्नी की तरह सोच रहा हूँ जो स्लोली स्लोली होने वाला है एंड वो टाइम लेके होगा बट मैं बहुत बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि ये रिकवरी होगा और मैं एकदम ही स्वस्थ हो जाऊंगा।
1: मैं सऊदी सरकार का भी और यूएई सरकार का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ तो उन्होंने आपकी बहुत केयर की, मैं उनका भी आभारी हूँ। स्मित आपको जब भी जरूरत लगे मैं एक फोन कॉल अवे हूँ। लेकिन आपने सचमुच में वरना ये कल मैं देख रहा था लोगों ने सोशल मीडिया में जो अपनी भावनाएं व्यक्त की और लोगों ने कहा अगर ऐसा न होता तो पता नहीं हिंदुस्तान पर क्या क्या बीतती, भारत के सभी पायलटों पर क्या बीतती, भारत के सभी पायलटों को किस प्रकार से देखा जाता। आपने इन सबको बचा लिया है, यानी बहुत बड़ा काम आपने किया है। जब मिलूंगा तब अंदर की बातें तो बाद में सुनूंगा मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मोबाइल पर ऐसी बातें करूं मैं आपसे। और आप भी पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी।

0: Abi çok he.
1: Well, Captain Smith Machar's father speaks exclusively to NDTV. Bhupendra Machar, father of Captain Smith Machar, says his son's courage came from a determination to ensure that no passenger lost their life during the Fly Dubai cockpit attack. As Smith recovers in a military hospital in Abu Dhabi, his family credits faith, resilience, and a deep sense of duty for the actions that turned him into a global symbol of courage. Listen in to this exclusive conversation with NDTV's managing editor, Shivarur.
2: Bhupendra Bhai Machar, he is the father of hero pilot Smith Machar, whose son has made the entire country proud and is now a global icon of courage. Bhupendra Bhai, NDTV par aapka swagat hai. आपके बेटे पर पूरा देश का गर्व है. क्या आप बता सकते हैं भूपेंद्र भाई, स्मिथ अभी कैसा है, उनकी तबीयत कैसी है? उनकी अभी जो वीडियो सामने आया है प्राइम मिनिस्टर के साथ बातचीत करते हुए, साफ नज़र दिखाई देता है कि वो ठीक है. आप एक अपडेट दीजिए कि वो कैसे हैं, आपका बेटा कैसा है अभी भूपेंद्र भाई.
3: जैसा आपने देखा वीडियो में, वही चीज मैंने भी देखी आज, क्योंकि मैं आज उनको कल में मिला था 10 मिनट के लिए. तभी वो थोड़ा पूरे पूरे कंट्रोल में नहीं था. थोड़ी सी बात करके फिर डॉक्टरों ने भी बोला कि आज अपलिफ्ट हुआ है, तो अपन शांति से बात करें तो बेटर है. तो आज हम लोग वहां पहुंच रहे हैं थोड़े टाइम में, हम ऑन द वे ही है. और जितना आपने देखा नरेंद्र मोदी के साथ बात करते हुए, मेरे को भी बहुत खुशी हुई कि आज वो अच्छे फेज में है और अच्छी बात कर रहा है. तो भगवान का बहुत बड़ा शुक्र है.
2: स्मिथ ने आपको क्या बताया जब आप मिले उनसे भूपेंद्र भाई, आपको क्या बताया कल?
3: एक्चुअली कल हम लोग ने एक बात रखी थी कि इस इंसिडेंट के बारे में आज कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि वो अभी भी उतने ही वो फेज में था. तो मैंने सोचा कि आज स्मिथ अपन एक खाली भगवान की बहुत मेहरबानी समझ के आज हम लोग गले मिलते हैं, कोई उसकी बात नहीं करेंगे. आज बहुत सब लोग खुश होकर बात कर 10 मिनट बैठेंगे हम लोग तेरे साथ. तो कल की हमारी कोई भी बात में हमने उसको कोई वो चीज को याद नहीं दिलाया. मतलब वो बात ही मत छेड़ना, अभी अपन शांति से कल बात करेंगे.
2: भूपेंद्र भाई, स्मिथ के जख्म कितना सीरियस हैं? इन तस्वीरों में दिखाई देता है कि वो हॉस्पिटल में है, वो ट्रीटमेंट जारी है. डॉक्टर्स का क्या कहना है भूपेंद्र भाई?
3: डॉक्टर्स ने बोला है कि समय लगेगा ये जख्म को क्लियर करने में, और सर पे भी लगा है, दोनों हाथ से भी लगा है, और सर पे कुछ ऑपरेट भी हुआ है, स्टिचेस भी आए हैं काफी. तो अभी एकदम डिटेल में मैं आज नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जख्म है और शायद अच्छा टाइम जाएगा इसको क्लियर होने में.
2: भूपेंद्र भाई, आप स्मिथ के पिताजी हैं, आप और स्मिथ के माँ, क्या महसूस हुआ जब आपने सुना कि ये हादसा हुआ था आपके बेटे के साथ? आपका क्या रिएक्शन था, क्या महसूस किया आपने?
3: जैसे जैसे हर माँ बाप का हो, सबसे पहले एक ही विचार खराब आ जाता है, और तुरंत हमने हमारे भगवान के पास दिया किया और बोला भगवान कुछ भी हो जावे, खराब न्यूज नहीं आना चाहिए, आप बचा लेंगे.
2: लेकिन आप में विश्वास था कि आपका बेटा स्मिथ ऐसे करेगा, ऐसे ही बहादुरी दिखाएगा इस हादसे में, आप में विश्वास था?
3: देखो देखो, ये इस चीज की कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, जैसे आप भी वो चीज समझते हो, लेकिन एक ऊपर वाले की मेहरबानी रहेगी, कोई शक्ति उसके साथ आ गई और उसने ये जो प्रॉब्लम आया उसको सॉल्व किया, अपना पूरा सबके लिए गर्व की बात हो गई. और मैं भी बोलूंगा कि इसमें ज्यादातर भगवान की मेहरबानी है, हम लोग ज्यादा धर्मी थे पूरे घर वाले.
2: जी, और भूपेंद्र भाई, आपकी बेटे की बहादुरी भी थी, आपने डिटेल में देखा है कि उन्होंने क्या किया कॉकपिट में. हमला के बाद उन्होंने जख्मी होते हुए कॉकपिट के दरवाज़ा को खुला रखा. डिटेल में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है आपको पता है कि क्या हुआ, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये एक प्रेजेंस ऑफ माइंड थी, जैसे आपने बताया कि इसका कोई ट्रेनिंग नहीं होता है सर.
3: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसका एक शब्द बोल दूं मैं, के जैसे वो गिर गया जैसे नीचे कॉकपिट में, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि अभी जो करना है वो अभी कर ले, अदरवाइज कुछ नहीं होएगा. तो फिर उसके मन में एक विचार आया कि अभी फाइट करना ही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है दूसरा. और उस

0: काफी देर तक हमें उसको रोका है, यानी कि डिफेंसिव हॉकी, हमें डिफेंस काफी मजबूत दिख रही है। सो इससे हम सब काफी खुश हैं, काफी गर्व की बात है हमारे लिए। हमारे महिलाएं, अक्सर हम पुरुष से काफी उम्मीद करते हैं, महिलाएं से उससे सबसे उम्मीद मेरे ख्याल से बहुत इंडियन स्पोर्ट्स में हम देख ही रहे हैं, और टीम स्पोर्ट्स में एक ही टीम है जो कि महिलाएं की टीम है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और मैं सारे टीम मेंबर्स को, जितने भी कैप्टन कोचेस सबको, मैं हमारे हॉकी इंडिया की ओर से मैं मुबारक देना चाहता हूँ, कांग्रेस बताना चाहता हूँ, क्योंकि सब ने काफ़ी मेहनत किया है। चार पांच महीनों से काफ़ी मेहनत कर रहे थे। मुझे याद है कि कई सारे प्लेयर्स इंजरी हुए थे। सविता मेरे ख्याल से 6 महीना पहले काफ़ी अपसेट थी। हमारे दीपिका इंजोर्ड थे, मेरे ख्याल 13-14 प्लेयर इंजोर्ड थे, वहाँ से रिकवरी होके 6-7 महीनों में रिकवरी होके अभी टीम हम लोग एशियन गेम्स चैंपियन हुए हैं। तो रियली मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, कांग्रेस देना चाहूँगा, जो मेहनत किए हैं और उसका मेहनत का फल आज हमें जो हिस्ट्री क्रिएट किया हुआ है, 44 ईयर के बाद हम लोगों ने गोल्ड मेडल जीते हैं।
1: 10 मिनट में एक गोल हो गया, उसके बाद इतना देर।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 10 मिनट एक गोल हम लोगों ने दागे, उसके बाद बिल्कुल आप 15 मिनट्स हम रोक के रखे हैं। सो इसका मतलब टीम का जो फिटनेस के कहूँगा या टेक्निकली भी जो डिफेंसिंग हॉकी जो दिखाए हुए हैं वो शानदार। सविता ने एक्सलेंट स्ट्रोक रोका। सो सविता ने भी एक टीम में बीच में जान डाल दी। सो सब ने बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म किए हैं और हम वेट कर रहे हैं, और हॉकी इंडिया को ओर से जो जितने भी खिलाड़ी हैं उनको हम 10-10 लाख देंगे, और जो कोच है और सपोर्टिंग स्टाफ हैं उनको 5-5 लाख हम देंगे, और हम स्वागत करेंगे, आने से हम सुंदर स्वागत करेंगे।
1: तो बाकी कौन कौन सा प्लेयर को ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छा रहा?
0: इसमें सभी खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस, दोनों गोलकीपर का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, और डिफेंस में फॉरवर्ड में भी सभी खिलाड़ी हमारे बहुत शानदार तरीके से, सबका जितने भी खिलाड़ी हैं सबका परफॉर्मेंस शानदार रहा है। टीम एक होकर खेले हैं और उसका रिजल्ट आज हम सामने देख रहे हैं।
1: तो अभी लोग ओलंपिक के लिए
0: क्वालीफाई? हाँ हाँ, अभी इम्पोर्टेंट बात कि जो हमारे महिलाएं टीम है हॉकी के, उन्होंने ओलंपिक्स डायरेक्ट क्वालिफाई कर दिए, ये भी काफी इम्पोर्टेंट।
2: Dilip Tirki talking, of course, with a lot of pride with what the women have done, and the men potentially tomorrow what they're going to be doing against Malaysia. But right now we've got Mr. Mir Ranjan Negi, former coach of the Indian women's hockey team. Mr. Negi, your first thoughts on the performance of the Indian girls in Japan, and of course their back to the walls performance to win the gold.
3: Absolutely, it is a very red letter day for Indian hockey, especially Indian women hockey. The way we were playing for the last couple of months, it was there in the pipeline. The win was there. We were all waiting for that day. And today, after 44 years, when we finally got the gold medal, we were all shouting here. We were all crying. And today is really the chak de moment for Indian women hockey team.
2: Absolutely, chakte moment indeed. In fact, just take us through your thoughts, because you obviously saw the match in close detail. Only one goal in it, and you know, we've seen of course of late, especially the way the Indian women started, they were scoring goals for fun earlier on in the tournament, but today it was all about their defensive solidity, wasn't it?
3: Yes, it was a strategical move by the coaching department, and the way we were scoring goals, our forward line was really putting a lot of pressure, and they were doing very well. But today was a very different game, finals game, and we had to be very cautious not to take in any goal. And then Savita Punia, she stopped that penalty stroke. For a moment, the heartbeat stopped. And when she really stopped the penalty stroke, we were knowing that the lady's luck is with us. And then that goal And I think overall, in this entire tournament, both the men and women hockey have completely dominated the opponent.
2: That they have, and let's hope the men can continue this domination in the final tomorrow against Malaysia, which is of course in the afternoon here in India. Mr. Negi, thank you so much for speaking to NDTV. Of course, we're going to be keeping a very, very close watch on all the developments in Aichi Nagoya as well as here in the newsroom. Ankit, for the time being, back to you.
4: It's going to be a busy day for you, Gaurav, tomorrow when, of course, the men's hockey team, the cricket team, men's cricket team also takes the field tomorrow. It is going to be a super sports Saturday. Thank you, Gaurav, for joining me. Let's very quickly also get you some more details. Ladies and gentlemen, NDTV exclusively spoke to Asian Games gold medalist Lavina Borgohain about her historic achievement, which makes her the first Indian boxer to win two Asian Games medals.
5: Well, I am with the Asian Games champion in 75 kg boxing, Lavlina Borgohain. Lavlina, even before I congratulate you, many, many happy returns of the day.
6: Thank
5: happy
6: you so
5: birthday.
6: Much. Thank you.
5: What is the story of this medal? Every medal comes with a story. Is medal ka story kya hai?
6: Is medal ka story pehle to bahut zyada expectation ke sath main nahi aayi thi. एक माइंड में था कि मुझे अपनी गेम को एंजॉय करना है क्योंकि मुझे लगता है हम अपने गेम को जिस तरीके से अगर एंजॉय करेंगे तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा. मेहनत तो हम हर कोई करते हैं, मेहनत में कोई कमी नहीं रहता है, सबका सपोर्ट भी रहता है, बट खुद के ऊपर विश्वास होना ज़रूरी है. और कहीं ना कहीं वही रखा मैंने और दूसरा कुछ भी नहीं सोचा इस बार. बस अपने गेम पर फोकस था, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था, बस मुझे जीतना था और कलर चेंज करना था. और ऊपर से बहुत एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट था क्योंकि जापान मेरे लिए लकी है.
5: बिल्कुल, जापान आपके लिए लकी है. और बहुत लोग कह रहे थे कि आपके पास अब दो दो एशियन मेडल है जो कि मैरी कॉम के पास भी नहीं है. उस लिहाज से कंपैरिजंस विद मैरी कॉम, सम आर कॉलिंग यू ग्रेटर दैन मैरी कॉम्स अचीवमेंट, वो कैसे आप देखते हैं?
6: मुझे लगता है कोई भी किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए और हो भी नहीं सकता है. सबका अपना अपना जर्नी होता है, अपना अपना स्टोरी होता है. हर कोई अपने जो जर्नी होता है वो स्ट्रगल वो खुद फेस करता है. तो मैं अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहती हूँ, वो तो लीजेंड है ही. हम अपना कोशिश करते हैं कि हम बेस्ट कर पाए बस.
5: लवलीना, आज का जो मैच था चाइनीज बॉक्सर के खिलाफ, बाओ जी 21 ईयर ओल्ड है, लेकिन क्या आपको लगता है आपके हाइट ने आपको थोड़ा सा एडवांटेज दिया और आपने लॉन्ग रेंजेस उसको रेंज में लॉन्ग रेंज में रखा?
6: मुझे लगता है कि हाइट से ज़्यादा मेरा जितना एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा मैटर किया क्योंकि ओपोनेंट बहुत ज़्यादा टफ थी, यंग थी और वो बिना सोचे बस आ रही थी. उसको कंट्रोल करना, हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए उस टाइम पे. बस मेरा विल पावर और कहीं ना कहीं इतना हार्ड वर्क जो ट्रेनिंग करते आए, बस वही काम किया और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस काम आया. मुझे लगता है
5: इस बाउट में मैजिक मोमेंट क्या था?
6: मेरा माइंडसेट था आई थिंक.
5: और आप जब यहाँ तक पहुँचे तो आपने वर्ल्ड चैम्पियन जो कि 69 किलोग्राम के वर्ल्ड चैम्पियन थे लेकिन अब 75 केजी में बॉक्स करते हैं, उनको आप हरा के आए हो. तो ऐसा लगता है कि मतलब पहले से ही वर्ल्ड चैम्पियन को निपटा दिया, यहाँ पे आके जो है उससे तो निपट ही लेंगे हम.
6: वैसे मैंने ओपोनेंट को इतना एनालाइज नहीं किया क्योंकि मुझे अपना गेम खेलना था, मुझे अपने ऊपर विश्वास था. ओपोनेंट चाहे जो भी हो सामने, चाहे वर्ल्ड चैम्पियन हो, ओलंपिक मेडलिस्ट हो, मैंने कुछ नहीं सोचा. बस मैंने सोचा कि मुझे अपना बेस्ट देना है, उसके बाद रिजल्ट जो भी होगा मैं एक्सेप्ट कर लूँगी.
5: 69 से 75 में आना, हाउ वॉज द एडजस्टमेंट लाइक? डिफ़िकल्ट थी, ईजी रहा, क्या है?
6: जैसे 2024 में 69 केजी नहीं था तो मुझे 75 में आना पड़ा, लेकिन 75 में आने के बाद भी मेरा जो परफॉर्मेंस था वो अच्छा था. मेरा एशियन गेम्स लास्ट मेडल भी 75 में था, मैं वर्ल्ड चैम्पियन भी मैं 75 में बनी. तो हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज थी थोड़ा सा एडजस्ट होने में क्योंकि जब हम ऊपर के वेट में आते हैं तो फिजिकली और ज़्यादा फिट होना ज़रूरी होता है क्योंकि हम थोड़ा स्लो हो जाता है और मेंटली और ज़्यादा फिट रहने की ज़रूरत पड़ता है. तो हाँ, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम था लेकिन अभी मैं एडजस्ट हो गई हूँ 75 में, तो अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं अच्छे से खा सकती हूँ, मैं अच्छे से ट्रेनिंग कर सकती हूँ. हाँ, थोड़ा सा एक दो दिन पहले कंट्रोल करती हूँ मैं वेट को, लेकिन मैं अपना 100% दे पाती हूँ 75 में.
5: आज वर्ल्ड चैम्पियन होने के, एशियन चैम्पियन होने के बाद क्या खाने का मन है?
6: अभी तो घर का खाना खाने का बहुत ज्यादा मन है, आसामीज खाना खाने का मन है।
5: कुछ बोला है, कुछ मंगाया है आपने?
6: नहीं नहीं, अभी तो आसाम जाके ही खा पाऊंगी, यहाँ पे तो नहीं मिल पाएगा।
5: एक आखिरी सवाल, आपके जो बॉक्सिंग फेडरेशन के चीफ कह रहे थे कि पिछले कुछ साल आपके लिए बहुत टफ रहा है, कैन यू टेल अस, कैन यू टॉक टू आवर व्यूअर्स, जो टफ वक्त होता है उसमें आप क्या करते हैं एंड हाउ डू यू सेल थ्रू?
6: मुझे लगता है कि जब ऐसे टाइम आते हैं कि हम सब कुछ खो जाते हैं, खो जाने के बाद फिर से हम जब स्टार्ट करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो कंटिन्यू करना, वो माइंडसेट कि हम फिर से कर सकते हैं, जो बाउंस बैक करना होता है वो टाइम लगता है लेकिन हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम जिस मोमेंट में रहते हैं उस मोमेंट को जीना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं वही कर रही थी कि मुझे हर टाइम को, इस टाइम को भी मैं बस एंजॉय कर रही हूँ, कोई एक्सपेक्टेशन के बिना।
5: वेल, लिविंग इन द मोमेंट, बिगेस्ट लेसन, एंड थैंक यू वेरी मच लवलीना एंड हैप्पी बर्थडे वंस अगेन।
4: All right, with that, we're slipping into a very short break. On the other side, Captain Smith Mucha, the man who everybody is speaking about, praising his bravery. He was badly wounded, but he knew the aircraft was going down. In his own words, there was one final push he had to make to reach the door. We'll get to those details after a short break. Stay tuned.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे दिस इज अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स अनसर्टन अनरिटन एज ग्लोबल इक्वेशन शिफ्ट Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi. India's most powerful defense voices come together

वारफेयर के तौर तरीके भी बदल रहे हैं, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी का भी जितनी तेजी के साथ विजाद हो रहा है। ऐसे में

0: International affairs like no one else. Only on NDTV Network. The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindoor.
1: So many attacks.
0: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
1: It's incredible.
0: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
1: Welcome to Left, Right and Center.
0: Hard facts.
2: War struck country.
0: Hard questions.
2: In the Ukraine.
0: 30 years of trust.
3: In the Kargil area.
2: North Ukraine.
1: In France. In Italy.
2: At Srinagar.
1: I am Iskandar.
2: Vishnu Shom for NDTV.
0: Vishnu Shom. Only on NDTV. This is a world between orders. Uncertain.
4: Good evening, everybody. You're watching NDTV. Captain Smith Machar's extraordinary courage inside the Fly Dubai cockpit remains our top focus even tonight. He fought to regain control of the aircraft after being attacked. And that act of his is now being spoken about around the world, with Smith Machar himself telling the Prime Minister today, Prime Minister Modi today, that he was reciting the Hanuman Chalisa during those terrifying minutes of his life. But even as the pilot is being celebrated, the investigation must answer bigger questions around what really happened inside the cockpit on Wednesday. What was the motive behind this violent attack and the implications for aviation security? Our other top focus tonight is also the story around the protests that are taking place in Sivaji Park today, and also the one that took place in the morning in New Delhi at Jantar Mantar. These protests are taking place in Mumbai and Delhi over the Election Commission, the SIR process and the electoral rolls, with the opposition now planning a larger mobilization on the 6th of October. So before we deep dive into these stories, let's first get you the headlines. Wounded, dauntless and Bharatiya. Prime Minister Modi has spoken with Captain Smith today morning. He has praised him for his bravery and for saving more than 170 lives. Captain Smith tells Prime Minister that he turned to Hanuman Chalisa during the cockpit crisis. Captain Smith Machard's father speaks exclusively to NDTV. He says his son's courage came from a determination to ensure that every passenger is safe. Israel has reiterated that the co-pilot on Fly Dubai flight was Omani. Netanyahu has alleged that the co-pilot was radicalized. He has been handed over by Saudi Arabia to UAE. It's protest versus protest in Mumbai as CJP takes to the streets in Mumbai today. In Delhi, Aam Aadmi Party leaders have been detained while they're protesting against the Chief Election Commissioner. Historic golden glory for Indian women's hockey team today. India beat China in the finals.
5: He hit me
6: like
4: We're in the midst of life and death situation at 30,000 feet. Captain Smith Machard says that he turned to faith. He revealed in this conversation with Prime Minister Narendra Modi today morning that he recited Hanuman Chalisa while he was terrified, while he was saving the lives of 174 people on board. Badly injured and convinced that the aircraft would be going down, Smith says that he recited the Hanuman Chalisa. He also says that it is a prayer that he has often turned to when he faced a crisis. And this time, as he fought to save everybody else on board, he says that he kept reciting it. Captain Smith also told the Prime Minister that he recites the Hanuman Chalisa with his two-year-old son every day. For him, it's more than just a prayer. It's a source of courage and faith. And he believes that it is also something that saved him and also helped him wade through the crisis.
3: आपको पता नहीं होगा लोग सावरकुंडला में भी वढ़वाण में भी सब जो एक ऐसे भावुक वातावरण बना दिया है और पूरे हिंदुस्तान में तो है ही है। कल सभी मंदिरों में पूजा प्रार्थना आरती हुई, सभी तीर्थ क्षेत्रों में आरती हुई और सब आपके दीर्घायु के लिए और उत्तम स्वास्थ्य के लिए सब प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए आप तो जल्दी स्वस्थ होने ही वाले हैं। भारत आपका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक है।
4: Well, tonight, the extraordinary courage of a pilot who fought to save his aircraft and its passengers after an attack inside the cockpit remains a top focus, Captain Smith Machar. The Fly Dubai pilot at the center of this incident has now spoken to the Prime Minister Narendra Modi, about those terrifying minutes of his life. He has told the Prime Minister that after being attacked, he realized that the aircraft was descending and that he had to act. Despite his injuries, he managed to open the cockpit door, allowing others to intervene, and that helped avert what could have been a bigger tragedy. But Machar also spoke about something that was deeply personal to him. He told Prime Minister Modi that he was reciting the Hanuman Chalisa during those minutes of his life, and that gave him immense courage. The Prime Minister and Captain Smith spoke to each other in Gujarati. The Prime Minister also asked about his children, the well-being of his family, and assured him of all health. The Prime Minister has already spoken to his wife and to his parents, but for Machar, faith remains a source of his strength at a time when he is fighting for his life, when he was fighting to save the lives of all others on board the flight. And tonight there are also questions that will go far beyond one pilot's extraordinary courage. What exactly happened inside that cockpit on Wednesday? What really triggered this attack? How was an incident involving a member of the flight crew even allowed to unfold? And what does this mean for cockpit security, pilot screening, passenger safety, and the implications on how we see terrorism? But also, Captain Smith Machar was badly wounded, but he knew that this aircraft was going down. In his own words today, while he was speaking to the Prime Minister, he said that there was one final push that he had to make to reach the door and get it open so that he could let other passengers intervene. Now here Captain Smith himself recount that fight for survival.
6: उस टाइम पे मैं बोला अगर मैं नहीं उठूंगा मैं एजर में 17 साल से जा दौड़ा मैं पिछले 11 साल से कैप्टन हूँ और मुझे पता चलता है बंद करके भी ये चार्ज में क्या हो रहा है। जब मैं नीचे गिरा हुआ था तब मुझे एहसास हो रहा था कि एयरक्राफ्ट नीचे जा रहा है और मुझे बिल्कुल पता था कि ये एक लास्ट पुश होगा स्मिथ कर दे दरवाजा बस वही है और तभी भी मैं मार खा ही रहा था बस वो खोल दिया सर बाकी सब आ गए और बाकी सब की भी उतनी उसमें रोल था बट जान के मैं सर को बोला था कि मैं अपनी जान के हिसाब से कर रहा था एट द सेम टाइम मुझे इतना भी पता था कि मैं उन सबको नहीं मरने दे सकता। बस उसके बाद मेरे को लोगों ने यहाँ पे भी सऊदी में भी यहाँ पे तो पढ़ के इससे अच्छी केयर और इससे अच्छा मेडिकल अटेंशन नहीं मिल सकता था।
4: the story of that extraordinary act of courage. Captain Smith Machar's father spoke exclusively to NDTV's managing editor Shiv Arur. Bhupendra Machar, father of Captain Smith, said that his son's courage comes from a determination to ensure that every passenger on his flight was safe. Let's listen in to what he said.
7: Bhupendra Bhai Machar, he is the father of hero pilot Smith Machar, whose son has made the entire country proud and is now a global icon of courage. Bhupendra Bhai, NDTV par aapka swagat hai. Aapke bete par pura desh ka garv hai. Kya aap bata sakte hain Bhupendra Bhai, Smith abhi kaisa hai? उनकी तबीयत कैसी है? उनकी अभी जो वीडियो सामने आया है प्राइम मिनिस्टर के साथ बातचीत करते हुए साफ नज़र दिखाई देता है कि वो ठीक है. आप एक अपडेट दीजिए कि वो कैसे हैं, आपका बेटा कैसा है अभी भूपेंद्र भाई?
8: जैसा आपने देखा वीडियो में वही चीज़ मैंने भी देखी आज, क्योंकि मैं आज उनको कल में मिला था 10 मिनट के लिए, तभी वो थोड़ा पूरे कंट्रोल में नहीं था. थोड़ी सी बात करके फिर डॉक्टरों ने भी बोला कि आज अपलिफ्ट हुआ है, तो अपन शांति से बात करें तो बेटर है. तो आज हम लोग वहां पहुंच रहे हैं थोड़े टाइम में, हम ऑन द वे ही है. और जितना आपने देखा नरेंद्र मोदी के साथ बात करते हुए, मेरे को भी बहुत खुशी हुई कि आज वो अच्छे फेज में है और अच्छी बात कर रहा है, तो भगवान का बहुत बड़ा शुक्र है.
7: स्मिथ ने आपको क्या बताया जब आप मिले उनसे भूपेंद्र भाई? आपको क्या बताया कल?
8: एक्चुअली कल हम लोग ने एक बात रखी थी कि इस इंसिडेंट के बारे में आज कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि वो अभी भी उतने ही वो फेज में था. तो मैंने सोचा कि आज भी अपन एक खाली भगवान की बहुत मेहरबानी समझ के आज हम लोग गले मिलते हैं, कोई उसकी बात नहीं करेंगे. आज बहुत सब लोग खुश होकर बात कर 10 मिनट बैठेंगे हम लोग तेरे साथ. तो कल की हमारी कोई भी बात में हमने उसको कोई वो चीज को याद नहीं दिलाया, मतलब वो बात ही मत छेड़ना अभी, अपन शांति से कल बात करेंगे.
7: भूपेंद्र भाई, स्मिथ के जख्म कितना सीरियस हैं? इन तस्वीरों में दिखाई देता है कि वो हॉस्पिटल में है, वो ट्रीटमेंट जारी है. डॉक्टर्स का क्या कहना है भूपेंद्र भाई?
8: डॉक्टर्स ने बोला है कि समय लगेगा ये जख्म को क्लियर करने में, और सर पे भी लगा है, दोनों हाथ से भी लगा है, और सर पे कुछ ऑपरेट भी हुआ है, स्टिचेस भी आए हैं काफी. तो अभी एकदम डिटेल में मैं आज नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जख्म है और शायद अच्छा टाइम जाएगा इसको क्लियर होने में.
7: भूपेंद्र भाई, आप स्मिथ के पिताजी हैं, आप और स्मिथ के माँ, क्या महसूस हुआ जब आपने सुना कि ये हादसा हुआ था आपके बेटे के साथ? आपका क्या रिएक्शन था, क्या महसूस किया आपने?
8: जैसे जैसे हर माँ बाप का हो गए, सबसे पहले एक ही विचार खराब आ जाता है, और तुरंत हमने हमारे भगवान के पास दिया किया और बोला भगवान कुछ भी हो जावे, खराब न्यूज नहीं आना चाहिए, आप बचा लेंगे.
7: लेकिन आप में विश्वास था कि आपका बेटा स्मिथ ऐसे करेगा, ऐसे ही बहादुरी दिखाएगा इस हादसे में? आप में विश्वास था?
8: देखो ये इस चीज की कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, जैसे आप भी वो चीज समझते हो, लेकिन एक ऊपर वाले की मेहरबानी रहेगी, कोई शक्ति उसके साथ आ गई और उसने ये जो प्रॉब्लम आया उसको सॉल्व किया, अपना पूरा सबके लिए गर्व की बात हो गई. और मैं भी बोलूंगा कि इसमें ज्यादातर भगवान की मेहरबानी है, हम लोग ज्यादा धर्मिष्ठ थे पूरे घर वाले.
7: जी, और भूपेंद्र भाई, आपकी बेटे की बहादुरी भी थी, आपने डिटेल में देखा है कि उन्होंने क्या किया कॉकपिट में. हमला के बाद उन्होंने जख्मी होते हुए कॉकपिट के दरवाज़ा को खुला रखा. डिटेल में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है आपको पता है कि क्या हुआ, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये एक प्रेजेंस ऑफ माइंड थी, जैसे आपने बताया कि इसका कोई ट्रेनिंग नहीं होता है सर.
8: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसका एक शब्द बोल दूं मैं, के जैसे वो गिर गया जैसे नीचे कॉकपिट में, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि अभी जो करना है वो अभी कर ले, अदरवाइज कुछ नहीं होएगा. तो फिर उसके मन में एक विचार आया कि अभी फाइट करना ही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है दूसरा, और उसने एक्शन लिया और सक्सेस हो गया. और उसके मन में एक बात पक्की थी कि मेरे हिसाब से पीछे के जितने भी पैसेंजर थे वो किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए, वो उसके मन में पूरा भरा हुआ था. तो उस चीज ने ऊपर वाले ने सपोर्ट किया और ये पूरा सक्सेस हो गई बात.
7: भूपेंद्र भाई, क्या स्मिथ हमेशा ऐसे ही थे, सेल्फलेस, औरों के लिए ऐसे बिहेव करना उनका ट्रेनिंग था एक पायलट के हिसाब से, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग वो कभी भी ऐसे ही थे?
8: एक्चुअली बोलूं तो वो आज समझो 17 साल से फ्लाइंग कर रहा है, और इस 17 साल के अंदर उसने सैकड़ों पायलटों को किस तरीके से इंटरव्यू देना है, किस तरीके से अपने को ये चीज समझना चाहिए, वो उसके पहले से नेचर में है। वो फ्लाइंग के बारे में एकदम से उसका मतलब, वो वाइफ है उसकी ऐसा समझ लो
7: जी,
8: उसको फ्लाइंग मतलब और कुछ समझता ही नहीं, बोलता मेरे को ज्यादा अच्छे से अच्छा फ्लाइंग करना है।
7: और जब वो ठीक हो जाएंगे भूपेंद्र भाई, क्या वो फ्लाइंग कंटिन्यू करेंगे? फ्लाइंग कंटिन्यू करेंगे?
8: वो ना बोलेगा ही नहीं कभी भी कि मैं नहीं करूंगा ऐसा।
4: So that was the pilot's father speaking to NDTV. So tonight we'll also look at this from three possible angles. The pilot who became the first line of defense, the aviation and security systems that are supposed to protect passengers, and the investigation into what happened inside the cockpit, what is supposed to follow now. We have a panel of guests with us. We have Mangal Bhanushali, who's a family friend of Smith Machar. We also have Captain C.S. Randhawa, aviation expert. He's also the president of Federation of Indian Pilots. And we have Captain S.S. Panas, sir, who is an aviation expert as well and former director of a Flight Safety Indian Airlines. And we have squadron leader Akshay Chopra joining us, also an aviation expert and former pilot. Thank you all of you for being part of this broadcast. Let me speak to you, Mangal, first. Mr. Bhanushali, aap Smith ko jante the, aapke hisab se wo kaise aadmi hai, kyunki unhone jo kiya hai usse pure desh ko nahi pure vishv ko bahut hi zyada jo hai proud feel karwaya है, उनके फादर से हम लोगों ने भी बात की, वो कैसे आदमी हैं, उनसे क्या आपको ये उम्मीद थी कि एक टाइम पे सबको इतना प्राउड फील करवाएंगे?
9: देखिए, उनका स्मिथ जी का आप अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो 17 साल के फ्लाइंग की उसके हिस्ट्री में एक भी लाल फीत उनको लगी नहीं है
4: जी।
9: एक तो वो बहुत सिंसियर थे फ्लाइंग के बारे में, और दूसरा वो पूरा बिजनेस फैमिली में से आते हैं। वो बिजनेस फैमिली में से आते हुए भी उन्होंने अपना जो पैशन था, उनकी जो फ्लाइंग के प्रति उनका जो लगाव था, तो उसने उन्होंने ये सेल्फ डिसीजन लिया कि मैं फ्लाई करूंगा। वो जब हमारे यहाँ घाटकोपर में हमारे सामने ही रहते थे और कभी आते जाते थे हमारे यहाँ मंदिर में, तो पहले से वो भक्ति भाव वाले हैं। हमारी हिंगलाज माता जी का मंदिर है भानुशाली वाड़ी में, वहां पे वो दर्शन करने के लिए उनका परिवार पूरा आता है। और एक रूप से अगर देखा जाए तो इतना सिंसियर बंदा था वो कि उन्होंने विदाउट एनी कोई बाहर की हेल्प लिए बिना उन्होंने अपने पेशेंस को उन्हें पूरा किया। वो फ्लाइंग में लगने के बाद में भी उन्होंने अपना भक्ति भाव कायम रखा। उनको ईश्वर में एकदम श्रद्धा थी और है और रहेगी। तो एक नेक दिल और एक सच्चा बंदा हम जिसे कह सकते हैं, वो इंसान अगर हम स्मिथ के बारे में कहें तो वो कह सकते हैं।
4: राइट, मगर भाई और उनके बारे में आपको क्या याद है, आप उनको जानते थे?
9: हाँ, देखिए वो जब हमारे यहाँ उनके जो बिल्डिंग में रहते थे उसके पीछे एक टेक्निकल स्कूल है, गुरुकुल टेक्निकल स्कूल, उसमें उन्होंने अभ्यास किया। तो वो अभ्यास के समय में भी काफी सिंसियर थे। वो अभ्यास के अंदर कभी टीचर को डांट देने का चांस देते नहीं थे और अभ्यास में रुचि रखते थे। जब भी उनकी रुचि तो फ्लाइंग में ही थी, तो वो टेक्निकल अभ्यासक्रम उन्होंने कंप्लीट किया वहां से। और उनका जो मोटो था, उनका जो फोकस था, वो फोकस कुछ अच्छा करके दिखाना था और वो हमेशा उस फोकस के ऊपर लगे रहे।
4: राइट, मगर भाई एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, जब प्राइम मिनिस्टर ने उनसे आज बात की है, आपको वो सुनकर, वो बातचीत सुनकर आपको क्या लगा और आपकी क्या प्रार्थना है उनके लिए?
9: देखिए, भूपेंद्र भाई एक अच्छे बिजनेसमैन है और उनके पिताजी के समय से उनका बिजनेस प्रिंटिंग का कपड़े पे चलता आ रहा है। और आज हमें पूर्ण घाटकोपर वालों को, सब यहाँ जहाँ उनके नेबर्स हैं, हम सब उनके साथी हैं, हम उनको जानने वाले हैं, आज ये हम गर्व ले रहे हैं कि राष्ट्र को आज उन्नत पूरे विश्व में ऊपर ले जाने वाला काम स्मिथ के हाथ से हनुमान जी दादा ने करवाया है। हम सारंगपुर भी जाते हैं, सारंगपुर में प्रार्थना करते हैं हनुमान दादा के पास, कष्ट भंजन के पास, और हम अभी भी यही उनको प्रार्थना करेंगे कि ये जो राष्ट्रभक्ति उन्होंने, राष्ट्रभक्ति से भी ज्यादा वो एक मान

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: जो होना है वो तो होना ही है, रंगीले तू सदा मुस्कुरा, सदा सदा सदा मुस्कुरा, रंग रंग रंग रंग रंग रंगीन रंग रंगीन रे, देखो कैसे भी हो तीन रंग बना रहे,
1: बोझे पेंट्स रंग बना रहे।

0: Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
1: रंग रंग रंग रंग रंग रंगीन रंग रंगीन रे देखो कैसे भी हो तीन रंग बना रहे
2: बोझे पेंट्स रंग बना रहे
3: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज
4: यू वॉच अस व्यूअर यू ट्रस्ट अस एंड नाउ योर वोट कैन स्पीक फॉर व्हाट वी मीन टू यू Vote for NDTV at the ITA Awards 2026. You've got that power. Your support has always been an important part of NDTV's journey. And at the ITA Awards 2026, we are asking for your vote. Vote for NDTV and show your support for the journalism that you trust, the journalism that matters. It will just take a few moments, and every vote means a great deal to us. So do vote, share the link, and cheer for NDTV.
0: 26th Indian Television Academy Awards. Online voting now open. Log on to ita2026.indiantelevisionacademy.com/NDTV. Vote for the channel you trust. NDTV. When it really matters.
5: जब तक लाजवाब न बन जाए, उसे नहीं इत्मीनान है. तभी तो रिचमन बनना नहीं आसान है.

0: He hit me like...
1: No.
0: So many times.
2: मुझे बिल्कुल पता था कि ये एक लास्ट पुश अप स्मिथ कर दे, दरवाजा बस वही है.
3: Go out. Thank you.
2: उस टाइम पे भी मैं सिर्फ हनुमान चालीसा ही बोल रहा था. But at the same time, मुझे इतना भी पता था कि हम सबको नहीं मानने से कि आज हम लोग देश से दूर है, बट हमारी संस्कृति से दूर नहीं होना चाहिए. उतना मुश्किल होगा मेरा रिकवरी. मैं इसको एक जर्नी की तरह सोच रहा हूँ.
4: Smit Machar, a man who is a house

0: household name by now. And finally, the world heard him speak today when he spoke to the Prime Minister of India, Narendra Modi. And this 9-minute, 52-second conversation is something that everyone across the world must hear, especially those in India. Not only because it helps you understand what happened inside the cockpit of that Fly Dubai flight, but also because it shows the clarity and conviction in the mind of Captain Machar. Driven by strong cultural roots, professional experience, and fortitude.
1: पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं हैं, जान बचाने वाले लोग हैं। और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय भी आपने अपनी जीवन की परवाह नहीं की।
2: आप मेरे सबसे बड़े एक्टर सभी और आप मेरे को ऐसे कॉल करके मेरी ऑफिस में जाकर रहे हैं, मुझे बहुत बहुत बहुत गर्व फील हो रहा है। एंड मैं सर मैं एक सिर्फ पॉजिटिविटी में मैं जब भी मेरे को दर्द होता है मुझे एक ही चीज आती है, मैं सिर्फ हनुमान चालीसा बोलता हूँ। उस टाइम पे भी मैं सिर्फ हनुमान चालीसा ही बोल रहा था। अब मुझे पता है कि वो भगवान की मेरे को बचाए। बस आपका एक कॉल आ गया, मैं जो बहुत बहुत गर्व होता है, अब भी मैं जो हो रहा है मेरे पे गर्व, अब तक नहीं हो रहा था, अब हो गया सर। सॉरी क्या आपके सामने रो रहा हूँ सर। सर मैं रोज सुबह जब पूजा करता हूँ, मेरा 2 साल का बेटा मेरी गोद में बैठ के मैं साथ हनुमान चालीसा मैं उसको सुनाता हूँ कि जो मुझे बोला गया है, क्योंकि आज हम लोग देश से दूर है बट हमारी संस्कृति से दूर नहीं होना चाहिए।
1: सही बात है।
2: और अभी तो यहाँ पे तो वो भी नहीं लगता कि हम देश से दूर हैं।
0: It's all on camera now. The pilot's account, the wounds on his body, the eyewitnesses. But despite all of this, there are plenty of cynics even now who have gone so far as to call this a false flag operation. Their contention? Why is the identity of the Omani co-pilot and the attacker not made public yet? Many are even asking how an Omani pilot was even in the cockpit of a flight that was headed to Israel. Isn't that a violation of the Fly Dubai rules? Then it's asked, how did the plane plummet 17,000 feet in under 2 minutes and yet saw no significant injuries to the passengers or any significant damage to the body of the plane? There are some people even questioning whether it is too premature to call this a terror attack at all. And then comes the politics. You heard the cynics. Now, hear the silence, if that's possible. The BJP today is questioning the silence of Rahul Gandhi in particular. It has asked, why has there been no statement, no comment, not even a tweet on Captain Smith so far, at a time when this man is being hailed worldwide for his bravery? The BJP has called this a direct result of appeasement politics.
3: जब हर भारतवासी कैप्टन स्मिथ मचार को सैल्यूट कर रहा है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो पब्लिक लाइफ में है, ही इज नॉट अ प्राइवेट इंडिविजुअल, राहुल गांधी के मुंह से ना एक शब्द कैप्टन स्मिथ मचार के पक्ष में निकला, ना एक ट्वीट कैप्टन स्मिथ मचार के पक्ष में किया गया, ना उन्होंने एक वीडियो संदेश कैप्टन

0: a very close family. They're very religious. Even in the last 3 years, they had a Ganpati festival at their home. Even when they moved to Dubai, they had a Ganpati festival in Dubai as well. So yeah, the belief in God is there, and it's in the roots as well. So yeah.
1: You know, and it was so cool, because the Prime Minister, when he said, Jai Shri Krishna, let's talk a little bit in Gujarati, he said that I've taught my children Gujarati first and then I taught them anything else.
0: Absolutely. No. I completely agree. His daughter is about 9, and we've seen her grow up since the time she was born. And the roots that they have, they're pretty much in religious context as well, in spiritual context. They have a very strong belief system, and the entire family is the way they spoke.
1: Ishwar ji, jab samaj ko pata chala aapke ghar mein, aapke janne walon mein ki aisa kuch ho gaya hai, kyunki chhan ke khabar aa rahi thi, phir achanak jab Smith ka naam aaya, kaise aapko pata chala, kis tarike ka reaction aapne suna, phir thoda bataiye hame us waqt ke bare mein.
2: Pehle to jab शोक तो लगा, मगर जो सक्सेस सफलता मिलती है ना, तो बहुत खुशी हो जाती है ना. आज खुद को इतना लगा, खून से लथपथ हो गया, और उनके पे इतनी जवाबदारी थी, और जवाबदारी के साथ उसने पैसेंजर को भी संभाला, और सफलता मिली, जो उपलब्धि मिली है. मैं आपको एक बात बोलूं
1: जी,
2: कि ये अभी परिवार के बिरादरी का हिस्सा नहीं है. अभी जो मीत है वो इंटरनेशनल हीरो हो गया है, और अपना हिंदुस्तान का सपूत बोलो तो हिंदुस्तान का बेटा है. अभी परिवार से बहुत उसका दर्जा ऊंचा हो गया है, समाज से बहुत दर्जा ऊंचा हो गया है, और 180 आदमी को अपनी ड्यूटी पूरी करके जो उसने कार्य किया है, ये बड़ी उपलब्धि है. और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ कि भाई आपको उस पुरस्कार देश के उसका ऑनर करना चाहिए, और हो सके तो इंटरनेशनल में नोबल प्राइज भी देना चाहिए, क्योंकि 180 आदमी का जान बचाना, 27 आदमी बच्चे थे, ये हीरो.
1: No, undoubtedly he's a hero, and in fact that call is going up from many quarters, the fact that he should get the highest civilian award. But Ishwar bhai, ek cheez aur, kyunki jab main unke pitaji ko aaj shaam ko sun rahi thi, unhone humse jab baat ki, Bhupendra bhai ne, to unhone ek badi sateek baat kahi. Unhone kaha ki jis tarike se palan poshan kiya jata hai kisi bacche ka, usse bahut fark padta hai ki ek aise situation mein wo kaise behave kare, wo kaise react kare. तो उन्होंने भी आजकल के जो यूथ हैं, जो जेंजी हैं, उनको कहा कि भाई एक आपको कल्चरली रूटेड होना चाहिए. क्या कहेंगे आप इसके बारे में?
2: अभी ऐसा नहीं मैडम, सब सब का अपना दृष्टिकोण होता है, मगर मेरी जो थिंकिंग है, इंडियन अपना वर्ल्ड के लेवल में बात करता हूं, कि जो उसने जो काम किया है, जो मेहनत किया है, जो समय सूचकता से काम किया है, और जो उसको यश मिला है, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है. इसके उसके इसके विचारों में हम बात कर सकते हैं, मगर बाकी परिवार समाज वो
1: अक्षय टेरस, यू नो, टू हैव दैट काइंड ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड व्हेन यू आर अंडर अटैक, दैट सेज अ लॉट अबाउट द काइंड ऑफ पर्सन दैट स्मिथ इज. टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट योर इंटरेक्शंस विद हिम, वेदर यू हैव एनी सच मेमोरीज व्हिच यू नो व्हिच मेड यू बिलीव दैट यस, हियर इज अ पर्सन हु हैड शोन सच टेंडेंसीज, यू नो, ऑफ बीइंग वेरी फर्म, really having that resolve in moments of crisis.
0: I think the profession itself demands a great presence of mind, and he's the prime example now of putting duty before self, So I think that's the very, very the kind of character that he's shown. It's a testimony of the person that he is. And I think we, as I said in some of the other interviews as well, we didn't expect any less from him. It didn't come as a surprise that he put 174 lives. He put his life on the line to save 174 lives. So, yeah, it didn't come as a surprise to us. I think we all expected this out of him, and he's lived up to our expectations and probably exceeded expectations as well. Mm. So that's the kind of man that he always has been.
1: ईश्वर भाई, अभी जो आपको लोग देख रहे हैं उनको आप क्या कहेंगे ऑन बिहाफ ऑफ स्मिथ, उनकी फैमिली क्या कहेंगे? जो लोग देश में ही नहीं, दुनिया भर में आप तो सब लोग देख रहे हैं स्मिथ की कहानी को.
2: अभी उसको परिवार के, अभी कल मैं आप कल की बात करता हूँ, मैंने फोन किया था उपेंद्र भाई को, तो बोलता ईश्वर भाई, जब तक उनकी सासू को भी फोन किया था, अवर साहब इनको फोन किया था, उनके ससुर जयसुख भाई को भी फोन किया था, तो वो बोलता ईश्वर भाई, जब तक फोन नहीं आवे तभी हमको शांति नहीं है, हम बहुत उलझन में है. और जब फोन आया कि भी अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, तो फैमिली का रिएक्शन ये था और हिंदुस्तान का फेवर ये था कि भी हमारा हिंदुस्तान का पायलट ने कितना जबरदस्त काम किया, और हमारे जैसे जो सोशल काम करते हैं उनका तो ये है कि ये भगवान का कोई आशीर्वाद था उस पर, और जो उसको उपलब्धि मिली है उसकी बदली में उनका आदर मान सम्मान बहुमान होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से. ये हमारी गुजारिश है, हमारा बच्चा है और हमने उसको भी आशीर्वाद देते और आगे बढ़े.
1: ईश्वर भाई, आपकी क्योंकि भूपेंद्र भाई से बात हुई है, उन्होंने कुछ बताया जब प्रधानमंत्री ने कॉल किया, पूरी फैमिली को कॉल किया, उन्होंने उसका जिक्र भी किया था जब वो फोन कॉल कर रहे.
2: हाँ, वो बताया कि भी उपेंद्र भाई से बात किया, गीता से बात किया, अपना सोनल से बात किया और सबका समाचार उसको पूछा. बहुत अच्छा किया हो. और मैं बोलूं कि ये जो मित में जो थोड़ी ताकत है, हिम्मत है, तो ऊपर से आती है. इसमें नरेंद्र मोदी का भी साथ है, तो जो उनका जो रवैया है देश के प्रति, तो वो जुनून भी आता है, हिम्मत भी आता है और शक्ति भी मिलती है. तो नरेंद्र मोदी का भी उनका उनका जो हिम्मत, पीछे से हिम्मत मिलती है, वो उनकी योगदान है, ऐसा मैं समझता हूँ.
1: ईश्वर भाई एंड अक्षय, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग. एंड आई सस्पेक्ट इन द डेज टू कम व्हेन एंड यू नो व्हेनेवर द फैमिली डज कम बैक, इट्स गोइंग टू बी एन इक्वली प्राउड एंड इक्वली इमोशनल मोमेंट फॉर यू एज वेल अलॉन्ग विद हिज इमीडिएट फैमिली. थैंक्स फॉर स्पीकिंग टू अस.
0: थैंक यू सो मच.
1: Okay, let's turn now to battleground Punjab, where fresh signs of unease are emerging in the Congress camp. Amrinder Raja Waring has stepped down as state Congress chief, but will this make the going easier for the party, or will it actually make it more muddled? An excerpt from Politics Zindabad, and of course, you can watch the full show over the weekend. The chief of the Congress in this state, Amrinder Raja Waring, has stepped down. By the way, the official announcement wasn't made, but he changed his Twitter bio to former president, former PPCC president on his own. And this has happened just months ahead of the assembly election in the state. Now, the key question remains, who will replace Waring at a time when the campaign heat has started to rise in the state? The party will have to strike a balance now, not just between the various camps within the Congress in Punjab, but also the various social groups in the state. While Waring came to Delhi to meet Rahul Gandhi, the BJP naturally is not losing this opportunity to take a swipe at the infighting.
3: Formally resignation diya, aur unhone bahut pyar diya और पंजाब के बारे में क्या हालात हैं और किस प्रकार से क्या हो रहा है और क्या हमें करना चाहिए, ये राहुल जी ने जानकारी ली।
4: और राजे पटिंग तो इस्तीफा ले लिया कल, हुण कोई नवा आऊगा ओदे पिछे लड़नगे भी इहनू लाउणा है। कांग्रेस वाले पंजाब वास्ते कदे कट्ठे नहीं हो सकते, हाँ आपदे प्रधान नू लाउण वास्ते सारे कट्ठे हो जांदे ने, भी सारे कट्ठे हैं जी।
1: ओके, सो लेट मी आस्क जैनेंद्र, बिकॉज ही स्पोकन टू वरिंग एट लेंथ, हु इज गोइंग टू बिकम द नेक्स्ट। फर्स्ट टेल अस, व्हाई डिड ही गो, व्हाई वाज ही रिमूव्ड?
5: देखिए पंजा, ये उन्हें उनका जाना जून में ही डिसाइडेड हो गया था, जब चन्नी बाजवा और सारे जो सीनियर लीडर्स हैं वो दिल्ली में उन्होंने कन्वे किया कि हम राजा की लीडरशिप में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। इसके बाद अजय माकन की कमेटी बनाई गई, हालांकि उस कमेटी की रिपोर्ट ये थी कि चन्नी को हमें प्रेसिडेंट बनाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस लीडरशिप को लगा कि पिछली बार चन्नी को बनाने की वजह से दलित वर्सेज जटसिक का एक इक्वेशन बन गया था। चन्नी खुद सीएम रहते अपने दो सीटों से चुनाव हार गए थे, तो चन्नी के जाना साथ जाना सेफ नहीं, चन्नी को कैंपेन कमेटी चीफ बनाते हैं और सिंगला को प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं, विजयेंद्र सिंगला को। ये बात जब आखिरी मोमेंट में कन्वे की गई केसी वेणुगोपाल के द्वारा चन्नी को और अदर सीनियर लीडर्स को, तो बताया जाता है कि चन्नी ने वीटो कर दिया और उन्होंने साफ कहा कि नहीं, सिंगला को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अध्यक्ष अध्यक्ष मुझे बनाइए। जब ये बात राहुल गांधी को कन्वे की गई तो उन्होंने कहा कि फिर स्टेटस को रखते हैं, कोई चेंज नहीं होगा। और इसके बाद स्थिति और हाथ से बिगड़ी, इतनी बिगड़ गई कि भूपेश बघेल जो अंपायर की भूमिका में थे, इंचार्ज थे, उनका विरोध होने लगा,
1: अंपायर को ही रेड कार्ड कर दिया।
5: और एग्जैक्टली, और फिर उनके
6: तो मर्सिडीज गाड़ी भी मिली गई थी।
1: कहा
6: ऐसी चर्चा थी कि भूपेश बघेल को वो जब पंजाब के जब वो इंचार्ज बनाए गए थे तो उनको संभवतः उन्हीं के जो जिन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे जिनको उन्होंने एम्पायर करना था, शायद उन्हीं से उनको एक मर्सिडीज गाड़ी भी मिल गई थी। एंड दैट हैपेंस टू बी वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई हिज न्यूट्रलिटी केम अंडर क्वेश्चन।
1: बट वेरी इंटरेस्टिंग, आई हैव टू से दैट भूपेंद्र ऑलमोस्ट 3 weeks अगो हैड प्रेडिक्टेड दैट वरिंग इज गोइंग टू गो एज द चीफ ऑफ द कांग्रेस इन पंजाब। सो नाउ ऑल्सो टेल अस,
6: समटाइम्स वी गेट इट राइट,
1: हु इज गोइंग टू बिकम द न्यू।
6: सो द पॉलिटिकल लॉजिक दैट आई हैव बीन गिवन टू अंडरस्टैंड इज दिस, दैट the Congress high command believes that it's best if you make a Hindu face, a non-Sikh face, you make that Hindu face the Pradesh Congress president. The feeling is that if you have that logic, then who will be the chief minister should that situation arise, which is bound to be, let's say, a Sikh person? That question remains open. You create a mechanism much like what was tried in Kerala, where all your Lok Sabha faces are given the responsibility of campaigning. They're not asked to campaign, they're not asked to contest. So, you know, Wadding is out of the race, Sukhinder Randhawa then is out of the race, all of whom are looking at themselves as potential, you know, chief ministerial candidates or people with who are in a position to control the levers. My own understanding is this, that I think none of these names that we're talking about, I spoke to Mr. Singla some time back, and I was asking him if he had been sounded out and he was on the campaign trail. The sense I get by speaking to, from Mr. Bajwa to Mr. Randhawa to Mr. Singla, is that there is one more card which is still to play out. And that card is a potential return of Captain Amrinder Singh to the Congress party. Now, I'm not suggesting that Amrinder Singh is going to be the chief ministerial candidate, but the potential of Amrinder Singh coming back to the Congress party is very, very high. And once that happens, if that were to happen, maybe by the end of the year, I think this question that you're raising, that who will be the chief ministerial candidate, will get answered then.
1: And who will be the state president?
6: I think state president at this stage is a toss-up between Mr. Singla and Pargat Singh.
1: Okay.
6: His I name, Pargat Singh's chances. Name Q? Has also
7: more
6: been
7: chances. He's a Jatsik. And a former hockey captain, known in entire Punjab, is a pan Punjab face. और सबसे बड़ी बात यह है कि गुटबाजी में नहीं है वो, he's not with the Channi, neither with the Channi nor with the Raja.
1: क्योंकि विजय सिंगला से ये कहा जा रहा है कि आप एक हिंदू को बना दीजिए तो फिर एक जट सीख जो है आपके सीएम फेस हो जाएंगे, कैंपेन कमेटी के चीफ आपके ऑलरेडी
7: पंजाब
1: में, जो कि दलित
7: पंजाब में, अगर आप जट सीख को नहीं बनाएंगे तो आप अकालीज के लिए आप खुला मैदान छोड़ देंगे जट सिख बूट के लिए, नंबर एक। और दूसरा ये है कि आपने सुनील जाखड़ को तब बनाया था जब कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर थे और वो फेस थे पार्टी का, वो जट सिख थे, इसलिए सुनील जाखड़ और सुनील जाखड़ ही हिमसेल्फ इज ए जाट और उनका कद भी बड़ा था। सिंगला इज ए अर्बन फेस, उसको पंजाब के गाँव में एक्सेप्ट नहीं करेंगे लोग, इसलिए बनाना तो इनको पड़ेगा जट ही, लॉजिकली बाकी किसी को बनाने कांग्रेस पार्टी
5: ऐड करना चाहता हूँ कि प्रगट सिंह वाकई में उन पोजिशनिंग उनकी बहुत स्ट्रांग है लेकिन वो अकाली दल से आए हैं और कांग्रेस लीडरशिप के करीब नहीं है, उनके कम वकील हैं राहुल गांधी के आसपास, तो इस वजह से शायद उनकी दावेदारी और एक ये लॉजिक भी है कि जट सिंह को हटाकर जट सिंह को बनाने से आप गेन क्या करते हैं। तो ऐसे में सिंगला जिस एरिया से आते हैं,
1: खिलाफ गया क्या वर्डिंग के खिलाफ क्या फैक्टर गया?
5: मैं आपसे वही कह रहा था, वर्डिंग सब सीनियर लीडर्स के की जो के आंखों के कांटे कांटे बन गए थे, इनकी जो कार्यशैली थी वो इन सब लोगों को असहज कर रही थी।
1: तो हरी कोई कांटा बन जाता है ना, जब कैप्टन थे तो वो कांटा बने हुए थे, जब वरिंग थे वो कांटा बन गए, सिद्धू कांटा बन गए, कौन कांटा नहीं।
5: बुनियादी बात मैं कहना चाहता हूँ कि पंजाब की पॉलिटिक्स में जो अकाली दल कल्चर है कि जो पिछला उम्मीदवार होता है पिछले चुनाव का वो हल्का इंचार्ज अकाली दल में बनाया जाता है, वो कल्चर सभी पार्टियों में है। तो कांग्रेस के भी जो पिछले चुनाव के हारे हुए उम्मीदवार थे वो अपने आप को अपने इलाके का अपने विधानसभा का इंचार्ज मान के चल रहे थे। जब राजा वर्डिंग प्रदेश अध्यक्ष बने वो यूथ कांग्रेस बैकग्राउंड से आए हुए, उनके अपने नेता हर इलाके में है, उन्होंने अपने करीबियों को बढ़ाना शुरू किया, उनको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स बनाया, पुराने उम्मीदवारों को लगा कि शायद हमारी टिकट नहीं मिले, इसकी वजह से उन्होंने राजा के खिलाफ एक लॉबिंग शुरू की और फाइनली वो राजा का विकेट लेकर के माने।
1: बिकॉज़ यू नो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट एज एन आउटसाइडर, व्हेन आई लुक एट राजा वर्डिंग इन द लास्ट 5 years आफ्टर द आम आदमी पार्टी केम टू पावर, चरणजीत सिंह चन्नी वाजंट इवन देयर, ही वाजंट इवन इन पंजाब, आई रिमेंबर ही वेंट अवे टू राइट हिज पीएचडी और समथिंग,
7: ही वेंट अवे टू कनाडा,
1: ही वेंट अवे टू कनाडा एंड देन ही रोट अ पेपर अपेरेंटली अबाउट हाउ द कांग्रेस इज नॉट डूइंग वेल इन पंजाब एंड देन यू कम बैक, यू लूज बोथ योर सीट्स एंड देन यू गेट योर वे,
8: ही गेट्स अ वीटो पावर।
1: Waring is the person who was there, who was carrying out the campaign, who was doing all these sabhas, who was doing Bharat Jodo Yatra, and then 4 months before the election, you kick him out.
8: Should not forget the Lok Sabha election results, where the Congress party under him won 7 Lok Sabha seats, and Aam Aadmi party was reduced to just 3.
1: Yeah.
8: And interestingly, you talked about kanta. So I'm saying that kanta se kanta nikalne ka hai to hai ye Congress party mein. Raja ko hata ke phir ek Raja ko hataya. Do Raja, Raja Captain Aminder Singh ko hataya. Uske baad ab Raja inko hata diya. और तब आप राजा को हटा के चन्नी को लेके आए थे, जो दोनों अपनी विधानसभा सीट हार गए, और जो राजा आपने आपको 7 लोकसभा सीटें जितवाई आप उनको हटा रहे हैं फिर से। तो क्या कांग्रेस पार्टी ने फैसला सही किया, इस पर एक डिस्कशन होना चाहिए।
5: बिल्कुल अलग थलग पड़ गए थे
1: राजा और आपने कैप्टन को हटा करके नवजोत सिंह सिद्धू के कहने पे कैप्टन को हटाया, फिर सिद्धू भी चले गए, कैप्टन भी चले गए, फिर आपको क्या
7: कांग्रेस 2022 हारी।
1: नहीं, और क्योंकि कांटे की बात हो रही है, वांट टू एक्चुअली प्ले आउट अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक दैट भगवंत मान हैड ऑन दिस एंटायर फाइटिंग दैट इज टेकिंग प्लेस विद इन द कांग्रेस पार्टी।
4: और अजय पटिंग तो इस्तीफा ले लिया कल, हुण कोई नवां आऊगा उहदे पिछे लड़नगे वी इहनूं लाउणा है। कांग्रेस वाले पंजाब वास्ते कदे कट्ठे नहीं हो सकदे, हाँ आपदे प्रधान नूं लाउण वास्ते सारे कट्ठे हो जांदे ने वी सारे कट्ठे हैं जी।
1: So Bhagwan Mann has predicted that now everyone is going to get after the life of whoever is going to be the next BPCC president. But very quickly, Akhilesh, I want to ask, any chance that Raja Waring, any talks happening? Because there seems to be a great affinity that the BJP has for ex-congressmen, right from Vinod Jakhar to Captain, maybe to this new Raja.
8: Not with him, but maybe with Channi. There's a buzz that Channi is in talks with the BJP, but I don't know whether it's true or not. Hmm. But it's just a small buzz there. But BJP is very keenly watching what's happening within the Congress party. Hmm. What my sources in the BJP are telling me that there's a view within the party that now we should not delay this alliance with the Akali Dal anymore.
1: It's happening. They are going to
8: they are saying it should happen.
9: Yes, yes.
8: But they it's feel happening. That it should happen because the internal survey of the BJP says that if BJP and Akali Dal comes together, they are going to win 80 seats, which is a big number in the assembly. Well, this is the internal survey saying.
1: Yeah. And 80 almost as much as Aam Aadmi Party. Just
8: they had won 93, I think. Yes. So, yeah.
6: See, all this survey and all this deliberation of the BJP is taking place or was taking place at a time when the Congress was looking as a house completely divided. Hmm. Because all these leaders that we're talking about, everybody was looking for how many seats will they be able to get for the supporters. If the Congress gets its act right, the Congress is clearly going to be the front runner.

0: रंग रंग रंग रंग रंगीने रंग रंगीने रे, देखो कैसे भी हो दिन रंग बना रहे।
1: बोझे पेंट्स रंग बना रहे।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
5: Hello and welcome to watching Prime 5 with me, Raisha Sehgal. What's that to me? How?
4: The show that sets the prime time agenda.
5: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
4: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, weekdays at 5 p.m. only on NDTV, when it really matters.
6: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे। दिस इज अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स, अनसर्टेन, अनरिटन। एज ग्लोबल इक्वेशन शिफ्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल लीड द कॉन्वर्सेशन एट द एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 टू डीकोड द शिफ्ट्स, रीड्रॉ पॉसिबिलिटीज। NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi. India's most powerful defense voices come together.
7: Warfare ke taur tareeke bhi badal rahe hain kyunki nayi technologies ka bhi itni tezi ke sath vijad ho raha hai. Aise mein is tarah ke aayojan ki zarurat main samajhta hu ki aur adhik badh jati hai.
6: One stage, one defining conversation. NDTV Defense Summit 2026. Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli. Swadisht, sehatmand, har roz.

जो होना है वो तो होना ही है, रंगीले तू सदा मुस्कुरा, सदा सदा सदा मुस्कुरा। रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंगीन रंग रंगीन रे, देखो कैसे भी हो

0: diving into this topic to tell you what's at stake.
1: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5 weekdays at 5 p.m. only on NDTV, when it really matters.
2: रंग रंग रंग रंग रंग रंगीन रंग रंगीन रे देखो कैसे भी हो दिन रंग बना रहे
3: बजे पेंट्स रंग बना रहे
4: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे दिस इज अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स अनसर्टेन अनरिटन As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.

0: या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग, चार लोगों के पास है ये।
2: कुछ इससे भी अनोखा
1: कमला पसंद, सिर्फ एक अनोखा स्वाद, कमला पसंद पान मसाला।

0: and raw human grit. Captain Smith Machar, the Indian pilot, fought off the Omani co-pilot attacker, known to be a radicalized man, wrestled control of the aircraft and brought 174 passengers safely back down to earth. And I asked none other than Pilot Smith's father himself what his son has said to him and how he feels. Upendra Bhai Machar, he is the father of hero pilot Smith Machar, whose son has made the entire country proud and is now a global icon of courage. Bhupendra Bhai, NDTV par aapka swagat hai. Aapke bete par pura desh ka garv hai. Kya aap bata sakte hain, Bhupendra Bhai, Smith abhi kaisa hai? Unki tabiyat kaisi hai? Unki abhi jo video samne aaya hai, Prime Minister ke saath baatcheet karte hue, saaf nazar dikhai deta hai ki wo theek hai. Aap एक अपडेट दीजिए कि वो कैसे हैं, आपका बेटा कैसा है अभी भूपेंद्र भाई?
1: जैसा आपने देखा वीडियो में, वही चीज मैंने भी देखी है आज, क्योंकि मैं आज उनको कल मैं मिला था 10 मिनट के लिए, तभी वो थोड़ा पूरे कंट्रोल में नहीं था. थोड़ी सी बात करके फिर डॉक्टरों ने भी बोला कि आज अपलिफ्ट हुआ है, तो अपन शांति से बात करें तो बेटर है. तो आज हम लोग वहां पहुंच रहे हैं, थोड़े टाइम में हम ऑन द वे ही है. और जितना आपने देखा नरेंद्र मोदी के साथ बात करते हुए, मेरे को भी बहुत खुशी हुई कि आज वो अच्छे फेज में है और अच्छी बात कर रहा है, तो भगवान का बहुत बड़ा शुक्र है.
0: स्मिथ ने आपको क्या बताया जब आप मिले उनसे, भूपेंद्र भाई, आपको क्या बताया कल?
1: एक्चुअली कल हम लोग ने एक बात रखी थी कि इस इंसिडेंट के बारे में आज कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि वो अभी भी उतने ही वो फेज में था. तो मैंने सोचा कि आज मीट अपन एक खाली भगवान की बहुत मेहरबानी समझ के आज हम लोग गले मिलते हैं, कोई उसकी बात नहीं करेंगे. आज बहुत सब लोग खुश होकर बात कर 10 मिनट बैठेंगे हम लोग तेरे साथ. तो कल की हमारी कोई भी बात में हमने उसको कोई वो चीज को याद नहीं दिलाया, मतलब वो बात ही मत छेड़ना, अभी अपन शांति से कल बात करेंगे.
0: भूपेंद्र भाई, स्मिथ के जख्म कितना सीरियस है? इन तस्वीरों में दिखाई देता है कि वो हॉस्पिटल में है, वो ट्रीटमेंट जारी है. डॉक्टर्स का क्या कहना है भूपेंद्र भाई?
1: डॉक्टर्स ने बोला है कि समय लगेगा ये जख्म को क्लियर करने में, और सर पे भी लगा है, दोनों हाथ से भी लगा है, और सर पे कुछ ऑपरेट भी हुआ है, स्टिचेस भी आए हैं काफी. तो अभी एकदम डिटेल में मैं आज नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जख्म है और शायद अच्छा टाइम जाएगा इसको क्लियर होने में.
0: भूपेंद्र भाई, आप स्मिथ के पिताजी हैं, आप और स्मिथ के माँ, क्या महसूस हुआ जब आपने सुना कि ये हादसा हुआ था आपके बेटे के साथ? आपका क्या रिएक्शन था, क्या महसूस किया आपने?
1: जैसे जैसे हर माँ बाप का हो, सबसे पहले एक ही विचार खराब आ जाता है, और तुरंत हमने हमारे भगवान के पास दिया किया और बोला भगवान कुछ भी हो जावे, खराब भी उसमें आना चाहिए, आप बचा लेंगे.
0: लेकिन आप में विश्वास था कि आपका बेटा स्मिथ ऐसे करेगा, ऐसे बहादुरी दिखाएगा इस हादसे में? आप में विश्वास था?
1: देखो ये इस चीज की कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, जैसे आप भी वो चीज समझते हो, लेकिन एक ऊपर वाले की मेहरबानी रहेगी, कोई शक्ति उसके साथ आ गई और उसने ये जो प्रॉब्लम आया उसको सॉल्व किया, अपना पूरा सबके लिए गर्व की बात हो गई. और मैं भी बोलूंगा कि इसमें ज्यादातर भगवान की मेहरबानी है, हम लोग ज्यादा धर्मी थे पूरे घर वाले
0: जी. और भूपेंद्र भाई, आपकी बेटे की बहादुरी भी थी, आपने डिटेल में देखा है कि उन्होंने क्या किया कॉकपिट में. हमला के बाद उन्होंने जख्मी होते हुए कॉकपिट के दरवाज़ा को खुला रखा. डिटेल में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है आपको पता है कि क्या हुआ, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये एक प्रेजेंस ऑफ माइंड थी, जैसे आपने बताया कि इसका कोई ट्रेनिंग नहीं होता है सर.
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसका एक शब्द बोल दूं मैं, कि जैसे वो गिर गया जैसे नीचे कॉकपिट में, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि अभी जो करना है वो अभी कर ले, अदरवाइज कुछ नहीं होएगा. तो फिर उसके मन में एक विचार आया कि अभी फाइट करना ही एक रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है दूसरा, और उसने एक्शन लिया और सक्सेस हो गया. और उसके मन में एक बात पक्की थी कि मेरे हिसाब से पीछे के जितने भी पैसेंजर थे किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए, वो

0: उसके मन में पूरा भरा हुआ था, तो उस चीज ने ऊपर वाले ने सपोर्ट किया और ये पूरा सक्सेस हो गई। बात
1: भूपेंद्र भाई, क्या स्मिथ हमेशा ऐसे ही थे, सेल्फलेस, औरों के लिए ऐसे बिहेव करना? उनका ट्रेनिंग था एक पायलट के हिसाब से, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग वो कभी भी ऐसे ही थे?
0: एक्चुअली बोलूं तो वो आज समझो 17 साल से फ्लाइंग कर रहा है, और इस 17 साल के अंदर उसने सैकड़ों पायलटों को किस तरीके से इंटरव्यू देना है, किस तरीके से अपने को ये चीज समझना चाहिए, वो उसके पहले से नेचर में है। वो फ्लाइंग के बारे में एकदम से उसका मतलब, वो वाइफ है उसकी, ऐसा समझ लो
1: जी।
0: उसको फ्लाइंग मतलब और कुछ समझता ही नहीं, बोलता मेरे को ज्यादा अच्छे से अच्छा फ्लाइंग करना है।
1: और जब वो ठीक हो जाएंगे भूपेंद्र भाई, क्या वो फ्लाइंग कंटिन्यू करेंगे?
0: वो ना बोलेगा ही नहीं कभी भी कि मैं नहीं करूंगा ऐसा। और क्या? मैं भी चाहूंगा कि वो करे, क्यों नहीं करेगा, करेगा।
1: क्या आप उनके पिताजी हैं, आप कुछ एडवाइस दे रहे हैं उनको, आपने कुछ बताया उनको?
0: अभी आज से शुरू होएगा हमारी डिस्कशन जो भी हो।
1: ये एक टेरर इंसिडेंट था भूपेंद्र जी, सारा दुनिया इसके बारे में बात कर रहा है, सारा दुनिया आपके बेटे का प्रशंसा कर रहा है अभी। क्या आपको लगता है कि एक पूरा एक ग्लोबल स्पॉटलाइट बन गया है आपके परिवार को लेकर? अब
0: जरूर ऐसा इंसिडेंट हुआ है, हम लोग तो एक आप बोलेंगे तो साधारण से हम लोग सिंपल जीवन जीने वाले आदमी हैं, और सब लोग पहले बोलते थे कि प्राउड मोमेंट है, प्राउड मोमेंट है। मेरे हमारे घर में मेरे और मेरी वाइफ को और उनकी वाइफ को एक ही विचार आता था कि प्राउड मोमेंट भले है, लेकिन हमको हमारे लड़के को देखना है अच्छी तरह से पहले।
1: जी बिल्कुल। और जैसे प्रधानमंत्री ने कन्वे किया भूपेंद्र भाई, आज आपने देखा वो वीडियो जिसमें उन्होंने बोला है कि इंडिया का प्रेयर्स जो है, प्रार्थना जो है, जो कन्वे किया स्मिथ को, वो बिल्कुल सही है। पूरा नेशन, एंटायर इंडिया आपके बेटे के लिए प्रार्थना कर रहा है, प्रे कर रहा है अभी।
0: सही है, सही है, वो मैंने भी सुना और मैंने देखा कुछ वीडियो, और पूरे देशवासी को मैं पूरा आभार मानूंगा सबका के इस तरीके से सबने इतना अच्छा मेरे बेटे के लिए प्रार्थना की, और ये सब लोग का आशीर्वाद है कि वो जल्दी रिकवर हो जाएगा, और मेरे को विश्वास है कि वो अगेन वापस आएगा और अच्छी तरह से फ्लाइंग करेगा।
1: भूपेंद्र भाई, स्मिथ की माँ की रिएक्शन क्या थी जब ये हुआ था, उनकी रिएक्शन क्या थी? सर
0: बहुत सेंसिटिव है, हम दोनों सेंसिटिव है बहुत ही, और हम लोग ने एक ही श्रद्धा रखा था कि भगवान जो भी करेगा अच्छा ही करेगा, अपने साथ बुरा नहीं होगा।
1: और उनकी उनकी पत्नी और उनके छोटा बच्चा भी है, उनका क्या रिएक्शन था? ये एक बहुत ही सीरियस इंसिडेंट
0: था। हम लोग को बहुत ही डर लग रहा था, क्योंकि वो दोनों बच्चे और स्मिथ की वाइफ दुबई में थे, हम लोग बॉम्बे में थे, और हम लोग की कंटिन्यूस फोन में बात चल रही थी कि मैं बोला बस भगवान का नाम लेते रहते, हम लोग भी निकल जाते हैं बॉम्बे से जल्दी, और डर ना मत, मैं मतलब हम लोग पहुंच ही रहे बस, कैसे भी करके
1: जी
0: हम लोग ने अपने आप को संभाला है सब लोगों ने।
1: भूपेंद्र जी, आपने देखा होगा कि इज़राइल के प्रधानमंत्री, इंडिया के प्रधानमंत्री और बहुत सारे ग्लोबल लीडर्स ने आपके बेटे को प्रेज़ किया है। बातचीत चल रही है कि शायद इज़राइल में एक ऑनर भी मिलेगा स्मिथ को, इसको लेकर आप क्या बोलेंगे?
0: बस बहुत खुशी हो रही है फादर मदर हम लोग दोनों को, बहुत अच्छा बात हुआ है, और जीवन जीवन में ऐसा मौका मिले तो जीवन अच्छा जिया ऐसा प्रूव हो जाएगा कि भाई कुछ किया अपन जीवन में।
1: और यहाँ इंडिया में कुछ पॉलिटिशियंस ने ऑलरेडी एक कॉन्वर्सेशन जारी किया, मिलिंद देवरा ने एक चिट्ठी लिखा है प्रधानमंत्री को कि अशोक चक्र मिलना चाहिए स्मिथ को, क्या आप सहमत हैं अशोक चक्र मिलना चाहिए स्मिथ को?
0: नहीं, मैं इस चीज के लिए नहीं बोल सकता हूँ।
1: क्या आपको लगता है कि स्मिथ को वापस आना चाहिए या दुबई से ही काम करेंगे आगे जाकर? भूपेंद्र जी, आप उनके पिताजी हैं, आपके वरीज भी हैं, आप कंसर्न भी हैं, क्या आपको लगता है उनको वापस आना चाहिए भारत?
0: वो काम शायद जहां कर रहा है वहीं करेगा।
1: इसको लेकर जो इम्पैक्ट होगा एविएशन पर, भूपेंद्र जी थोड़ा डिटेल में आपका जो अंडरस्टैंडिंग है इसके बारे में बताइए, क्योंकि जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स था कॉकपिट में उसको लेकर क्या आपको लगता है कि सिक्योरिटी लेकर, टेरर लेकर, एविएशन को लेकर असर पड़ेगा?

0: अब
1: अभी वो अपनी कंपनी का सब लोग अपने हिसाब से देखेंगे, लेकिन ऐसा ऐसा चीज बहुत सालों में एक बार होता है और वो नहीं होना चाहिए प्रैक्टिकली, और उसके लिए जो भी चौकसाई करनी होगी वो कंपनी वाले करेंगे जरूर।
0: एक एक बात बताइए भूपेंद्र जी, सारा दुनिया आपका आपके बेटे को जानता है, अब उनका नाम पूरा रोशन हो गया है, लेकिन जो ओमानी को पायलट था जो स्मिथ के साथ ऑपरेट कर रहा था इस फ्लाइट में, उसका नाम किसी को पता नहीं है, उसका आइडेंटिटी किसी को पता नहीं है, बिल्कुल सीक्रेट है ये, इसके बारे में आपका क्या सोच है?
1: मेरे को उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है।
0: किसी ने क्या आपको ब्रीफ किया है कि क्या हुआ था उस कॉकपिट में? किसी सिक्योरिटी एजेंसी ने आपको क्या ब्रीफ किया है?
1: नहीं, मैं ब्रीफ करूंगा मेरे बेटे के साथ ही, जो भी समझना है पूरा उनके साथ ही।
0: जो ग्लोबल मीडिया में आपके बेटे के बहादुरी को लेकर जो मीडिया स्टोरीज चल रहे हैं, उसको लेकर आप क्या बोलेंगे भूपेंद्र जी? क्योंकि जैसे मैंने बताया इस इंटरव्यू के पहले, स्मिथ मच्छर जो है एक इंडियन पायलट नहीं है, अब एक वो ग्लोबल एक बहादुरी के एक आइकॉन है ऑलमोस्ट। क्या ये सही है? ही इज अ ग्लोबल सिटीजन नाउ सर।
1: ऊपर वाले की मेहरबानी है।
0: क्या आप सिटीजन्स को कुछ बोलना चाहेंगे एज द फादर ऑफ स्मिथ मच्छर, द मोस्ट फेमस इंडियन पायलट ऑफ आर जेनरेशन सर? उन्होंने जो किया है इंडिया को प्राउड किया है, क्या सिटीजन्स को कुछ बताएंगे? अब बहुत सारे यंग जेंजी भी देख रहे हैं अभी, स्मिथ जो है 38 साल के हैं, कुछ मैसेज है आपका?
1: मैं खाली एक स्मिथ का एक आपको नेचर और हमारा फैमिली का जो चलने का रास्ता है वो मैं खाली अपने जेंजी को खाली बोल सकता हूँ कि जो रिस्पेक्ट आज स्मिथ फादर मदर को दे रहा है और जिस तरीके से अपने फैमिली के साथ वो अच्छा लाइफ जी रहा है, तो जितना अच्छा सोचेंगे जितना अच्छा काम करेंगे उतना ऊपर वाला हेल्प करेगा जब भी तकलीफ आएगी। तो मैं यंगस्टर्स को जो अपग्रोन है अभी जो नया लाइन में जाना चाहते हैं या अभी उनके हाथ में कोई सब्जेक्ट आया नहीं है, तो एक ही बात बोलूंगा कि सच्चाई और ईमानदारी है ना वो हमेशा जीतती है, और उसी को पकड़ के चलना वही अपने लिए सक्सेसफुल रहेगा, तो आगे अपना इंडिया में सब जन अच्छी तरह से रह पाएंगे।
0: जी बिल्कुल। और
1: धन्यवाद। अभी
0: भूपेंद्र जी आखिरी सवाल, एक जो मोस्ट वायरल कमेंट है इस इंटरेक्शन में प्रधानमंत्री के साथ, वो था हनुमान चालीसा को लेकर। क्या स्मिथ बहुत रिलीजियस माइंडेड है, बहुत विश्वास रखते हैं हनुमान जी में आपके परिवार में, इसके बारे में बताइए सर।
1: खाली एक ही लाइन में बोलूंगा कि हम लोग के घर में एक सिस्टम है कि एक सोते टाइम हम लोग हनुमान चालीसा सुनते हैं और लाइट ऑफ करते हैं, और सुबह स्मिथ ने एक अपने छोटे बच्चे को रोज सुबह मंदिर में बैठ के हनुमान चालीसा बोलने का काफी दिनों से चालू किया है, तो हमको खुशी है हम लोग के घर में इस तरीके का सबका। ठीक है जी,
0: भूपेंद्र जी एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वी आर सो प्राउड ऑफ स्मिथ मच्छर, थैंक यू वेरी मच, वी विश यू द वेरी बेस्ट, वी विश हिम अ स्पीडी रिकवरी, एंड आई नो यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग हिम अगेन आफ्टर ही हैज जस्ट स्पोकन टू द प्राइम मिनिस्टर। थैंक यू वेरी मच भूपेंद्र मच्छर, फादर ऑफ द हीरो इंडियन पायलट स्मिथ, स्पीकिंग फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव हियर on NDTV. Now, viewer, India has no publicly announced direct role in the investigation into the Fly Dubai airplane terror incident. But I want to say tonight that India cannot afford to be on the sidelines and let other countries carry out this investigation. Now, hear me out. Let me explain why I'm saying this. Now, Captain Smith Mach'ar is an Indian citizen. He's an Indian national. He was grievously assaulted by his Omani co-pilot and airline colleague, a man Israel believes was radicalized and intent on bringing down the aircraft 3 days ago. Now, whether the intention was to crash it or use it against a ground target remains to be established. But an Indian national was attacked. And India has a direct stake, therefore, in the answers of this investigation. Saudi Arabia, the UAE and Israel are investigating. The country over which the attack happened, which is Saudi. The country from which the aircraft departed, which is UAE. and the country

0: जो होना है वो तो होना ही है, रंगीले तू सदा मुस्कुरा, सदा सदा सदा मुस्कुरा, रंग रंग रंग रंग रंग रंगीन रंग रंगीन रे, देखो कैसे भी हो दिन रंग बना रहे,
1: बोझ पेंट्स रंग बना रहे।
2: यू वॉच अस व्यूअर, यू ट्रस्ट अस, एंड नाउ योर वोट कैन स्पीक फॉर व्हाट वी मीन टू यू। Vote for NDTV at the ITA Awards 2026. You've got that power. Your support has always been an important part of NDTV's journey. And at the ITA Awards 2026, we are asking for your vote. Vote for NDTV and show your support for the journalism

0: अगर स्मॉल होता तो मैं साथ में होता। और जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: everyone is getting ready for the evening. A few pictures, a little waiting. Inside, the stage is set.
1: Well, you've heard of clubbing in dark rooms, but you've ever heard of bhajan clubbing? I'm currently present at one such event, and honestly, I'm also very curious to see what it looks like. This is what it's looking like before the event. The big question, of course, is who's going to be here at the event? Is it going to be youngsters? Is it going to be some people from the old generation? What are they going to be listening to? Is it going to be songs? Is it going to be bhajans? What's it going to look like? This is what it's looking like right before the event. We are curious to find out what exactly bhajan clubbing holds for us. Come, let's find out.
0: On stage, Keshavam. Their description of this sound, devotional rock. For Lavish, Sheetal, the devotional part came first.
2: मैंने अपनी शुरुआत श्रीगंगानगर राजस्थान से की और मैं जागरण करता था बचपन से ही तो माता रानी के जागरण जो कि
0: फॉर प्रकृति टू दिस म्यूजिक वाज पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप
3: बेसिकली मेरे जो घर का थोड़ा माहौल था वो थोड़ा स्पिरिचुअल रहा है बचपन से ही तो मैं बचपन से ही मतलब भगवान जी के भजन गाती थी और मतलब हमारे गुरु जी के मंदिर में मैं प्रोग्राम करती थी वही मतलब बचपन से वो माहौल रहा है
0: दे हैड सांग भजन्स दे हैड परफॉर्म्ड बॉलीवुड म्यूजिक देन केम एन आइडिया व्हाट कुड रॉक ब्रिंग टू द मिक्स
1: द एनर्जी हियर इज इलेक्ट्रिक इट्स एक्सट्रीमली हाई दैट

से ढाई साल पहले हमारे दिमाग में आया कि इन दोनों जो म्यूज़िक के हमारे ये लैंग्वेजेस हैं, जो हमारे स्टाइल्स हैं, रॉक स्टाइल है और देसी है, इनको अगर हम कंबाइन करें, डिवोशनल को भी तो रॉक में कन्वर्ट किया जा सकता है, ताकि एक नया रूप, एक नया रंग आए।

0: But a new sound doesn't arrive with an audience attached.
1: कई इवेंट्स हमने ऐसे किए हैं जहाँ पे मुश्किल से हमें 10 लोग सुनने आए हैं. वो जो एक डेढ़ साल था वो लोगों को ये समझाने में हमें टाइम लगा कि हाँ डिवोशनल म्यूजिक इस तरीके से भी हो सकता है, ये म्यूजिक का जो कॉन्सेप्ट है ये ऐसे भी किया जा सकता है.

हमने उसमें डिवोशनल म्यूजिक में रॉक स्टाइल तो जोड़ा, लेकिन जो भजन की जो कहते हैं ना रूह है उसको ख़त्म नहीं किया, उसका जो फील है उसको वैसे का वैसे ही रखा, बस मॉडर्नाइज कर दिया।

0: प्रेसिडेंट क्लबिंग का एक्सपीरियंस था, आज हमने बहुत ज़्यादा मज़ा करा, मतलब मेरा फर्स्ट टाइम ने लाइफ में अटेंड करा है प्रेसिडेंट क्लबिंग।
1: एक्चुअली में सब बढ़ती था, लाइक बहुत ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट था, एक्सपीरियंस इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था, आने में इंटरेस्टिंग था, चेंजेस के साथ जुड़ने का नया तरीका है, इम्प्रेसिव, पूरा ओवरऑल इम्प्रेसिव।

0: सो नाइस. लाइक मैंने इससे पहले भी फ्रेशर्स अटेंड किया और उसकी जो म्यूज़िक होता है उसके बाद आपका सर बस करता है, कानों में दर्द होता है, बट आफ्टर भजन क्लबिंग इतना स्मूदिंग फील हो रहा है, कोई इरिटेशन नहीं है, एकदम फ्रेश हो जाता है ना मन, वो फ्रेशनेस आई है.
1: That evening, there was also seemingly an unexpected addition to the audience.
2: We were told that there might be some VIP moments right before the show, and we didn't know who exactly it could be, but we saw a lot of security arrangements happening.

0: मैं तो शॉक्ड हो गया था जब मैं सुन रहा हूँ कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं। हम सारे दोस्त मिल के हमने वो फ़ोन से बनाया था, वी लव यू मोदी जी। तो ये बहुत प्यारा मोमेंट था हमारे लिए।
1: कुछ प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ पाइप कर रहे थे, इट वॉज यू नो वेरी ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट, यू नो वेरी ग्लैमरस एनवायरनमेंट।

0: विचार आया कि अभी फाइट करना ही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है दूसरा, और उसने एक्शन लिया और सक्सेस हो गया। और उसके मन में एक बात पक्की थी कि मेरे हिसाब से पीछे के जितने भी पैसेंजर थे वो किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए, वो उसके मन में पूरा भरा हुआ था।
1: And then there is the other side of Smith's life. His wife and two children are in Dubai, while his parents are in Mumbai. His father described flying as central to his son's life, saying that Smith is deeply committed to his profession. For millions, Captain Smith Machhar is now the face of a remarkable aviation survival story. For his former colleagues, he is the senior pilot they knew as calm and knowledgeable. For his childhood friends, he is the boy they grew up with. For his parents, he is simply their son. And for the passengers aboard flight FZ-1073, he is the captain who, even after being seriously injured, kept fighting to get that cockpit door open. Today, Smith Machhar is recovering in an Abu Dhabi hospital. The investigation into exactly what happened inside that cockpit continues. But the story of the pilot himself is already much bigger than the incident that made him famous.
2: Well, at 35,000 feet, inside the cramped, locked confines of a cockpit, there is no escape. There is perhaps no calling for backup. There is only training, there's instinct, and raw human grit. Captain Machhar fought off the attacker, wrestled control of the aircraft, and brought 174 passengers safely down to earth. Listen in to what his father, Bhupendra Machhar, told us on NDTV. His first reaction wasn't pride, it was pure parental fear. He rushed to a temple, lit a lamp, and prayed that no bad news should come.
3: Bhupendra Bhai Machhar, he is the father of hero pilot Smith Machhar, whose son has made the entire country proud and is now a global icon of courage. Bhupendra Bhai, NDTV par aapka swagat hai. Aapke bete par pura desh ka garv hai. Kya aap bata sakte hain Bhupendra Bhai, Smith abhi kaisa hai? उनकी तबीयत कैसी है? उनकी अभी जो वीडियो सामने आया है प्राइम मिनिस्टर के साथ बातचीत करते हुए साफ नज़र दिखाई देता है कि वो ठीक है। आप एक अपडेट दीजिए कि वो कैसे हैं, आपका बेटा कैसा है अभी भूपेंद्र भाई?
0: जैसा आपने देखा वीडियो में वही चीज़ मैंने भी देखी है आज, क्योंकि मैं आज उनको कल में मिला था 10 मिनट के लिए, तभी वो थोड़ा पूरे कंट्रोल में नहीं था। थोड़ी सी बात करके फिर डॉक्टरों ने भी बोला कि आज अपलिफ्ट हुआ है, तो अपन शांति से बात करें तो बेटर है। तो आज हम लोग वहां पहुंच रहे हैं, थोड़े टाइम में हम ऑन द वे ही है। और जितना आपने देखा नरेंद्र मोदी के साथ बात करते हुए, मेरे को भी बहुत खुशी हुई कि आज वो अच्छे फेज में है और अच्छी बात कर रहा है, तो भगवान का बहुत बड़ा शुक्र है।
3: स्मिथ ने आपको क्या बताया जब आप मिले उनसे भूपेंद्र भाई? आपको क्या बताया कल?
0: एक्चुअली कल हम लोग ने एक बात रखी थी कि इस इंसिडेंट के बारे में आज कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि वो अभी भी उतने ही वो फेज में था। तो मैंने सोचा कि आज स्मिथ अपन एक खाली भगवान की बहुत मेहरबानी समझ के आज हम लोग गले मिलते हैं, कोई उसकी बात नहीं करेंगे। आज बहुत सब लोग खुश होकर बात कर 10 मिनट बैठेंगे हम लोग तेरे साथ। तो कल की हमारी कोई भी बात में हमने उसको कोई वो चीज को याद नहीं दिलाया, मतलब वो बात ही मत छेड़ना, अभी अपन शांति से कल बात करेंगे।
3: भूपेंद्र भाई, स्मिथ के जख्म कितना सीरियस हैं? इन तस्वीरों में दिखाई देता है कि वो हॉस्पिटल में है, वो ट्रीटमेंट जारी है। डॉक्टर्स का क्या कहना है भूपेंद्र भाई?
0: डॉक्टर्स ने बोला है कि समय लगेगा ये जख्म को क्लियर करने में, और सर पे भी लगा है, दोनों हाथ से भी लगा है, और सर पे कुछ ऑपरेट भी हुआ है, स्टिचेस भी आए हैं काफी। तो अभी एकदम डिटेल में मैं आज नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जख्म है और शायद अच्छा टाइम जाएगा इसको क्लियर होने में।
3: भूपेंद्र भाई, आप स्मिथ के पिताजी हैं, आप और स्मिथ के माँ, क्या महसूस हुआ जब आपने सुना कि ये हादसा हुआ था आपके बेटे के साथ? आपका क्या रिएक्शन था, क्या महसूस किया आपने?
0: जैसे जैसे हर माँ बाप का हो गए, सबसे पहले एक ही विचार खराब आ जाता है, और तुरंत हमने हमारे भगवान के पास दिया किया और बोला, भगवान कुछ भी हो जावे खराब

0: crisis was that no passenger should lose their life.
1: के मन में एक विचार आया कि अभी फाइट करना ही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है दूसरा और उसने एक्शन लिया और सक्सेस हो गया और उसके मन में एक बात पक्की थी कि मेरे हिसाब से पीछे के जितने भी पैसेंजर थे वो किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए वो उसके मन में पूरा भरा हुआ था.
0: And then there is the other side of Smith's life. His wife and two children are in Dubai, while his parents are in Mumbai. His father described flying as central to his son's life, saying that Smith is deeply committed to his profession. For millions, Captain Smith Machhar is now the face of a remarkable aviation survival story. For his former colleagues, he is the senior pilot they knew as calm and knowledgeable. For his childhood friends, he is the boy they grew up with. For his parents, he is simply their son. And for the passengers aboard flight FZ1073, he is the captain who, even after being seriously injured, kept fighting to get that cockpit door open. Today, Smith Machhar is recovering in an Abu Dhabi hospital. The investigation into exactly what happened inside that cockpit continues. But the story of the pilot himself is already much bigger than the incident that made him famous.
2: Well, at 35,000 feet, inside the cramped, locked confines of a cockpit, there is no escape. There is perhaps no calling for backup. There is only training, there's instinct, and raw human grit. Captain Machhar fought off the attacker, wrestled control of the aircraft, and brought 174 passengers safely down to earth. Listen in to what his father, Bhupendra Machhar, told us on NDTV. His first reaction wasn't pride, it was pure parental fear. He rushed to a temple, lit a lamp, and prayed that no bad news should come.
3: Bhupendra Bhai Machhar, he is the father of hero pilot Smith Machhar, whose son has made the entire country proud and is now a global icon of courage. Bhupendra Bhai, NDTV par aapka swagat hai. आपके बेटे पर पूरा देश का गर्व है. क्या आप बता सकते हैं भूपेंद्र भाई, स्मिथ अभी कैसा है, उनकी तबीयत कैसी है? उनकी अभी जो वीडियो सामने आया है प्राइम मिनिस्टर के साथ बातचीत करते हुए, साफ नज़र दिखाई देता है कि वो ठीक है. आप एक अपडेट दीजिए कि वो कैसे हैं, आपका बेटा कैसा है अभी भूपेंद्र भाई?
1: जैसा आपने देखा वीडियो में, वही चीज मैंने भी देखी आज, क्योंकि मैं आज उनको कल में मिला था 10 मिनट के लिए. तभी वो थोड़ा पूरे कंट्रोल में नहीं था. थोड़ी सी बात करके फिर डॉक्टरों ने भी बोला कि आज अपलिफ्ट हुआ है तो अपन शांति से बात करें तो बेटर है. तो आज हम लोग वहां पहुंच रहे हैं थोड़े टाइम में, हम ऑन द वे ही है. और जितना आपने देखा नरेंद्र मोदी के साथ बात करते हुए, मेरे को भी बहुत खुशी हुई कि आज वो अच्छे फेज में है और अच्छी बात कर रहा है. तो भगवान का बहुत बड़ा शुक्र है.
3: स्मिथ ने आपको क्या बताया जब आप मिले उनसे भूपेंद्र भाई, आपको क्या बताया कल?
1: एक्चुअली कल हम लोग ने एक बात रखी थी कि इस इंसिडेंट के बारे में आज कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि वो अभी भी उतने ही वो फेज में था. तो मैंने सोचा कि आज स्मिथ अपन एक खाली भगवान की बहुत मेहरबानी समझ के आज हम लोग गले मिलते हैं, कोई उसकी बात नहीं करेंगे. आज बहुत सब लोग खुश होकर बात कर 10 मिनट बैठेंगे हम लोग तेरे साथ. तो कल की हमारी कोई भी बात में हमने उसको कोई वो चीज को याद नहीं दिलाया. मैं बोला वो बात ही मत छेड़ना, अभी अपन शांति से कल बात करेंगे.
3: भूपेंद्र भाई, स्मिथ के जख्म कितना सीरियस है? इन तस्वीरों में दिखाई देता है कि वो हॉस्पिटल में है, वो ट्रीटमेंट जारी है. डॉक्टर्स का क्या कहना है भूपेंद्र भाई?
1: डॉक्टर्स ने बोला है कि समय लगेगा ये जख्म को क्लियर करने में, और सर पे भी लगा है, दोनों हाथ से भी लगा है, और सर पे कुछ ऑपरेट भी हुआ है, स्टिचेस भी आए हैं काफी. तो अभी एकदम डिटेल में मैं आज नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जख्म है और शायद अच्छा टाइम जाएगा इसको क्लियर होने में.
3: भूपेंद्र भाई, आप स्मिथ के पिताजी हैं, आप और स्मिथ के माँ, क्या महसूस हुआ जब आपने सुना कि ये हादसा हुआ था आपके बेटे के साथ? आपका क्या रिएक्शन था, क्या महसूस किया आपने?
1: जैसे जैसे हर माँ बाप का हो, सबसे पहले एक ही विचार खराब आ जाता है, और तुरंत हमने हमारे भगवान

0: कितना सीरियस हैं, इन तस्वीरों में दिखाई देता है कि वो हॉस्पिटल में है, वो ट्रीटमेंट जारी है, डॉक्टर्स का क्या कहना है भूपेंद्र भाई?
1: डॉक्टर्स ने बोला है कि समय लगेगा ये जख्म को क्लियर करने में, और सर पे भी लगा है, दोनों हाथ से भी लगा है, और सर पे कुछ ऑपरेट भी हुआ है, स्टिचेस भी आए हैं काफी। तो अभी एकदम डिटेल में मैं आज नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जख्म है और शायद अच्छा टाइम जाएगा इसको क्लियर होने में।
0: भूपेंद्र भाई, आप स्मित के पिताजी हैं, आप और स्मित के माँ, क्या महसूस हुआ जब आपने सुना कि ये हादसा हुआ था आपके बेटे के साथ? आपका क्या रिएक्शन था, क्या महसूस किया आपने?
1: जैसे जैसे हर माँ बाप का होवे, सबसे पहले एक ही विचार खराब आ जाता है, और तुरंत हमने हमारे भगवान के पास दिया किया और बोला, भगवान कुछ भी हो जावे, खराब न्यूज नहीं आना चाहिए, आप बचा लेंगे।
0: लेकिन आप में विश्वास था कि आपका बेटा स्मित ऐसे करेगा, ऐसे ही बहादुरी दिखाएगा इस हादसे में? आप में विश्वास था?
1: देखो देखो, ये इस चीज की कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, जैसे आप भी वो चीज समझते हो, लेकिन एक ऊपर वाले की मेहरबानी रहेगी, कोई शक्ति उसके साथ आ गई और उसने ये जो प्रॉब्लम आया उसको सॉल्व किया, अपना पूरा सबके लिए गर्व की बात हो गई। और मैं भी बोलूंगा कि इसमें ज्यादातर भगवान की मेहरबानी है, हम लोग ज्यादा धर्मिष्ठ थे पूरे घर वाले
0: जी। और भूपेंद्र भाई, आपकी बेटे की बहादुरी भी थी, आपने डिटेल में देखा है कि उन्होंने क्या किया कॉकपिट में, हमला के बाद उन्होंने जख्मी होते हुए कॉकपिट के दरवाज़ा को खुला रखा, डिटेल में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है आपको पता है कि क्या हुआ, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये एक प्रेजेंस ऑफ माइंड थी, जैसे आपने बताया कि इसका कोई ट्रेनिंग नहीं होता है सर।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उसका एक शब्द बोल दूं मैं, के जैसे वो गिर गया जैसे नीचे कॉकपिट में, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि अभी जो करना है वो अभी कर ले, अदरवाइज कुछ नहीं होएगा। तो फिर उसके मन में एक विचार आया कि अभी फाइट करना ही एक रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है दूसरा, और उसने एक्शन लिया और सक्सेस हो गया। और उसके मन में एक बात पक्की थी कि मेरे हिसाब से पीछे के जितने भी पैसेंजर थे वो किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए, वो उसके मन में पूरा भरा हुआ था। तो उस चीज ने ऊपर वाले ने सपोर्ट किया और ये पूरा सक्सेस हो गई बात।
0: भूपेंद्र भाई, क्या स्मित हमेशा ऐसे ही थे, सेल्फलेस, औरों के लिए ऐसे बिहेव करना उनका ट्रेनिंग था एक पायलट के हिसाब से, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग वो कभी भी ऐसे ही थे?
1: एक्चुअली बोलूं तो वो आज समझो 17 साल से फ्लाइंग कर रहा है, और इस 17 साल के अंदर उसने सैकड़ों पायलटों को किस तरीके से इंटरव्यू देना है, किस तरीके से अपने को ये चीज समझना चाहिए, वो उसके पहले से नेचर में है, वो फ्लाइंग के बारे में एकदम से उसका मतलब, वो वाइफ है उसकी ऐसा समझ लो
0: जी,
1: उसको फ्लाइंग मतलब और कुछ समझता ही नहीं, बोलता है मेरे को ज्यादा अच्छे से अच्छा फ्लाइंग करना है।
0: और जब वो ठीक हो जाएंगे भूपेंद्र भाई, क्या वो फ्लाइंग कंटिन्यू करेंगे? फ्लाइंग कंटिन्यू करेंगे
1: वो ना बोलेगा ही नहीं कभी भी कि मैं नहीं करूंगा ऐसा।
0: और
1: मैं भी चाहूंगा कि वो करे, क्यों नहीं करेगा, करेगा।
0: क्या क्या आप उनके पिताजी हैं, आप कुछ एडवाइस दे रहे हैं उनको, आपने कुछ बताया उनको?
1: अभी आज से शुरू होएगा हमारी डिस्कशन जो भी है वो।
0: ये एक टेरर इंसिडेंट था भूपेंद्र जी, सारा दुनिया इसके बारे में बात कर रहा है, सारा दुनिया आपके बेटे का प्रशंसा कर रहा है अभी, क्या आपको लगता है कि एक पूरा एक ग्लोबल स्पॉटलाइट बन गया है आपके परिवार को लेकर? अब
1: जरूर ऐसा इंसिडेंट हुआ है, हम लोग तो एक आप बोलेंगे तो साधारण से हम लोग सिंपल जीवन जीने वाले आदमी है, और सब लोग पहले बोलते थे कि प्राउड मोमेंट है, प्राउड मोमेंट है, मेरे हमारे घर में मेरे और मेरी वाइफ को और उनकी वाइफ को एक ही विचार आता था कि प्राउड मोमेंट भले है लेकिन हमको हमारे लड़के को देखना है अच्छी तरह से पहले।
0: जी बिल्कुल, और जैसे प्रधानमंत्री ने कन्वे किया भूपेंद्र भाई, आज आपने देखा वो वीडियो जिसमें उन्होंने बोला है कि इंडिया का प्रेयर्स जो है, प्रार्थना जो है, जो कन्वे किया स्मित को, वो बिल्कुल सही है, पूरा नेशन एंटायर इंडिया आपके बेटे के लिए प्रार्थना कर रहा है, प्रे कर रहा है अभी।
1: सही है वो, मैंने भी सुना और मैंने देखा कुछ वीडियोस,

0: Amit's life. His wife and two children are in Dubai, while his parents are in Mumbai. His father described flying as central to his son's life, saying that Smit is deeply committed to his profession. For millions, Captain Smit Machhar is now the face of a remarkable aviation survival story. For his former colleagues, he is the senior pilot they knew as calm and knowledgeable. For his childhood friends, he is the boy they grew up with. For his parents, he is simply their son. And for the passengers aboard flight FZ1073, he is the captain who, even after being seriously injured, kept fighting to get that cockpit door open. Today, Smit Machhar is recovering in an Abu Dhabi hospital. The investigation into exactly what happened inside that cockpit continues. But the story of the pilot himself is already much bigger than the incident that made him famous.
1: Well, at 35,000 feet, inside the cramped, locked confines of a cockpit, there is no escape. There is perhaps no calling for backup. There is only training, there's instinct, and raw human grit. Captain Machhar fought off the attacker, wrestled control of the aircraft, and brought 174 passengers safely down to earth. Listen in to what his father, Bhupendra Machhar, told us on NDTV. His first reaction wasn't pride, it was pure parental fear. He rushed to a temple, lit a lamp, and prayed that no bad news should come.
2: Bhupendra Bhai Machhar, he is the father of hero pilot Smit Machhar, whose son has made the entire country proud and is now a global icon of courage. Bhupendra Bhai, NDTV par aapka swagat hai. आपके बेटे पर पूरा देश का गर्व है. क्या आप बता सकते हैं भूपेंद्र भाई, स्मित अभी कैसा है, उनकी तबीयत कैसी है? उनकी अभी जो वीडियो सामने आया है प्राइम मिनिस्टर के साथ बातचीत करते हुए, साफ नज़र दिखाई देता है कि वो ठीक है. आप एक अपडेट दीजिए कि वो कैसे हैं, आपका बेटा कैसा है अभी भूपेंद्र भाई?
3: जैसा आपने देखा वीडियो में, वही चीज मैंने भी देखी आज, क्योंकि मैं आज उनको कल में मिला था 10 मिनट के लिए. तभी वो थोड़ा पूरे कंट्रोल में नहीं था. थोड़ी सी बात करके फिर डॉक्टरों ने भी बोला कि आज अपलिफ्ट हुआ है, तो अपन शांति से बात करें तो बेटर है. तो आज हम लोग वहां पहुंच रहे हैं थोड़े टाइम में, हम ऑन द वे ही है. और जितना आपने देखा नरेंद्र मोदी के साथ बात करते हुए, मेरे को भी बहुत खुशी हुई कि आज वो अच्छे फेज में है और अच्छी बात कर रहा है. तो भगवान का बहुत बड़ा शुक्र है.
2: स्मित ने आपको क्या बताया जब आप मिले उनसे भूपेंद्र भाई, आपको क्या बताया कल?
3: एक्चुअली कल हम लोग ने एक बात रखी थी कि इस इंसिडेंट के बारे में आज कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि वो अभी भी उतने ही वो फेज में था. तो मैंने सोचा कि आज स्मित अपन एक खाली भगवान की बहुत मेहरबानी समझ के आज हम लोग गले मिलते हैं, कोई उसकी बात नहीं करेंगे. आज बहुत सब लोग खुश होकर बात कर 10 मिनट बैठेंगे हम लोग तेरे साथ. तो कल की हमारी कोई भी बात में हमने उसको कोई वो चीज को याद नहीं दिलाया. मतलब वो बात ही मत छेड़ना अभी, अपन शांति से कल बात करेंगे.
2: भूपेंद्र भाई, स्मित के जख्म कितना सीरियस हैं, इन तस्वीरों में दिखाई देता है कि वो हॉस्पिटल में है, वो ट्रीटमेंट जारी है. डॉक्टर्स का क्या कहना है भूपेंद्र भाई?
3: डॉक्टर्स ने बोला है कि समय लगेगा ये जख्म को क्लियर करने में, और सर पे भी लगा है, दोनों हाथ से भी लगा है, और सर पे कुछ ऑपरेट भी हुआ है, स्टिचेस भी आए हैं काफी. तो अभी एकदम डिटेल में मैं आज नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जख्म है और शायद अच्छा टाइम जाएगा इसको क्लियर होने में.
2: भूपेंद्र भाई, आप स्मित के पिताजी हैं, आप और स्मित के माँ, क्या महसूस हुआ जब आपने सुना कि ये हादसा हुआ था आपके बेटे के साथ? आपका क्या रिएक्शन था, क्या महसूस किया आपने?
3: जैसे जैसे हर माँ बाप का हो, सबसे पहले एक ही विचार खराब आ जाता है. और तुरंत हमने हमारे भगवान के पास दिया किया और बोला, भगवान कुछ भी हो जावे, खराब भी उस नहीं आना चाहिए, आप बचा लेंगे.
2: लेकिन आप में विश्वास था कि आपका बेटा स्मित ऐसे करेगा, ऐसे ही बहादुरी दिखाएगा इस हादसे में, आप में विश्वास था?
3: देखो ये इस चीज की कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, जैसे आप भी वो चीज समझते हो. लेकिन एक ऊपर वाले की मेहरबानी रहेगी, कोई शक्ति उसके साथ आ गई और उसने ये जो प्रॉब्लम आया उसको सॉल्व किया, अपना पूरा सबके लिए गर्व की बात हो गई। और मैं भी बोलूंगा कि इसमें ज्यादातर भगवान की मेहरबानी है, हम लोग ज्यादा धर्मिष्ठ थे पूरे घर वाले
2: जी। और भूपेंद्र भाई, आपकी बेटे की बहादुरी भी थी, आपने डिटेल में देखा है कि उन्होंने क्या किया कॉकपिट में, हमला के बाद उन्होंने जख्मी होते हुए कॉकपिट के दरवाज़ा को खुला रखा, डिटेल में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है आपको पता है कि क्या हुआ, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये एक प्रेजेंस ऑफ माइंड थी, जैसे आपने बताया कि इसका कोई ट्रेनिंग नहीं होता है सर।
3: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसका एक शब्द बोल दूं मैं, जैसे वो गिर गया जैसे नीचे कॉकपिट में, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि अभी जो करना है वो अभी कर ले, अदरवाइज कुछ नहीं होएगा। तो फिर उसके मन में एक विचार आया कि अभी फाइट करना ही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है दूसरा, और उसने एक्शन लिया और सक्सेस हो गया। और उसके मन में एक बात पक्की थी कि मेरे हिसाब से पीछे के जितने भी पैसेंजर थे वो किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए, वो उसके मन में पूरा भरा हुआ था। तो उस चीज ने ऊपर वाले ने सपोर्ट किया और ये पूरा सक्सेस हो गई बात।
2: भूपेंद्र भाई, क्या स्मिथ हमेशा ऐसे ही थे, सेल्फलेस, औरों के लिए ऐसे बिहेव करना उनका ट्रेनिंग था एक पायलट के हिसाब से, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग वो कभी भी ऐसे ही थे?
3: एक्चुअली बोलूं तो वो आज समझो 17 साल से फ्लाइंग कर रहा है, और इस 17 साल के अंदर उसने सैकड़ों पायलटों को किस तरीके से इंटरव्यू देना है, किस तरीके से अपने को ये चीज समझना चाहिए, वो उसके पहले से नेचर में है, वो फ्लाइंग के बारे में एकदम से उसका मतलब, वो वाइफ है उसकी ऐसा समझ लो
2: जी,
3: उसको फ्लाइंग मतलब और कुछ समझता ही नहीं, बोलता है मेरे को ज्यादा अच्छे से अच्छा फ्लाइंग करना है।
2: और जब वो ठीक हो जाएंगे भूपेंद्र भाई, क्या वो फ्लाइंग कंटिन्यू करेंगे?
3: वो ना बोलेगा ही नहीं कभी भी कि मैं नहीं करूंगा ऐसा।
2: और
3: मैं भी चाहूंगा कि वो करे, क्यों नहीं करेगा, करेगा।
2: क्या क्या आप उनके पिताजी हैं, आप कुछ एडवाइस दे रहे हैं उनको, आपने कुछ बताया उनको?
3: अभी आज से शुरू होएगा हमारी डिस्कशन जो भी हो।
1: Well, Captain Smith Max, extraordinary actions aboard the Fly Dubai flight have triggered a growing chorus of calls to honor him. From national recognition to bravery awards, the demand is clear. The pilot who put the lives of his passengers ahead of his own should be formally recognized for his bravery and courage as well.
4: Captain Smith Machar, the hero, the man of the moment, and the savior of over 180 passengers, fought to keep them safe even as his own life was at grave risk. Today, that courage is being remembered and a nation is asking for it to be honored. From the Ashok Chakra to the Bharat Ratna and National Bravery Honors, calls are growing to recognize the hero pilot who put his passengers' lives ahead of his own. The Federation of Indian Pilots has written to the PMO seeking a National Bravery Award for Captain Smith. The pilot's body says Smith showed extraordinary courage, putting the safety of passengers and crew above his own personal safety. And the call for honor is growing louder. Rajya Sabha MP Milan Deora, former Uttarakhand Chief Minister Harish Rawat, author and lyricist Javed Akhtar, and Shefali Vaidya have publicly praised Smith's courage and called for him to be honored. But while the world salutes his courage, Smith continues his recovery fight. However, he remains stable and is responding well to treatment in Abu Dhabi. His family has also been allowed to meet him at the military hospital.
3: मैं मिला था 10 मिनट के लिए, और जितना आपने देखा नरेंद्र मोदी के साथ बात करते हुए, मेरे को भी बहुत खुशी हुई कि आज वो अच्छे फेज में है और अच्छी बात कर रहा है, तो भगवान का बहुत बड़ा शुक्र है।
4: Seriously injured, yet he continued to respond to the emergency, helping bring the flight and its passengers to safety. A pilot who, in the moment of crisis, chose duty over fear. In fact, he went beyond his call of duty. And today, his courage has traveled far beyond the cockpit. from Prime Minister Narendra Modi to Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. World leaders have publicly acknowledged Captain Smith's bravery. Today, the question is no longer just about what Captain Smith did in that cockpit. It is about how a nation and the world chooses to remember a pilot who put others' lives first. Bureau Report, NDTV.
1: On that note, we're slipping into a very short break. I'm right back. Lots more lineup for you here on NDTV. When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
5: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Raisha Sehgal. What's that to me? How?
1: The show that sets the prime time agenda.
5: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
1: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5 weekdays at 5 p.m. only on NDTV, when it really matters.
6: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
7: You watch us, viewer, you trust us, and now your vote can speak for what we mean to you. Vote for NDTV at the ITA Awards 2026. You've got that power. Your support has always been an important part of NDTV's journey, and at the ITA Awards 2026, we are asking for your vote. Vote for NDTV and show your support for the journalism that you trust, the journalism that matters. It will just take a few moments, and every vote means a great deal to us. So do vote, share the link, and cheer for NDTV.
6: 26th Indian Television Academy Awards. Online voting now open. Log on to ita2026.indiantelevisionacademy.com/NDTV. Vote for the channel you trust. NDTV, when it really matters. India's most powerful defense voices come together.
8: Warfare ke taur tareeke bhi badal rahe hain kyunki nayi technologies ka bhi itni tezi ke sath ijaad ho raha hai. Aise mein is tarah ke aayojan ki zarurat main samajhta hu ki aur adhik badh jati hai.
6: One stage, one defining conversation. NDTV Defense Summit 2026.
2: 5 hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddaramaiah.
9: NDTV stands completely engaged with Karnataka.
10: High rate, check the audio.
2: Let's do it.
11: Breaking story, we're jumping straight into it.
2: We've got a picture of the letter. What is in your letter? You can never predict what's going to happen in Tamil Nadu politics.
7: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
2: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling.
12: For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
7: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
2: The line of control, Shiv Arul, NDTV.
13: I know the feeling of finding the middle of the bat. Now I'm chasing the cleanest swing and the perfect shot.
14: The sport may change. The champion's instinct doesn't.
15: It's not just about the game. It's the mindset, the focus, and the instinct to compete.
16: Across India, on some of the country's finest greens, top golfers take on top business leaders on the fairways.
1: 10 pro-ams, 10 different challenges and 10 courses.
17: India's premier pro-am is back.
14: Season.
1: We are on the show where we talk
16: your politics. Is the chief election commissioner going to resign?
18: No. Sarkar ka ye assessment hai ki iska ground pe ko resonance nahi hai.
19: The damage that had to be inflicted on the government and on the sanctity of the election commission has already been inflicted.
16: The all party meeting hui. Aam Aadmi Party wasn't there. Akhilesh Yadav himself wasn't present there. DMK had boycotted it as well.
20: Na unko bulayenge na wo aaye.
16: Rahul Gandhi told the congressman ki Modi ji ko bharosa hai ki hum satta mein aane wale hain. Mere khud ke party ke logon ko bharosa nahi hai jaane.
21: Perception battle jeetne ke liye ye sab baatein kahi jaati hain.
16: For the home minister to say ki main ek hi mudde par chunav ladne wala hu.
18: Just talks about a deadline. People take him seriously.
16: When that larger political message comes out, you will be right here with us saying, "Politics Zindabad."
22: Launch control 0 to 100.
23: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
24: This car makes no sense, yet it makes every sense.
25: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
23: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
26: By noon, the world has changed. The headlines tell you what happened. Breaking Ground tells you why. We break down the story. We demand answers.
27: There is a deathly silence around this makeshift mass burial ground here in Bharatpur district in Nepal.
28: I want you to reach out to the Maharashtra Chief Minister today through our channel and tell them what you've been through as a father.
29: Marne se bada kya hoga?
28: As a journalist, I can say you're not alone.
27: So you can focus on what really matters. Watch Breaking Ground with me, Vedika Sood. Weekdays 12 to 2 p.m. only on NDTV, when it really matters.
6: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network. Front lines of Kargil, the fury of Operation Sindhu,
30: so many attacks,
6: the chaos and cries of disaster zones, to fighter jet cockpits, and the world's most defining interviews.
30: It's incredible.
6: He has seen history break live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
30: Welcome to Left, Right and Center.
6: Hard facts.
30: War struck country.
6: Hard questions.
30: In the Ukraine.
6: 30 years of trust.
31: In the Kargil area.
30: North Ukraine.
32: In France. In Italy.
30: At Srinagar.
32: I am Mr. France.
30: Vishnu Shom for NDTV.
6: Vishnu Shom. Only on NDTV.

0: He hit me like...
1: No.
0: So many times.
2: मुझे बिल्कुल पता था कि ये एक लास्ट पुश अगर स्मिथ कर ले, दरवाजा बस वही है.
3: Go out. Thank you, Mr. Clark.
2: उस टाइम पे भी मैं सिर्फ हनुमान चालीसा ही बोल रहा था. But at the same time, मुझे इतना भी पता था कि हम सबको नहीं मानते थे कि आज हम लोग देश से दूर हैं, बट हमारी संस्कृति से दूर नहीं होनी चाहिए. उतना मुश्किल होगा मेरा रिकवरी. मैं इसको एक जर्नी की तरह सोच रहा हूँ.
4: Smit Machar, a man who is a household name by now. And finally, the world heard him speak today when he spoke to the Prime Minister of India, Narendra Modi. And this 9-minute, 52-second conversation is something that everyone across the world must hear, especially those in India. Not only because it helps you understand what happened inside the cockpit of that Fly Dubai flight, but also because it shows the clarity and conviction in the mind of Captain Machar. Driven by strong cultural roots, professional experience, and fortitude.
2: मैं उस moment में सर, मैं अपनी life के लिए लड़ रहा था. But एक ऐसा moment था जब मेरे को realize हुआ कि अगर मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं गिर चुका था, मेरे को इतने घाव लग चुके थे कि मैं गिर चुका था नीचे. And उस time पे मैं बोला अगर मैं नहीं उठूंगा, मैं 17 साल से जहाज उड़ा रहा हूँ. मैं पिछले 11 साल से कैप्टन हूँ और मुझे पता चलता है आँख बंद करके भी ये जहाज में क्या हो रहा है. जब मैं नीचे गिरा हुआ था तब मुझे एहसास हो रहा था कि एयरक्राफ्ट नीचे जा रहा है और मुझे बिल्कुल

0: ये एक लास्ट पुशअप स्मिथ कर ले, दरवाजा बस वही है, और तभी भी मैं मार खा ही रहा था, बस वो खोल दिया सर, बाकी सब आ गए, और बाकी सब की भी उतनी उसमें रोल था।
1: और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं है, जान बचाने वाले लोग हैं। और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय भी आपने अपनी जीवन की परवाह नहीं की।
0: आपने सबसे बड़े एक्टर्स और मेरे को इनसे कॉल करके मेरी हौसला अफजाई कर रहे, मुझे बहुत बहुत बहुत गर्व फील हो रहा है। एंड मैं सर, मैं एक सिर्फ पॉजिटिव है कि मैं जब भी मेरे को दर्द होता है, मुझे एक ही चीज आती है, मैं सिर्फ हनुमान चालीसा बोलता हूँ। उस टाइम पे भी मैं सिर्फ हनुमान चालीसा ही बोल रहा था, अब मुझे पता है कि वो भगवान ने मेरे को बचाया। बस आपका एक कॉल आ गया, मेरे को बहुत बहुत गर्व होता है, और अब भी मेरे को हो रहा है, मेरे पे गर्व अब तक नहीं हो रहा था, अब हो गया सर। सॉरी क्या आपके सामने रो रहा हूँ सर, मैं रोज सुबह जब पूजा करता हूँ, मेरा 2 साल का बेटा मेरी गोद में बैठ के मेरे साथ हनुमान चालीसा मैं उसको सुनाता हूँ कि जो मुझे बोला गया है, क्योंकि आज हम लोग देश से दूर है, बट हमारी संस्कृति से दूर नहीं होनी चाहिए।
1: सही बात
0: है, अभी तो यहाँ पे तो वो भी नहीं लगता कि हम देश से दूर है।
2: It's all on camera now. The pilot's account, the wounds on his body, the eyewitnesses. But despite all of this, there are plenty of cynics even now who have gone so far as to call this a false flag operation. Their contention? Why is the identity of the Omani co-pilot and the attacker not made public yet? Many are even asking how an Omani pilot was even in the cockpit of a flight that was headed to Israel. Isn't that a violation of the Fly Dubai rules? Then it's asked, how did the plane plummet 17,000 feet in under 2 minutes and yet saw no significant injuries to the passengers or any significant damage to the body of the plane? There are some people even questioning whether it is too premature to call this a terror attack at all. And then comes the politics. You heard the cynics. Now, hear the silence, if that's possible. The BJP today is questioning the silence of Rahul Gandhi in particular. It has asked, why has there been no statement, no comment, not even a tweet on Captain Smith so far, at a time when this man is being hailed worldwide for his bravery? The BJP has called this a direct result of appeasement politics.
3: जब हर भारतवासी कैप्टन स्मिथ मचार को सैल्यूट कर रहा है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो पब्लिक लाइफ में है, ही इज नॉट अ प्राइवेट इंडिविजुअल, राहुल गांधी के मुंह से ना एक शब्द कैप्टन स्मिथ मचार के पक्ष में निकला, ना एक ट्वीट कैप्टन स्मिथ मचार के पक्ष में किया गया, ना उन्होंने एक वीडियो संदेश कैप्टन स्मिथ मचार या उनके परिवार को।
2: And that brings us to the question today, from the cynics to those who are conspicuous by their silence, who is trying to cast a shadow over the bravery of Captain Smith Machar. Joining us today on the show, we have Abhijit Iyer Mitra, geopolitical expert. We also have Sanjay Lazar, aviation expert. Joining us is political analyst Kapil Madan. Kapil Madan, would you want to first respond to that very direct political attack from the BJP? Why has there been no statement from Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi, Sonia Gandhi about Captain Smith Machar?
4: Padmaja, let me begin by saying Captain Smith is a India's hero. What he's done is, you know, heroic. What, you know, his valor, his courage, his determination, his, you know, commitment to his duty, it was extraordinary, and he deserves a million salutes for what he's done. But having said that, let me also say this particular issue, Captain Smith, is not BJP's political property. Now, what is happening right now is BJP is trying to judge or make a yardstick of patriotism by setting a Twitter deadline. Look, you know, till now there has

0: सा परिवार के बारे में बताइए, क्योंकि आज जब पहली बार हमने स्मिथ को प्रधानमंत्री से बात करते हुए सुना तो एक अलग ही उनका एक पर्सपेक्टिव है वो सामने आया, उनके बच्चों के बारे में, हनुमान चालीसा पढ़ने के बारे में, गीता बहन के बारे में, तो थोड़ा सा परिवार के बारे में बताइए।
1: अभी आप बोलते हो तो मैं बोलता हूं कि स्मिथ है ना, बचपन से एक उनकी ख्वाहिश थी कि मुझे पायलट बनना है, आप उसको बोलो अरमान बोलो, महत्वाकांक्षा बोलो, आशा बोलो, वो लड़के ने करके दिखाया बन के। और उनकी जो वाइफ है सोनल, उन्होंने उसको बहुत साथ सहकार और सहयोग दिया। और मीत है बिजनेस कम्युनिटी में से आता है। और दूसरी बात, आप उनका रहन सहन खुद का उनका, उसमें आस्था श्रद्धा विश्वास बेहिसाब थे, बेहिसाब है। वो बोलते हैं ना किसी का भला करना, ये उनकी एक आदत है। जैसे कि मैं चार लाइन में आपको बोलूं कि बिछा सको तो फूल बिछाना, काटे बिछाना मस्ती को, लगा सको तो बाग लगाना, आग लगाना मस्ती को, जला सको तो दीप जलाना, तीर चलाना मस्ती को, पिला सको तो प्यार पिलाना, जहर पिलाना मस्ती को। ये इनका जीवन का ध्येय है। इतना सोबर, प्रभु के प्रति आस्था विश्वास का उसके पास कुदरती और मन से बहुत लगाव है। और उनकी फैमिली में उनके पिताजी जो है उपेंद्र भाई, माता, तो उन्होंने भी उसको बहुत साथ दिया उनकी जो इच्छा पूरी करने के लिए
0: जी।
1: और यहाँ समझो ना 10 साल से वो वहाँ रहता है। और उनको एक बड़ी लड़की है, एक छोटा लड़का है। और आपने बोला तो मैंने कहा,
0: बहुत अच्छा बोला आपने ईश्वर भाई, बहुत अच्छा शेर भी सुनाया आपने। पर मैं एक अक्षय से भी पूछना चाहती हूँ, क्योंकि एक द अदर एस्पेक्ट ऑफ द फैमिली लाइफ दैट दे हैव इन मुंबई, इट वाज रियली हार्टनिंग द वे ही सेड दैट यू नो वी लिव इन अ फॉरेन लैंड बट वी आर नॉट अवे फ्रॉम आवर कल्चर, इवन नाउ आई इंश्योर दैट इन द मॉर्निंग एज अ फैमिली वी सिट टुगेदर, वी प्रे टुगेदर। टॉक अस अ लिटिल बिट अबाउट व्हाट यू नो ऑफ देम अक्षय, एज अ फैमिली, द फैमिली सेटअप, द चिल्ड्रन एंड ऑल्सो सोनल हिज वाइफ।
2: Absolutely. So, yeah, so we know them since the last 14, 15 years, and they're a very close-knit family. And he's the only son, and he's very, very close to his parents, his wife, and his daughter and his son. So, I mean, they're all a very close family. They're very religious. Even in the last 3 years, they had a Ganpati festival at their home. Even when they moved to Dubai, they had a Ganpati festival in Dubai as well. So yeah, the belief in God is there and it's in the roots as well. So yeah.
0: You know, and it was so cool because the Prime Minister, when he said Jai Shri Krishna, let's talk a little bit in Gujarati, he said that I've taught my children Gujarati first and then I taught them anything else.
2: Absolutely. No, I completely agree. His daughter is about 9 and we've seen her grow up since the time she was born, and the roots that they have, they're pretty much in religious context as well, in spiritual context they have a very strong belief system, and the entire family is the way they spoke.
0: ईश्वर जी, जब समाज को पता चला आपके घर में, आपके जानने वालों में कि ऐसा कुछ हो गया है, क्योंकि छन छन के खबर आ रही थी, फिर अचानक जब स्मिथ का नाम आया, कैसे आपको पता चला, किस तरीके का रिएक्शन आपने सुना, फिर थोड़ा बताइए हमें उस वक्त के बारे में।
1: पहले तो जब शोक तो लगा, मगर जो सक्सेस सफलता मिलती है ना तो बहुत खुशी हो जाती है ना। आज खुद को इतना लगा, खून से लथपथ हो गया, और उनके पे इतनी जवाबदारी थी, वो जवाबदारी के साथ उसने पैसेंजर को भी संभाला और सफलता मिली, जो उपलब्धि मिली है। मैं आपको एक बात बोलूं
0: जी,
1: कि ये अभी परिवार के बिरादरी का हिस्सा नहीं है। अभी जो मीत है

0: इंटरनेशनल हीरो हो गया है और अपना हिंदुस्तान का सपूत बोलो तो हिंदुस्तान का बेटा है। अभी परिवार से बहुत उसका दर्जा ऊंचा हो गया है, समाज से बहुत दर्जा ऊंचा हो गया है। और 180 आदमी को अपनी ड्यूटी पूरी करके जो उसने कार्य किया है ये बड़ी उपलब्धि है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को कहना चाहता हूं कि भाई आपको उस पुरस्कार देश के उसका ऑनर करना चाहिए और हो सके तो इंटरनेशनल में नोबल प्राइज भी देना चाहिए, क्योंकि 180 आदमी का जान बचाना, 27 आदमी बच्चे थे, ये हीरो।
1: No, undoubtedly he's a hero, and in fact that call is going up from many quarters, the fact that he should get the highest civilian award. But Ishwar bhai, ek cheez aur, kyunki jab main unke pitaji ko aaj shaam ko sun rahi thi, unhone humse jab baat ki, Bhupendra bhai ne, to unhone ek badi sateek baat kahi. Unhone kaha ki jis tarike se palan poshan kiya jata hai kisi bacche ka, usse bahut fark padta hai ki ek aise situation mein wo kaise behave kare, wo kaise react kare. तो उन्होंने भी आजकल के जो यूथ हैं, जो जेंजी हैं, उनको कहा कि भाई एक आपको कल्चरली रूटेड होना चाहिए। क्या कहेंगे आप इसके बारे में?
0: अभी ऐसा नहीं मैडम, सब सब का अपना दृष्टिकोण होता है, मगर मेरी जो थिंकिंग है इंडियन अपना वर्ल्ड के लेवल में बात करता हूं कि जो उसने जो काम किया है, जो मेहनत किया है, जो समय सूचकता से काम किया है और जो उसको यश मिला है वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके उसके इसके विचारों में हम बात कर सकते हैं, मगर बाकी परिवार समाज वो
1: अक्षय टेरस, यू नो, टू हैव दैट काइंड ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड व्हेन यू आर अंडर अटैक, दैट सेज अ लॉट अबाउट द काइंड ऑफ पर्सन दैट स्मिथ इज। टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट योर इंटरेक्शंस विद हिम, वेदर यू हैव एनी सच मेमोरीज व्हिच यू नो व्हिच मेड यू बिलीव दैट यस, हियर इज अ पर्सन हु हैड शोन सच टेंडेंसीज, यू नो, ऑफ बीइंग वेरी फर्म, really having that resolve in moments of crisis.
2: I think the profession itself demands a great presence of mind, and he's the prime example now of putting duty before self. So I think that's the very, very the kind of character that he's shown is a testimony of the person that he is. And I think we, as I said in some of the other interviews as well, we didn't expect any less from him. It didn't come as a surprise that he put 174 lives, he put his life on the line to save 174 lives. So, yeah, it didn't come as a surprise to us. I think we all expected this out of him, and he's lived up to our expectations and probably exceeded expectations as well. So that's the kind of man that he always has been.
1: ईश्वर भाई, अभी जो आपको लोग देख रहे हैं उनको आप क्या कहेंगे ऑन बिहाफ ऑफ स्मिथ, उनके फैमिली क्या कहेंगे, जो लोग देश में ही नहीं दुनिया भर में आप तो सब लोग देख रहे हैं स्मिथ की कहानी को?
0: अभी उसको परिवार के, अभी कल मैं आप कल की बात करता हूँ, मैंने फोन किया था उपेंद्र भाई को तो बोलता ईश्वर भाई, जब तक उनकी सासू को भी फोन किया था, अवर्षा बेन को फोन किया था, उनके ससुर जयसुख भाई को भी फोन किया था, तो वो बोलता ईश्वर भाई जब तक फोन नहीं आवे तभी हमको शांति नहीं है, हम बहुत उलझन में है। और जब फोन आया कि भाई अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, तो फैमिली का रिएक्शन ये था और हिंदुस्तान का फेवर ये था कि भाई हमारा हिंदुस्तान का पायलट ने कितना जबरदस्त काम किया और हमारे जैसे जो सोशल काम करते हैं उनका तो ये है कि ये भगवान का कोई आशीर्वाद था उस पर, और जो उसको उपलब्धि मिली है उसकी बदली में उनका आदर मान सम्मान बहुमान होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, ये हमारी गुजारिश है। हमारा बच्चा है और हमने उसको भी आशीर्वाद देते हैं और आगे बढ़े।
1: ईश्वर भाई, आपकी क्योंकि भूपेंद्र भाई से बात हुई है, उन्होंने कुछ बताया जब प्रधानमंत्री ने कॉल किया, पूरी फैमिली को कॉल किया, उन्होंने उसका जिक्र भी किया था जब वो फोन कॉल कर रहे।
0: हाँ, वो बताया कि भी उपेंद्र भाई से बात किया, गीता से बात किया, अपना सोनल से बात किया और सबका समाचार उसको पूछा, बहुत अच्छा किया। और मैं बोलूं कि ये जो मित में जो थोड़ी ताकत है, हिम्मत है, तो ऊपर से आती है, इसमें नरेंद्र मोदी का भी साथ है। तो जो उनका जो रवैया है देश के प्रति, तो वो जुनून भी आता है, हिम्मत भी आता है और शक्ति भी मिलती है। तो नरेंद्र मोदी का भी उनका उनका जो हिम्मत, पीछे से हिम्मत मिलती है, वो उनकी योगदान है, ऐसा मैं समझता हूँ।
1: ईश्वर भाई और अक्षय, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग एंड आई सस्पेक्ट इन द डेज टू कम व्हेन एंड यू नो व्हेनेवर द फैमिली डज कम बैक, इट्स गोइंग टू बी एन इक्वली प्राउड एंड इक्वली इमोशनल मोमेंट फॉर यू एज वेल अलॉन्ग विद हिज इमीडिएट फैमिली। थैंक्स फॉर स्पीकिंग टू अस।
2: थैंक यू सो मच।
1: Okay, let's turn now to battleground Punjab, where fresh signs of unease are emerging in the Congress camp. Amrinder Raja Waring has stepped down as state Congress chief, but will this make the going easier for the party or will it actually make it more muddled? An excerpt from Politics Zindabad, and of course you can watch the full show over the weekend. The chief of the Congress in this state, Amrinder Raja Waring, has stepped down. By the way, the official announcement wasn't made, but he changed his Twitter bio to former president, former PPCC president on his own. And this has happened just months ahead of the assembly election in the state. Now, the key question remains, who will replace Waring at a time when the campaign heat has started to rise in the state? The party will have to strike a balance now, not just between the various camps within the Congress in Punjab, but also the various social groups in the state. While Waring came to Delhi to meet Rahul Gandhi, the BJP naturally is not losing this opportunity to take a swipe at the infighting.
3: Formally resignation diya aur unhone bahut pyar diya aur Punjab ke bare mein kya halaat hai aur kis prakar se kya ho raha hai aur kya hame karna chahiye, ये राहुल जी ने जानकारी ली।
4: और राजे पटिंग तो इस्तीफा ले लिया कल, हुण कोई नवा आऊगा ओदे पिछे लड़नगे भी इहनू लाउणा है। कांग्रेस वाले पंजाब वास्ते कदे कट्ठे नहीं हो सकते, हाँ आपदे प्रधान नूं लाउण वास्ते सारे कट्ठे हो जांदे ने, भी सारे कट्ठे हैं जी।
1: ओके, सो लेट मी आस्क जैनेंद्र, बिकॉज़ ही स्पोकन टू वरिंग एट लेंथ, हू इज गोइंग टू बिकम द नेक्स्ट? फर्स्ट टेल अस, व्हाई डिड ही गो, व्हाई वाज ही रिमूव्ड?
5: देखिए पंजा, ये उन्हें उनका जाना जून में ही डिसाइडेड हो गया था, जब चन्नी बाजवा और सारे जो सीनियर लीडर्स हैं वो दिल्ली में, उन्होंने कन्वे किया कि हम राजा की लीडरशिप में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। इसके बाद अजय माकन की कमेटी बनाई गई, हालांकि उस कमेटी की रिपोर्ट ये थी कि चन्नी को हमें प्रेसिडेंट बनाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस लीडरशिप को लगा कि पिछली बार चन्नी को बनाने की वजह से दलित वर्सेज जटसिक का एक इक्वेशन बन गया था। चन्नी खुद सीएम रहते अपने दो सीटों से चुनाव हार गए थे, तो चन्नी के जाना साथ जाना सेफ नहीं, चन्नी को कैंपेन कमेटी चीफ बनाते हैं और सिंगला को प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं, विजयेंद्र सिंगला को। ये बात जब आखिरी मोमेंट में कन्वे की गई केसी वेणुगोपाल के द्वारा चन्नी को और अदर सीनियर लीडर्स को, तो बताया जाता है कि चन्नी ने वीटो कर दिया और उन्होंने साफ कहा कि नहीं, सिंगला को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अध्यक्ष अध्यक्ष मुझे बनाइए। जब ये बात राहुल गांधी को कन्वे की गई तो उन्होंने कहा कि फिर स्टेटस को रखते हैं, कोई चेंज नहीं होगा। और इसके बाद स्थिति और हाथ से बिगड़ी, इतनी बिगड़ गई कि भूपेश बघेल जो अंपायर की भूमिका में थे, इंचार्ज थे, उनका विरोध होने लगा,
1: अंपायर को ही रेड कार्ड कर दिया।
5: और एग्जैक्टली, और फिर उनके
6: तो मर्सिडीज गाड़ी भी मिली गई थी।
1: कहा
6: ऐसी चर्चा थी कि भूपेश बघेल को वो जब पंजाब के जब वो इंचार्ज बनाए गए थे तो उनको संभवतः उन्हीं के जो जिन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे जिनको उन्होंने एम्पायर करना था शायद उन्हीं से उनको एक मर्सिडीज गाड़ी भी मिल गई थी एंड दैट हैपेंस टू बी वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई his neutrality came under question.
1: But very interesting. I have to say that Bhupend almost 3 weeks ago had predicted that Waring is going to go as the chief of the Congress in Punjab. So now also tell us
6: sometimes we get it right.
1: Who's going to become the new
6: chief? So the political logic that I have been given to understand is this, that the Congress high command believes that it's best if you make a Hindu face, a non-Sikh face, you make that Hindu face the Pradesh Congress president. The feeling is that if you have that logic, then who will be the chief minister should that situation arise, which is bound to be, let's say, a Sikh person? That question remains open. You create a mechanism much like what was tried in Kerala, where all your Lok Sabha faces are given the responsibility of campaigning. They're not asked to campaign, they're not asked to contest. So, you know, Wadding is out of the race. Sukhinder Randhawa then is out of the race, all of whom are looking at themselves as potential, you know, chief ministerial candidates or people with who are in a position to control the levers. My own understanding is this, that I think none of these names that we're talking about, I spoke to Mr. Singla some time back, and I was asking him if he had been sounded out and he was on the campaign trail. The sense I get by speaking to, from Mr. Bajwa to Mr. Randhawa to Mr. Singla, is that there is one more card which is still to play out. And that card is a potential return of Captain Amrinder Singh to the Congress party. Now, I'm not suggesting that Amrinder Singh is going to be the chief ministerial candidate, but the potential of Amrinder Singh coming back to the Congress party is very, very high. And once that happens, if that were to happen, maybe by the end of the year, I think this question that you're raising, that who will be the chief ministerial candidate, will get answered then.
1: And who will be the state president?
6: I think state president at this stage is a toss-up between Mr. Singla and Pargat Singh.
1: Okay.
6: His name, Pargat Singh's name has also more been
7: chances. He's a Jat Sikh and a former hockey captain, known in the entire Punjab. He's a pan-Punjab face. And the biggest thing is that he's not in a good baji. He's not with the Channi, neither with the Channi nor with the Raja.
1: क्योंकि विजय सिंगला से ये कहा जा रहा है कि आप एक हिंदू को बना दीजिए तो फिर एक जट सीख जो है आपके सीएम फेस हो जाएंगे, कैंपेन कमेटी के चीफ आपके ऑलरेडी
7: पंजाब में,
1: जो कि दलित
7: पंजाब में अगर आप जट सीख को नहीं बनाएंगे तो आप अकालीज के लिए आप खुला मैदान छोड़ देंगे जट सीख बूट के लिए, नंबर एक। और दूसरा ये है कि आपने सुनील जाखड़ को तब बनाया था जब कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर थे और वो फेस थे पार्टी का, वो जाट सिख थे, इसलिए सुनील जाखड़ और सुनील जाखड़ ही हिमसेल्फ इज ए जाट और उनका कद भी बड़ा था। सिंगला इज ए अर्बन फेस, उसको पंजाब के गांव में एक्सेप्ट नहीं करेंगे लोग, इसलिए बनाना तो इनको पड़ेगा जटी लॉजिकली, बाकी किसी को बनाने कांग्रेस पार्टी।
5: ऐड करना चाहता हूँ कि प्रगट सिंह वाकई में उन पोजिशनिंग उनकी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो अकाली दल से आए हैं और कांग्रेस लीडरशिप के करीब नहीं है, उनके कम वकील हैं राहुल गांधी के आसपास, तो इस वजह से शायद उनकी दावेदारी और एक ये लॉजिक भी है कि जट सिख को हटाकर जट सिख को बनाने से आप गेन क्या करते हैं। तो ऐसे में सिंगला जिस एरिया से आते हैं,
1: खिलाफ गया क्या वर्डिंग के खिलाफ, क्या फैक्टर गया?
5: मैं आपसे वही कह रहा था, वर्डिंग सब सीनियर लीडर्स के आंखों के कांटे बन गए थे, इनकी जो कार्यशैली थी वो इन सब लोगों को असहज कर रही थी।
1: तो हरी कोई कांटा बन जाता है ना, जब कैप्टन थे तो वो कांटा बने हुए थे, जब वरिंग थे वो कांटा बन गए, सिद्धू कांटा बन गए, कौन कांटा नहीं।
5: बुनियादी बात मैं कहना चाहता हूँ कि पंजाब की पॉलिटिक्स में जो अकाली दल कल्चर है कि जो पिछला उम्मीदवार होता है पिछले चुनाव का वो हल्का इंचार्ज अकाली दल में बनाया जाता है, वो कल्चर सभी पार्टियों में है। तो कांग्रेस के भी जो पिछले चुनाव के हारे हुए उम्मीदवार थे वो अपने आप को अपने इलाके का, अपने विधानसभा का इंचार्ज मान के चल रहे थे। जब राजा वडिंग प्रदेश अध्यक्ष बने वो यूथ कांग्रेस बैकग्राउंड से आए हुए, उनके अपने नेता हर इलाके में है, उन्होंने अपने करीबियों को बढ़ाना शुरू किया, उनको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स बनाया। पुराने उम्मीदवारों को लगा कि शायद हमारी टिकट नहीं मिले, इसकी वजह से उन्होंने राजा के खिलाफ एक लॉबिंग शुरू की और फाइनली वो राजा का विकेट लेकर के माने।
1: बिकॉज़ यू नो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट एज एन आउटसाइडर, व्हेन आई लुक एट राजा वडिंग इन द लास्ट 5 years आफ्टर द आम आदमी पार्टी केम टू पावर, चरणजीत सिंह चन्नी वाजंट इवन देयर, ही वाजंट इवन इन पंजाब। आई रिमेंबर ही वेंट अवे टू राइट हिज पीएचडी और समथिंग,
7: ही वेंट अवे टू कनाडा,
1: ही वेंट अवे टू कनाडा एंड देन ही रोट अ पेपर अपेरेंटली अबाउट हाउ द कांग्रेस इज नॉट डूइंग वेल इन पंजाब एंड देन यू कम बैक, यू लूज बोथ योर सीट्स एंड देन यू गेट योर वे,
7: ही गेट्स अ वीटो पावर
1: एंड worrying is the person yeah. who was there, who was carrying out the campaign, who was doing all these yeah. sabhas, who was doing Bharat Jodo Yatra, and then 4 months before the election, yeah. you kick him out.
8: Should not forget the Lok Sabha election results, where the Congress party under him
1: exactly.
8: won 7 Lok Sabha seats. And Aam Aadmi party was reduced to just 3.
1: Yeah.
8: And interestingly, you talked about Kanta. So I'm saying, Kanta se Kanta nikalne ka hai to hai hi hai Congress party mein. राजा को हटा के फिर एक राजा को हटाया दो राजा राजा कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया उसके बाद अब राजा को इनको हटा दिया और तब आप राजा को हटा के चन्नी को लेके आए थे जो दोनों अपनी विधानसभा सीट हार गए और जो राजा आपने आपको 7 लोकसभा सीटें जितवाई आप उनको हटा रहे हैं फिर से तो क्या कांग्रेस पार्टी ने फैसला सही किया इस पर एक डिस्कशन होना चाहिए
5: बिल्कुल अलग थलग पड़ गए थे
1: राजा और आपने कैप्टन को हटा करके नवजोत सिंह सिद्धू के कहने पे कैप्टन को हटाया फिर सिद्धू भी चले गए कैप्टन भी चले गए फिर आपको क्या
6: प्रॉब्लम
7: से तो कांग्रेस 2022 हारी
1: नहीं और क्योंकि कांटे की बात हो रही है आई वांट टू एक्चुअली प्ले आउट अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक दैट भगवंत मान हैड ऑन दिस एंटायर फाइटिंग दैट इज टेकिंग प्लेस विद इन द कांग्रेस पार्टी
4: और अजय पटिंग तो इस्तीफा ले लिया कल हुण कोई नवां आऊगा उहदे पिछे लड़नगे वी इहनूं लाउणा है कांग्रेस वाले पंजाब वास्ते कदे कट्ठे नहीं हो सकदे हाँ आपदे प्रधान नूं लाउण वास्ते सारे कट्ठे हो जांदे ने वी सारे कट्ठे हैं जी
1: So Bhagwan Mann has predicted that now everyone is going to get after the life of whoever is going to be the next BPCC president. But very quickly, Akhilesh, I want to ask, any chance that Raja worrying, any talks happening? Because there seems to be a great affinity that the BJP has for ex-congressmen, right? From Vinod Jakhar to Captain, maybe to this new Raja.
8: Not with him, but maybe with Channi. There's a buzz that Channi is in talks with the BJP, but I don't know whether it's true or not. Hmm. But it's just a small buzz there. But BJP is very keenly watching what's happening within the Congress party. Hmm. What my sources in the BJP are telling me that there's a view within the party that now we should not delay this alliance with the Akali Dal anymore.
1: It's happening. They are going to tie up with Akali.
8: It should happen.
5: Yes, yes.
8: But they feel that it should happen because the internal survey of the BJP says that if BJP and Akali Dal comes together, they are going to win 80 seats. Which is a big number in the assembly. Well, this is the internal survey saying.
1: Yeah. And they 80, almost as much as Aam Aadmi Party. Just
8: they had 193, I think. Yes. So, yeah.
6: See, all this survey and all this deliberation of the BJP is taking place or was taking place at a time when the Congress was looking as a house completely divided. Hmm. Because all these leaders that we're talking about, everybody was looking for how many seats will they be able to get for the supporters. If the Congress gets its act right, the Congress is clearly going to be the front runner.

0: The panic, the desperate calls for help. The passengers and crew taking control, and the voice of the captain himself. He hit me so many times.
1: He hit me like
2: no.
1: So many times.
0: Bureau Report, NDTV.
3: Coming up next, we'll tell you about who is Captain Smith Machar and what is his story, the man behind that courage and that valor. Because before the headlines, before the world came to know about his name, there was a pilot with thousands of hours in the sky, years of experience and a reputation among colleagues for being calm and professional. This is Captain Smith Mac and this is his story.
4: For the last few days, one name has dominated the headlines across India and around the world. Captain Smith Machar, an Indian commercial pilot who found himself at the center of an extraordinary mid-air emergency. On September 30th, Fly Dubai flight FZ1073 was flying from Dubai to Tel Aviv when an altercation erupted inside the cockpit. It was the heroism and valor of the Captain Smith Machar that saved the day. Long before he became known around the world for his actions, his courage, and his valor, Captain Smith Machar had already built a substantial career in commercial aviation. With over 13 years of aviation experience and nearly 9,750 flight hours, he has spent most of his career flying Boeing 737s, including more than 6,400 hours as pilot in command. He joined Fly Dubai in 2022 after over a decade with SpiceJet, where he rose from first officer to senior commander and line training captain. However, his aviation journey was not something he had always planned. Machar initially studied textile engineering before pursuing management studies. His path changed after he developed an interest in aviation. He eventually completed commercial pilot training in New Zealand and went on to train for the Boeing 737. From there, the cockpit became his workplace, and thousands of hours in the air became his experience. Former colleagues who worked with Machar at SpiceJet describe him as calm, knowledgeable, and professional.
5: We met in dispatch and he comes out to be very nice, humble, and very respectful guy. Like he respects each and everyone.
4: Machar has spoken about those moments himself. Speaking to Prime Minister Modi from his hospital bed, he described how he opened the cockpit door after the attack, allowing passengers and crew to intervene. And that account, the heart-to-heart conversation with the Prime Minister, is perhaps the clearest window into what was going through Captain's mind. For his family, however, the last few days have been less about heroism and more about survival. Machar's father, Bhupendra Machar, told NDTV that the family's first reaction when they heard about the incident was fear. His son was injured. The family prayed for his safety. His father said that Smith's overriding thought during the crisis was that no passenger should lose their life.
6: के मन में एक विचार आया कि अभी फाइट करना ही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है दूसरा और उसने एक्शन लिया और सक्सेस हो गया और उसके मन में एक बात पक्की थी कि मेरे हिसाब से पीछे के जितने भी पैसेंजर थे वो किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए वो उसके मन में पूरा भरा हुआ था.
4: And then there is the other side of Smith's life. His wife and two children are in Dubai, while his parents are in Mumbai. His father described flying as central to his son's life, saying that Smith is deeply committed to his profession. For millions, Captain Smith Machar is now the face of a remarkable aviation survival story. For his former colleagues, he is the senior pilot they knew as calm and knowledgeable. For his childhood friends, he is the boy they grew up with. For his parents, he is simply their son. And for the passengers aboard flight FZ1073, he is the captain who, even after being seriously injured, kept fighting to get that cockpit door open. Today, Smith Machar is recovering in an Abu Dhabi hospital. The investigation into exactly what happened inside that cockpit continues. But the story of the pilot himself is already much bigger than the incident that made him famous.
3: Well, at 35,000 feet, inside the cramped, locked confines of a cockpit, there is no escape. There is perhaps no calling for backup. There is only training, there's instinct, and raw human grit. Captain Machar fought off the attacker, wrestled control of the aircraft, and brought 174 passengers safely down to earth. Listen in to what his father, Bhupendra Machar, told us on NDTV. His first reaction wasn't pride, it was pure parental fear. He rushed to a temple, lit a lamp, and prayed that no bad news should come.
1: Bhupendra Bhai Machar, he is the father of hero pilot Smit Machar, whose son has made the entire country proud and is now a global icon of courage. Bhupendra Bhai, NDTV par aapka swagat hai. आपके बेटे पर पूरा देश का गर्व है. क्या आप बता सकते हैं भूपेंद्र भाई, स्मित अभी कैसा है, उनकी तबीयत कैसी है? उनकी अभी जो वीडियो सामने आया है प्राइम मिनिस्टर के साथ बातचीत करते हुए, साफ नज़र दिखाई देता है कि वो ठीक है. आप एक अपडेट दीजिए कि वो कैसे हैं, आपका बेटा कैसा है अभी भूपेंद्र भाई?
6: जैसा आपने देखा वीडियो में, वही चीज मैंने भी देखी आज, क्योंकि मैं आज उनको कल में मिला था 10 मिनट के लिए. तभी वो थोड़ा पूरे कंट्रोल में नहीं था. थोड़ी सी बात करके फिर डॉक्टरों ने भी बोला कि आज अपलिफ्ट हुआ है, तो अपन शांति से बात करें तो बेटर है. तो आज हम लोग वहां पहुंच रहे हैं थोड़े टाइम में, हम उनसे वे ही है. और जितना आपने देखा नरेंद्र मोदी के साथ बात करते हुए, मेरे को भी बहुत खुशी हुई कि आज वो अच्छे फेज में है और अच्छी बात कर रहा है. तो भगवान का बहुत बड़ा शुक्र है.
1: स्मित ने आपको क्या बताया जब आप मिले उनसे भूपेंद्र भाई, आपको क्या बताया कल?
6: एक्चुअली कल हम लोग ने एक बात रखी थी कि इस इंसिडेंट के बारे में आज कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि वो अभी भी उतने ही वो फेज में था. तो मैंने सोचा कि आज स्मित अपन एक खाली भगवान की बहुत मेहरबानी समझ के आज हम लोग गले मिलते हैं, कोई उसकी बात नहीं करेंगे. आज बहुत सब लोग खुश होकर बात कर 10 मिनट बैठेंगे हम लोग तेरे साथ. तो कल की हमारी कोई भी बात में हमने उसको कोई वो चीज को याद नहीं दिलाया. मतलब वो बात ही मत छेड़ना अभी, अपन शांति से कल बात करेंगे.
1: भूपेंद्र भाई, स्मित के जख्म कितना सीरियस है, इन तस्वीरों में दिखाई देता है कि वो हॉस्पिटल में है, वो ट्रीटमेंट जारी है. डॉक्टर्स का क्या कहना है भूपेंद्र भाई?
6: डॉक्टर्स ने बोला है कि समय लगेगा ये जख्म को क्लियर करने में, और सर पे भी लगा है, दोनों हाथ से भी लगा है, और सर पे कुछ ऑपरेट भी हुआ है, स्टिचेस भी आए हैं काफी. तो अभी एकदम डिटेल में मैं आज नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जख्म है और शायद अच्छा टाइम जाएगा इसको क्लियर होने में.
1: भूपेंद्र भाई, आप स्मित के पिताजी हैं, आप और स्मित के माँ, क्या महसूस हुआ जब आपने सुना कि ये हादसा हुआ था आपके बेटे के साथ? आपका क्या रिएक्शन था, क्या महसूस किया आपने?
6: जैसे जैसे हर माँ बाप का हो, सबसे पहले एक ही विचार खराब आ जाता है. और तुरंत हमने हमारे भगवान के पास दिया किया और बोला, भगवान कुछ भी हो जावे, खराब न्यूज नहीं आना चाहिए, आप बचा लेंगे.
1: लेकिन आप में विश्वास था कि आपका बेटा स्मित ऐसे करेगा, ऐसे बहादुरी दिखाएगा इस हादसे में? आप में विश्वास था?
6: देखो ये इस चीज की कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, जैसे आप भी वो चीज समझते हो, लेकिन एक ऊपर वाले की मेहरबानी रहेगी, कोई शक्ति उसके साथ आ गई और उसने ये जो प्रॉब्लम आया उसको सॉल्व किया, अपना पूरा सबके लिए गर्व की बात हो गई. और मैं भी बोलूंगा कि इसमें ज्यादातर भगवान की मेहरबानी है, हम लोग ज्यादा धर्मिष्ठ थे पूरे घर वाले.
1: जी, और भूपेंद्र भाई, आपकी बेटे की बहादुरी भी थी, आपने डिटेल में देखा है कि उन्होंने क्या किया कॉकपिट में. हमला के बाद उन्होंने जख्मी होते हुए कॉकपिट के दरवाज़ा को खुला रखा. डिटेल में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है आपको पता है कि क्या हुआ, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये एक प्रेजेंस ऑफ माइंड थी, जैसे आपने बताया कि इसका कोई ट्रेनिंग नहीं होता है सर.
6: हाँ जी, उसका एक शब्द बोल दूं मैं, कि जैसे वो गिर गया जैसे नीचे कॉकपिट में, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि अभी जो करना है वो अभी कर ले, अदरवाइज कुछ नहीं होएगा। तो फिर उसके मन में एक विचार आया कि अभी फाइट करना ही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है दूसरा, और उसने एक्शन लिया और सक्सेस हो गया। और उसके मन में एक बात पक्की थी कि मेरे हिसाब से पीछे के जितने भी पैसेंजर थे वो किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए, वो उसके मन में पूरा भरा हुआ था। तो उस चीज ने ऊपर वाले ने सपोर्ट किया और ये पूरा सक्सेस हो गई बात।
1: भूपेंद्र भाई, क्या स्मिथ हमेशा ऐसे ही थे, सेल्फलेस, औरों के लिए ऐसे बिहेव करना? उनका ट्रेनिंग था एक पायलट के हिसाब से, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग वो कभी भी ऐसे ही थे?
6: एक्चुअली बोलूं तो वो आज समझो 17 साल से फ्लाइंग कर रहा है, और इस 17 साल के अंदर उसने सैकड़ों पायलटों को किस तरीके से इंटरव्यू देना है, किस तरीके से अपने को ये चीज समझना चाहिए, वो उसके पहले से नेचर में है। वो फ्लाइंग के बारे में एकदम से उसका मतलब, वो वाइफ है उसकी ऐसा समझ लो
1: जी,
6: उसको फ्लाइंग मतलब और कुछ समझता ही नहीं, बोलता है मेरे को ज्यादा अच्छे से अच्छा फ्लाइंग करना है।
1: और जब वो ठीक हो जाएंगे भूपेंद्र भाई, क्या वो फ्लाइंग कंटिन्यू करेंगे?
6: वो ना बोलेगा ही नहीं कभी भी कि मैं नहीं करूंगा ऐसा।
1: और
6: मैं भी चाहूंगा कि वो करे, क्यों नहीं करेगा, करेगा।
1: क्या आप उनके पिताजी हैं, आप कुछ एडवाइस दे रहे हैं उनको, आपने कुछ बताया उनको?
6: अभी आज से शुरू होएगा हमारी डिस्कशन जो भी हो।
3: Well, Captain Smith Mack's extraordinary actions aboard the Fly Dubai flight have triggered a growing chorus of calls to honor him. From national recognition to bravery awards, the demand is clear. The pilot who put the lives of his passengers ahead of his own should be formally recognized for his bravery and courage as well.
7: Captain Smith Machar, the hero, the man of the moment, and the savior of over 180 passengers, fought to keep them safe even as his own life was at grave risk. Today, that courage is being remembered and a nation is asking for it to be honored. From the Ashok Chakra to the Bharat Ratna and national bravery honors, calls are growing to recognize the hero pilot who put his passengers' lives ahead of his own. The Federation of Indian Pilots has written to the PMO seeking a national bravery award for Captain Smith. The pilot's body says Smith showed extraordinary courage, putting the safety of passengers and crew above his own personal safety. And the call for honor is growing louder. Rajya Sabha MP Milan Deora, former Uttarakhand Chief Minister Harish Rawat, author and lyricist Javed Akhtar, and Shefali Vaidya have publicly praised Smith's courage and called for him to be honored. But while the world salutes his courage, Smith continues his recovery fight. However, he remains stable and is responding well to treatment in Abu Dhabi. His family has also been allowed to meet him at the military hospital.
6: मैं मिला था 10 मिनट के लिए, और जितना आपने देखा नरेंद्र मोदी के साथ बात करते हुए, मेरे को भी बहुत खुशी हुई कि आज वो अच्छे फेज में है और अच्छी बात कर रहा है, तो भगवान का बहुत बड़ा शुक्र है।
7: Seriously injured, yet he continued to respond to the emergency, helping bring the flight and its passengers to safety. A pilot who, in the moment of crisis, chose duty over fear. In fact, he went beyond his call of duty. And today, his courage has traveled far beyond the cockpit. From Prime Minister Narendra Modi to Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, world leaders have publicly acknowledged Captain Smith's bravery. Today, the question is no longer just about what Captain Smith did in that cockpit. It is about how a nation and the world chooses to remember a pilot who put others' lives first. Bureau Report, NDTV.
3: On that note, we're slipping into a very short break. I'm right back. Lots more lineup for you here on NDTV.
8: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. as global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.

0: hacker wrestled control of the aircraft and brought 174 passengers safely down to earth. Listen in to what his father, Bhupendra Machar, told us on NDTV. His first reaction wasn't pride, it was pure parental fear. He rushed to a temple, lit a lamp and prayed that no bad news should come.
1: Bhupendra Bhai Machar, he is the father of hero pilot Smith Machar, whose son has made the entire country proud and is now a global icon of courage. Bhupendra Bhai, NDTV par aapka swagat hai. आपके बेटे पर पूरा देश का गर्व है. क्या आप बता सकते हैं भूपेंद्र भाई, स्मिथ अभी कैसा है, उनकी तबीयत कैसी है? उनकी अभी जो वीडियो सामने आया है प्राइम मिनिस्टर के साथ बातचीत करते हुए, साफ नज़र दिखाई देता है कि वो ठीक है. आप एक अपडेट दीजिए कि वो कैसे हैं, आपका बेटा कैसा है अभी भूपेंद्र भाई?
2: जैसा आपने देखा वीडियो में, वही चीज मैंने भी देखी आज, क्योंकि मैं आज उनको कल में मिला था 10 मिनट के लिए, इंटरवल में नहीं था. थोड़ी सी बात करके फिर डॉक्टरों ने भी बोला, तो आज हम लोग वहां पहुंच रहे हैं थोड़े टाइम में. हम उनके वे ही है, क्योंकि आज वो अच्छे फेज में है और अच्छी बात कर रहा है.
1: आपको क्या बताया जब आप मिले उनसे भूपेंद्र भाई, आपको क्या बताया कल?
2: एक्चुअली कल हम लोग आए क्योंकि वो अभी भी उतने ही वो फेज में था, तो मैंने सोचा कि आज भी अपन एक खाली भगवान की बहुत मेहरबानी समझ के आज हम लोग गले मिलते हैं, कोई उसकी बात नहीं करेंगे. आज बहुत सब लोग खुश होकर बात कर 10 मिनट बैठेंगे हम लोग तेरे साथ. तो कल की हमारी कोई भी बात में हमने उसको कोई वो चीज को याद नहीं दिलाया. मैं बोला वो बात ही मत छेड़ना, अभी अपन शांति से कल बात करेंगे.
1: भूपेंद्र भाई, स्मिथ के जख्म कितना सीरियस है? इन तस्वीरों में दिखाई देता है कि वो हॉस्पिटल में है, वो ट्रीटमेंट जारी है. डॉक्टर्स का क्या कहना है भूपेंद्र भाई?
2: डॉक्टर्स ने बोला है कि समय लगेगा ये जख्म को क्लियर करने में, और सर पे भी लगा है, दोनों हाथ से भी लगा है, और सर पे कुछ ऑपरेट भी हुआ है, स्टिचेस भी आए हैं काफी. तो अभी एकदम डिटेल में मैं आज नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जख्म है और शायद अच्छा टाइम जाएगा इसको क्लियर होने में.
1: भूपेंद्र भाई, आप स्मिथ के पिताजी हैं, आप और स्मिथ के माँ, क्या महसूस हुआ जब आपने सुना कि ये हादसा हुआ था आपके बेटे के साथ? आपका क्या रिएक्शन था, क्या महसूस किया आपने?
2: जैसे जैसे हर माँ बाप का हो, सबसे पहले एक ही विचार खराब आ जाता है, और तुरंत हमने हमारे भगवान के पास दिया किया और बोला भगवान कुछ भी हो जावे, खराब न्यूज नहीं आना चाहिए, आप बचा लेंगे.
1: लेकिन आप में विश्वास था कि आपका बेटा स्मिथ ऐसे करेगा, ऐसे बहादुरी दिखाएगा इस हादसे में? आप में विश्वास था?
2: देखो देखो, ये इस चीज की कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, जैसे आप भी वो चीज समझते हो, लेकिन एक ऊपर वाले की मेहरबानी रहेगी, कोई शक्ति उसके साथ आ गई और उसने ये जो प्रॉब्लम आया उसको सॉल्व किया, अपना पूरा सबके लिए गर्व की बात हो गई. और मैं भी बोलूंगा कि इसमें ज्यादातर भगवान की मेहरबानी है, हम लोग ज्यादा धर्मी थे पूरे घर वाले.
1: जी, और भूपेंद्र भाई, आपकी बेटे की बहादुरी भी थी, आपने डिटेल में देखा है कि उन्होंने क्या किया कॉकपिट में. हमला के बाद उन्होंने जख्मी होते हुए कॉकपिट के दरवाज़ा को खुला रखा. डिटेल में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है आपको पता है कि क्या हुआ, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये एक प्रेजेंस ऑफ माइंड थी, जैसे आपने बताया कि इसका कोई ट्रेनिंग नहीं होता है सर.
2: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसका एक शब्द बोल दूं मैं, कि जैसे वो गिर गया जैसे नीचे कॉकपिट में, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि अभी जो करना है वो अभी कर ले, अदरवाइज कुछ नहीं होएगा. तो फिर उसके मन में एक विचार आया कि अभी फाइट करना ही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है दूसरा, और उसने एक्शन लिया और सक्सेस हो गया. और उसके मन में एक बात पक्की थी कि मेरे हिसाब से पीछे के जितने भी पैसेंजर थे वो किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए, वो उसके मन में पूरा भरा हुआ था. तो उस चीज ने ऊपर वाले ने सपोर्ट किया और ये पूरा सक्सेस हो गई बात.
1: भूपेंद्र भाई, क्या स्मिथ हमेशा ऐसे ही थे, सेल्फलेस, औरों के लिए ऐसे बिहेव करना उनका ट्रेनिंग था एक पायलट के हिसाब से, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग वो कभी भी ऐसे ही थे?
2: एक्चुअली बोलूं तो वो आज समझो 17 साल से फ्लाइंग कर रहा है, और इस 17 साल के अंदर उसने सैकड़ों पायलटों को किस तरीके से इंटरव्यू देना है, किस तरीके से अपने को ये चीज समझना चाहिए, वो उसके पहले से नेचर में है। वो फ्लाइंग के बारे में एकदम से उसका मतलब, वो वाइफ है उसकी ऐसा समझ लो
1: जी,
2: उसको फ्लाइंग मतलब और कुछ समझता ही नहीं, बोलता मेरे को ज्यादा अच्छे से अच्छा फ्लाइंग करना है।
1: और जब वो ठीक हो जाएंगे भूपेंद्र भाई, क्या वो फ्लाइंग कंटिन्यू करेंगे?
2: वो तो वो ना बोलेगा ही नहीं कभी भी कि मैं नहीं करूंगा ऐसा।
1: और क्या?
2: मैं भी चाहूंगा कि वो करे, क्यों नहीं करेगा, करेगा।
1: क्या क्या आप उनके पिताजी हैं, आप कुछ एडवाइस दे रहे हैं उनको, आपने कुछ बताया उनको?
2: अभी आज से शुरू होएगा हमारी डिस्कशन जो भी है वो।
0: Well, Captain Smith Max, extraordinary actions aboard the Fly Dubai flight have triggered a growing chorus of calls to honor him. From national recognition to bravery awards, the demand is clear. The pilot who put the lives of his passengers ahead of his own should be formally recognized for his bravery and courage as well.
3: Captain Smith Machar, the hero, the man of the moment, and the savior of over 180 passengers, fought to keep them safe even as his own life was at grave risk. Today, that courage is being remembered and a nation is asking for it to be honored. From the Ashok Chakra to the Bharat Ratna and National Bravery Honors, calls are growing to recognize the hero pilot who put his passengers' lives ahead of his own. The Federation of Indian Pilots has written to the PMO, seeking a National Bravery Award for Captain Smith. The pilot's body says Smith showed extraordinary courage, putting the safety of passengers and crew above his own personal safety. And the call for honor is growing louder. Rajya Sabha MP Milan Deora, former Uttarakhand Chief Minister Harish Rawat, author and lyricist Javed Akhtar and Shefali Vaidya have publicly praised Smith's courage and called for him to be honored. But while the world salutes his courage, Smith continues his recovery fight. However, he remains stable and is responding well to treatment in Abu Dhabi. His family has also been allowed to meet him at the military hospital.
2: और जितना आपने देखा नरेंद्र मोदी के साथ बात करते हुए, मेरे को भी बहुत खुशी हुई कि आज वो अच्छे फेज में है और अच्छी बात कर रहा है, तो भगवान का बहुत बड़ा शुक्र है।
3: Seriously injured, yet he continued to respond to the emergency, helping bring the flight and its passengers to safety. A pilot who, in the moment of crisis, chose duty over fear. In fact, he went beyond his call of duty. And today, his courage has travelled far beyond the cockpit. From Prime Minister Narendra Modi to Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, world leaders have publicly acknowledged Captain Smith's bravery. Today, the question is no longer just about what Captain Smith did in that cockpit. It is about how a nation and the world chooses to remember a pilot who put others' lives first. Bureau Report, NDTV.
0: On that note, we're slipping into a very short break. I'm right back. Lots more lineup for you here on NDTV.
4: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.

0: everyone is getting ready for the evening. A few pictures, a little waiting. Inside, the stage is set.
1: Well, you've heard of clubbing in dark rooms, but you've ever heard of bhajan clubbing? I'm currently present at one such event, and honestly, I'm also very curious to see what it looks like. This is what it's looking like before the event. The big question, of course, is who's going to be here at the event? Is it going to be youngsters? Is it going to be some people from the old generation? What are they going to be listening to? Is it going to be songs? Is it going to be bhajans? What's it going to look like? This is what it's looking like right before the event. We are curious to find out what exactly bhajan clubbing holds for us. Come, let's find out.
2: दोनों हाथ उठा के मेरे साथ गणपति बप्पा मंगल गुरु की
0: ऑन स्टेज केशवम देयर डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस साउंड डिवोशनल रॉक फॉर लविश शीतल द डिवोशनल पार्ट केम फर्स्ट
3: मैंने अपनी शुरुआत श्रीगंगानगर राजस्थान से की और मैं जागरण करता था बचपन से ही तो माता रानी के जागरण चौकी
0: फॉर प्रकृति टू दिस म्यूजिक वाज पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप
4: बेसिकली मेरे जो घर का थोड़ा माहौल था वो थोड़ा स्पिरिचुअल रहा है बचपन से ही तो मैं बचपन से ही मतलब भगवान जी के भजन गाती थी और मतलब हमारे गुरु जी के मंदिर में मैं प्रोग्राम करती थी वही मतलब बचपन से वो माहौल रहा है
0: दे हैड सांग भजन्स दे हैड परफॉर्म्ड बॉलीवुड म्यूजिक देन केम एन आइडिया व्हाट कुड रॉक ब्रिंग टू द मिक्स

से ढाई साल पहले हमारे दिमाग में आया कि इन दोनों जो म्यूज़िक के हमारे ये लैंग्वेजेस हैं, जो हमारे स्टाइल्स हैं, रॉक स्टाइल है और देसी है, इनको अगर हम कंबाइन करें, डिवोशनल को भी तो रॉक में कन्वर्ट किया जा सकता है, ताकि एक नया रूप, एक नया रंग आए।

0: But a new sound doesn't arrive with an audience attached.
1: कई इवेंट्स हमने ऐसे किए हैं जहाँ पे मुश्किल से हमें 10 लोग सुनने आए हैं. वो जो एक डेढ़ साल था वो लोगों को ये समझाने में हमें टाइम लगा कि हाँ डिवोशनल म्यूजिक इस तरीके से भी हो सकता है, ये म्यूजिक का जो कॉन्सेप्ट है ये ऐसे भी किया जा सकता है.

हमने उसमें डिवोशनल म्यूजिक में रॉक स्टाइल तो जोड़ा, लेकिन जो भजन की जो कहते हैं ना रूह है उसको ख़त्म नहीं किया, उसका जो फील है उसको वैसे का वैसे ही रखा, बस मॉडर्नाइज कर दिया।

0: मतलब मेरा एक्सपीरियंस था, आज हमने बहुत ज़्यादा मज़ा करा, मतलब मेरा फर्स्ट टाइम ने लाइफ में अटेंड करा है।
1: एक्चुअली सब बढ़ती था, लाइक बहुत ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट था, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, आने में इंटरेस्टिंग था, चेंजेस के साथ जुड़ने का नया तरीका है, इम्प्रेसिव, पूरा ओवरऑल इम्प्रेसिव।

सो नाइस. लाइक मैंने इससे पहले भी फ्रेशर्स अटेंड किया और उसकी जो म्यूज़िक होता है उसके बाद आपका सर बस करता है, कानों में दर्द होता है, बट आपके भजन क्लबिंग इतने स्मूदी फील हो रहा है, कोई इरिटेशन नहीं है, एकदम फ्रेश हो जाता है ना मन, वो फ्रेशनेस आई है.

0: मैं तो शॉक्ड हो गया था जब मैं सुन रहा हूँ कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं। हम सारे दोस्त मिलके हमने वो फ़ोन से बनाया था, वी लव यू मोदी जी। तो ये बहुत प्यारा मोमेंट था हमारे लिए।
1: कुछ प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ पाइप कर रहे थे, एंड वॉज यू नो वेरी ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट, यू नो वेरी ग्लैमरस एनवायरनमेंट।

0: 5 hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddaramaiah. NDTV stands completely engaged with Karnataka.
1: Higher rate, check the audio.
0: Let's do it. Let's start.
2: Breaking story, we're jumping straight into it.
0: We've got a picture of the letter. What is in your letter? You can never predict what's going to happen in Tamil Nadu politics.
3: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
0: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling.
4: For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
3: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
0: The line of control, Shiv Arur, NDTV.
5: Launch control, 0 to 100.
6: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
7: This car makes no sense, yet it makes every sense.
8: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
6: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
9: Well, at 35,000 feet, inside the cramped, locked confines of a cockpit, there is no escape. There is perhaps no calling for backup. There is only training, there's instinct and raw human grit. Captain Machar fought off the attacker, wrestled control of the aircraft and brought 174 passengers safely down to earth. Listen in to what his father, Bhupendra Machar, told us on NDTV. His first reaction wasn't pride, it was pure parental fear. He rushed to a temple, lit a lamp and prayed that no bad news should come.
0: Bhupendra Bhai Machar, he is the father of hero pilot Smith Machar, whose son has made the entire country proud and is now a global icon of courage. Bhupendra Bhai, NDTV par aapka swagat hai. आपके बेटे पर पूरा देश का गर्व है. क्या आप बता सकते हैं भूपेंद्र भाई, स्मिथ अभी कैसा है, उनकी तबीयत कैसी है, उनकी अभी जो वीडियो सामने आया है प्राइम मिनिस्टर के साथ बातचीत करते हुए साफ नज़र दिखाई देता है कि वो ठीक है. आप एक अपडेट दीजिए कि वो कैसे हैं, आपका बेटा कैसा है अभी भूपेंद्र भाई.
10: जैसा आपने देखा वीडियो में, वही चीज मैंने भी देखी आज, क्योंकि मैं आज उनको कल में मिला था 10 मिनट के लिए. तभी वो थोड़ा पूरे कंट्रोल में नहीं था. थोड़ी सी बात करके फिर डॉक्टरों ने भी बोला कि आज अपलिफ्ट हुआ है, तो अपन शांति से बात करें तो बेटर है. तो आज हम लोग वहां पहुंच रहे हैं थोड़े टाइम में, हम ऑन द वे ही है. और जितना आपने देखा नरेंद्र मोदी के साथ बात करते हुए, मेरे को भी बहुत खुशी हुई कि आज वो अच्छे फेज में है और अच्छी बात कर रहा है. तो भगवान का बहुत बड़ा शुक्र है.
0: स्मिथ ने आपको क्या बताया जब आप मिले उनसे भूपेंद्र भाई, आपको क्या बताया कल?
10: एक्चुअली कल हम लोग ने एक बात रखी थी कि इस इंसिडेंट के बारे में आज कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि वो अभी भी उतने ही वो फेज में था. तो मैंने सोचा कि आज स्मिथ अपन एक खाली भगवान की बहुत मेहरबानी समझ के आज हम लोग गले मिलते हैं, कोई उसकी बात नहीं करेंगे. आज बहुत सब लोग खुश होकर बात कर 10 मिनट बैठेंगे हम लोग तेरे साथ. तो कल की हमारी कोई भी बात में हमने उसको कोई वो चीज को याद नहीं दिलाया. मैं बोला वो बात ही मत छेड़ना, अभी अपन शांति से कल बात करेंगे.
0: भूपेंद्र भाई, स्मिथ के जख्म कितना सीरियस हैं, इन तस्वीरों में दिखाई देता है कि वो हॉस्पिटल में है, वो ट्रीटमेंट जारी है. डॉक्टर्स का क्या कहना है भूपेंद्र भाई?
10: डॉक्टर्स ने बोला है कि समय लगेगा ये जख्म को क्लियर करने में, और सर पे भी लगा है, दोनों हाथ से भी लगा है, और सर पे कुछ ऑपरेट भी हुआ है, स्टिचेस भी आए हैं काफी. तो अभी एकदम डिटेल में मैं आज नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जख्म है और शायद अच्छा टाइम जाएगा इसको क्लियर होने में.
0: भूपेंद्र भाई, आप स्मिथ के पिताजी हैं, आप और स्मिथ के माँ, क्या महसूस हुआ जब आपने सुना कि ये हादसा हुआ था आपके बेटे के साथ? आपका क्या रिएक्शन था, क्या महसूस किया आपने?
10: जैसे जैसे हर माँ बाप का होवे, सबसे पहले एक ही विचार खराब आ जाता है. और तुरंत हमने हमारे भगवान के पास दिया किया और बोला, भगवान कुछ भी हो जावे, खराब न्यूज नहीं आना चाहिए, आप बचा लेंगे.
0: लेकिन आप में विश्वास था कि आपका बेटा स्मिथ ऐसे करेगा, ऐसे ही बहादुरी दिखाएगा इस हादसे में, आप में विश्वास था?
10: देखो ये इस चीज की कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, जैसे आप भी वो चीज समझते हो, लेकिन एक ऊपर वाले की मेहरबानी रहेगी, कोई शक्ति उसके साथ आ गई और उसने ये जो प्रॉब्लम आया उसको सॉल्व किया, अपना पूरा सबके लिए गर्व की बात हो गई। और मैं भी बोलूंगा कि इसमें ज्यादातर भगवान की मेहरबानी है, हम लोग ज्यादा धर्मिष्ठ थे पूरे घर वाले
0: जी। और भूपेंद्र भाई, आपकी बेटे की बहादुरी भी थी, आपने डिटेल में देखा है कि उन्होंने क्या किया कॉकपिट में, हमला के बाद उन्होंने जख्मी होते हुए कॉकपिट के दरवाजा को खुला रखा, डिटेल में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है आपको पता है कि क्या हुआ, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये एक प्रेजेंस ऑफ माइंड थी, जैसे आपने बताया कि इसका कोई ट्रेनिंग नहीं होता है सर।
10: हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उसका एक शब्द बोल दूं मैं कि जैसे वो गिर गया जैसे नीचे कॉकपिट में, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि अभी जो करना है वो अभी कर ले, अदरवाइज कुछ नहीं होएगा। तो फिर उसके मन में एक विचार आया कि अभी फाइट करना ही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है दूसरा, और उसने एक्शन लिया और सक्सेस हो गया। और उसके मन में एक बात पक्की थी कि मेरे हिसाब से पीछे के जितने भी पैसेंजर थे वो किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए, वो उसके मन में पूरा भरा हुआ था। तो उस चीज ने ऊपर वाले ने सपोर्ट किया और ये पूरा सक्सेस हो गई बात।
0: भूपेंद्र भाई, क्या स्मिथ हमेशा ऐसे ही थे, सेल्फलेस, औरों के लिए ऐसे बिहेव करना उनका ट्रेनिंग था एक पायलट के हिसाब से, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग वो कभी भी ऐसे ही थे?
10: एक्चुअली बोलूं तो वो आज समझो 17 साल से फ्लाइंग कर रहा है, और इस 17 साल के अंदर उसने सैकड़ों पायलटों को किस तरीके से इंटरव्यू देना है, किस तरीके से अपने को ये चीज समझना चाहिए, वो उसके पहले से नेचर में है। वो फ्लाइंग के बारे में एकदम से उसका मतलब, वो वाइफ है उसकी ऐसा समझ लो
0: जी,
10: उसको फ्लाइंग मतलब और कुछ समझता ही नहीं, बोलता मेरे को ज्यादा अच्छे से अच्छा फ्लाइंग करना है।
0: और जब वो ठीक हो जाएंगे भूपेंद्र भाई, क्या वो फ्लाइंग कंटिन्यू करेंगे? फ्लाइंग कंटिन्यू करेंगे
10: वो तो वो ना बोलेगा ही नहीं कभी भी कि मैं नहीं करूंगा ऐसा।
0: और
10: मैं भी चाहूंगा कि वो करे, क्यों नहीं करेगा, करेगा।
0: क्या आप उनके पिताजी हैं, आप कुछ एडवाइस दे रहे हैं उनको, आपने कुछ बताया उनको?
10: अभी आज से शुरू होएगा हमारी डिस्कशन जो भी है वो।
11: This is a world between orders, uncertain, unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.

0: There will be a grand reception planned here in India where he will, of course, interact with Prime Minister Modi as well as External Affairs Minister Jaishankar.
1: Thanks, Aditya, for that. We hope to hear even more good news. And today on the NDTV network, a big exclusive. The father of Captain Smith Machar has spoken to nobody else, but he agreed to speak to me here on the network. At 35,000 feet inside a cramped, locked cockpit, there is really no escape. There is no calling for backup. There is only training instinct and raw human grit. Captain Smith Machar, the Indian pilot, fought off the Omani co-pilot attacker, known to be a radicalized man, wrestled control of the aircraft and brought 174 passengers safely back down to earth. And I asked none other than Pilot Smith's father himself what his son has said to him and how he feels. Upendra Bhai Machar, he is the father of hero pilot Smith Machar, whose son has made the entire country proud and is now a global icon of courage. Bhupendra Bhai, NDTV par aapka swagat hai. Aapke bete par pura desh ka garv hai. Kya aap bata sakte hain, Bhupendra Bhai, Smith abhi kaisa hai? Unki tabiyat kaisi hai? Unki abhi jo video samne aaya hai, Prime Minister ke saath baatcheet karte hue, saaf nazar dikhai deta hai ki wo theek hai. आप एक अपडेट दीजिए कि वो कैसे हैं, आपका बेटा कैसा है अभी भूपेंद्र भाई?
2: जैसा आपने देखा वीडियो में, वही चीज मैंने भी देखी आज, क्योंकि मैं आज उनको कल में मिला था 10 मिनट के लिए, तभी वो थोड़ा पूरे कंट्रोल में नहीं था. थोड़ी सी बात करके फिर डॉक्टरों ने भी बोला कि आज अपलिफ्ट हुआ है, तो अपन शांति से बात करें तो बेटर है. तो आज हम लोग वहां पहुंच रहे हैं थोड़े टाइम में, हम उनके वे ही है. और जितना आपने देखा नरेंद्र मोदी के साथ बात करते हुए, मेरे को भी बहुत खुशी हुई कि आज वो अच्छे फेज में है और अच्छी बात कर रहा है, तो भगवान का बहुत बड़ा शुक्र है.
1: स्मिथ ने आपको क्या बताया जब आप मिले उनसे, भूपेंद्र भाई, आपको क्या बताया कल?
2: एक्चुअली कल हम लोग ने एक बात रखी थी कि इस इंसिडेंट के बारे में आज कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि वो अभी भी उतने ही वो फेज में था. तो मैंने सोचा कि आज मीट अपन एक खाली भगवान की बहुत मेहरबानी समझ के आज हम लोग गले मिलते हैं, कोई उसकी बात नहीं करेंगे. आज बहुत सब लोग खुश होकर बात कर 10 मिनट बैठेंगे हम लोग तेरे साथ. तो कल की हमारी कोई भी बात में हमने उसको कोई वो चीज को याद नहीं दिलाया, मतलब वो बात ही मत छेड़ना, अभी अपन शांति से कल बात करेंगे.
1: भूपेंद्र भाई, स्मिथ के जख्म कितना सीरियस है, इन तस्वीरों में दिखाई देता है कि वो हॉस्पिटल में है, वो ट्रीटमेंट जारी है, डॉक्टर्स का क्या कहना है भूपेंद्र भाई?
2: डॉक्टर्स ने बोला है कि समय लगेगा ये जख्म को क्लियर करने में, और सर पे भी लगा है, दोनों हाथ से भी लगा है, और सर पे कुछ ऑपरेट भी हुआ है, स्टिचेस भी आए हैं काफी. तो अभी एकदम डिटेल में मैं आज नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जख्म है और शायद अच्छा टाइम जाएगा इसको क्लियर होने में.
1: भूपेंद्र भाई, आप स्मिथ के पिताजी हैं, आप और स्मिथ के माँ, क्या महसूस हुआ जब आपने सुना कि ये हादसा हुआ था आपके बेटे के साथ? आपका क्या रिएक्शन था, क्या महसूस किया आपने?
2: जैसे जैसे हर माँ बाप का हो, सबसे पहले एक ही विचार खराब आ जाता है, और तुरंत हमने हमारे भगवान के पास दिया किया और बोला, भगवान कुछ भी हो जावे, खराब न्यूज नहीं आना चाहिए, आप बचा लेंगे.
1: लेकिन आप में विश्वास था कि आपका बेटा स्मिथ ऐसे करेगा, ऐसे बहादुरी दिखाएगा इस हादसे में? आप में विश्वास था?
2: देखो देखो, ये इस चीज की कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, जैसे आप भी वो चीज समझते हो, लेकिन एक ऊपर वाले की मेहरबानी रहेगी, कोई शक्ति उसके साथ आ गई और उसने ये जो प्रॉब्लम आया उसको सॉल्व किया, अपना पूरा सबके लिए गर्व की बात हो गई. और मैं भी बोलूंगा कि इसमें ज्यादातर भगवान की मेहरबानी है, हम लोग ज्यादा धर्मिष्ठ थे पूरे घर वाले.
1: जी, और भूपेंद्र भाई, आपकी बेटे की बहादुरी भी थी, आपने डिटेल में देखा है कि उन्होंने क्या किया कॉकपिट में. हमला के बाद उन्होंने जख्मी होते हुए कॉकपिट के दरवाज़ा को खुला रखा, डिटेल में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है आपको पता है कि क्या हुआ, उसको लेकर आप क्या कहेंगे?
3: ये एक प्रेजेंस ऑफ माइंड थी, जैसे आपने बताया कि इसका कोई ट्रेनिंग नहीं होता है सर।
2: हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उसका एक शब्द बोल दूं मैं कि जैसे वो गिर गया जैसे नीचे कॉकपिट में, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि अभी जो करना है वो अभी कर ले, अदरवाइज कुछ नहीं होएगा। तो फिर उसके मन में एक विचार आया कि अभी फाइट करना ही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है दूसरा, और उसने एक्शन लिया और सक्सेस हो गया। और उसके मन में एक बात पक्की थी कि मेरे हिसाब से पीछे के जितने भी पैसेंजर थे वो किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए, वो उसके मन में पूरा भरा हुआ था। तो उस चीज ने ऊपर वाले ने सपोर्ट किया और ये पूरा सक्सेस हो गई बात।
3: भूपेंद्र भाई, क्या स्मिथ हमेशा ऐसे ही थे, सेल्फलेस, औरों के लिए ऐसे बिहेव करना? उनका ट्रेनिंग था एक पायलट के हिसाब से, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग वो कभी भी ऐसे ही थे?
2: एक्चुअली बोलूं तो वो आज समझो 17 साल से फ्लाइंग कर रहा है, और इस 17 साल के अंदर उसने सैकड़ों पायलटों को किस तरीके से इंटरव्यू देना है, किस तरीके से अपने को ये चीज समझना चाहिए, वो उसके पहले से नेचर में है। वो फ्लाइंग के बारे में एकदम से उसका मतलब, वो वाइफ है उसकी ऐसा समझ लो
3: जी,
2: उसको फ्लाइंग मतलब और कुछ समझता ही नहीं, बोलता है मेरे को ज्यादा अच्छे से अच्छा फ्लाइंग करना है।
3: और जब वो ठीक हो जाएंगे भूपेंद्र भाई, क्या वो फ्लाइंग कंटिन्यू करेंगे? फ्लाइंग कंटिन्यू करेंगे?
2: वो ना बोलेगा ही नहीं कभी भी कि मैं नहीं करूंगा ऐसा। और मैं भी चाहूंगा कि वो करे, क्यों नहीं करेगा, करेगा।
3: क्या क्या आप उनके पिताजी हैं, आप कुछ एडवाइस दे रहे हैं उनको, आपने कुछ बताया उनको?
2: अभी आज से शुरू होएगा हमारी डिस्कशन जो भी है।
3: ये एक टेरर इंसिडेंट था भूपेंद्र जी, सारा दुनिया इसके बारे में बात कर रहा है, सारा दुनिया आपके बेटे का प्रशंसा कर रहा है अभी। क्या आपको लगता है कि एक पूरा एक ग्लोबल स्पॉटलाइट बन गया है आपके परिवार को लेकर? अब
2: जरूर ऐसा इंसिडेंट हुआ है, हम लोग तो एक आप बोलेंगे तो साधारण से हम लोग सिंपल जीवन जीने वाले आदमी हैं, और सब लोग पहले बोलते थे कि प्राउड मोमेंट है, प्राउड मोमेंट है। मेरे हमारे घर में मेरे और मेरी वाइफ को और उनकी वाइफ को एक ही विचार आता था कि प्राउड मोमेंट भले है लेकिन हमको हमारे लड़के को देखना है अच्छी तरह से पहले।
3: जी बिल्कुल, और जैसे प्रधानमंत्री ने कन्वे किया भूपेंद्र भाई, आज आपने देखा वो वीडियो जिसमें उन्होंने बोला है कि इंडिया का प्रेयर्स जो है, प्रार्थना जो है, जो कन्वे किया स्मिथ को, वो बिल्कुल सही है। पूरा नेशन, एंटायर इंडिया आपके बेटे के लिए प्रार्थना कर रहा है, प्रे कर रहा है अभी।
2: सही है, सही है, वो मैंने भी सुना और मैंने देखा कुछ वीडियो, और पूरे देशवासी को मैं पूरा आभार मानूंगा सबका के इस तरीके से सबने इतना अच्छा मेरे बेटे के लिए प्रार्थना की, और ये सब लोग का आशीर्वाद है कि वो जल्दी रिकवर हो जाएगा, और मेरे को विश्वास है कि वो अगेन वापस आएगा और अच्छी तरह से फ्लाइंग करेगा।
3: भूपेंद्र भाई, स्मिथ की माँ की रिएक्शन क्या थी जब ये हुआ था, उनकी रिएक्शन क्या थी सर?
2: बहुत सेंसिटिव है, हम दोनों सेंसिटिव है बहुत ही, और हम लोग ने एक ही श्रद्धा रखा था कि भगवान जो भी करेगा अच्छा ही करेगा, अपने साथ बुरा नहीं होगा।
3: और उनकी उनकी पत्नी और उनके छोटा बच्चा भी है, उनका क्या रिएक्शन था? ये एक बहुत ही सीरियस इंसिडेंट,
2: हम लोग को बहुत ही डर लग रहा था, क्योंकि वो दोनों बच्चे और स्मिथ की वाइफ दुबई में थे, हम लोग बॉम्बे में थे, और हम लोग की कंटिन्यूस फोन में बात चल रही थी कि मैं बोला बस भगवान का नाम लेते रहते हम लोग भी निकल जाते हैं बॉम्बे से जल्दी, और डर ना मत, मैं मतलब हम लोग पहुंच ही रहे बस, ऐसे भी करके
3: जी
2: हम लोग ने अपने आप को संभाला है सब लोगों ने।
3: भूपेंद्र जी, आपने देखा होगा कि इजराइल के प्रधानमंत्री, इंडिया के प्रधानमंत्री और बहुत सारे ग्लोबल लीडर्स ने आपके बेटे को प्रेज किया है। बातचीत चल रही है कि शायद इजराइल में एक ऑनर भी मिलेगा स्मिथ को, इसको लेकर आप क्या बोलेंगे?
2: बस बहुत खुशी हो रही है फादर मदर हम लोग दोनों को, बहुत अच्छा बात हुआ है, और जीवन जीवन में ऐसा मौका मिले तो जीवन अच्छा जिया ऐसा प्रूव हो जाएगा कि भाई कुछ किया अपन जीवन में।
3: और यहाँ इंडिया में कुछ पॉलिटिशियंस ने ऑलरेडी एक कॉन्वर्सेशन जारी किया, मिलिंद देवरा ने एक चिट्ठी लिखा है प्रधानमंत्री को कि अशोक चक्र मिलना चाहिए स्मिथ को, क्या आप सहमत हैं अशोक चक्र मिलना चाहिए स्मिथ को?
2: नहीं, मैं इस चीज के लिए नहीं बोल सकता हूँ।
3: क्या आपको लगता है कि स्मिथ को वापस आना चाहिए या दुबई से ही